सुप्रभात। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:58 और 45 सेकंड हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण आरंभ हो रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन

0: की यात्रा संपन्न कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। 18 से 30 वर्ष के युवा, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, NSS वॉलंटियर और युवा पेशेवर शामिल हैं, युवा संगम के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने लखनऊ में हाथी दांत की कलाकृतियों के गैर कानूनी व्यापार में शामिल एक वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में जब्त 54 नकाशीदार चीजें, जिसमें बैल, हाथी जैसे जानवरों की मूर्तियां शामिल हैं, गिरफ्तार 4 लोगों को आगे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद, BNP नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता थीम पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को की गोस्तनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। और अब खेल खबरें। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन के खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगी। उधर नीदरलैंड्स की अम्स्टरडैम में SIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। इसके अलावा श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को भी 165 रन से मात दी है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:05 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। तो आज के वंदना के इस अंक में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, साथ ही साथ उनके सुख समृद्धि की और स्वस्थ रहने की ईश्वर से शुभकामना भी करते हैं। गुरुवार का दिन समर्पित होता है गुरुओं को और अपने इष्ट को। उसी क्रम में सबसे पहले हम शिरडी के साईं बाबा की पूजा अर्चना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, जो अपने भक्तों के लिए स्मरणकारी हैं, कल्याणकारी हैं।

श्रोताओं, ईश्वर ने हमें मनुष्य रूपी जन्म दिया है, दिल दिया है, दिमाग दिया है सोचने विचारने के लिए, अच्छे काम करने की सलाह दी है, अच्छे और बुरे का भेद समझाया है और हमें ये प्रेरणा दी है कि हमेशा हम एक दूसरे के काम आए, सुख दुख में काम आए, एक दूसरे की सेवा करें। इसलिए ईश्वर का स्मरण करना बहुत जरूरी हो जाता है। ईश्वर सिर्फ और सिर्फ सच्चे मन से अपना स्मरण चाहते हैं, अपना बताया हुआ रास्ता चाहते हैं। तो हे मनुष्य, तू व्यर्थ की बातों से बच, ईश्वर की शरण में आ, उनको याद कर, क्योंकि पता नहीं कब ये सांस रूपी हंस उड़ जाए और

जिस रसना में राम नाम का जाप है, गुणगान है, व्याख्यान है, स्वर है, सुमिरन है, वो रसना अमृत के समान है। आइए राम नाम का स्मरण करें, सुमिरन करें।

भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना इस समय आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। वंदना कार्यक्रम में आइए अब हम उनको याद करेंगे जिन्होंने सभी को नेक रास्ते पर चलने का अहद दिलाया, प्रेरणा दी, रास्ता बताया, सलाह दी। इसके साथ ही दीन दुखियों की सेवा करने का भी जज्बा प्रदान किया।

श्रोताओं, भगवान विष्णु को जगत का पालनहार यानी संरक्षण संरक्षक माना जाता है। वो त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक हैं। उनका काम इस संसार की रक्षा करना और धर्म

जगत के पालनहार हम सबका ख्याल रखें, हम सबको अपना आशीर्वाद दें। इस कामना के साथ भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का संगीतमय ये प्रसंग।

सिंहासन पर श्रीराम की पादुका की स्थापना करके भरत नंदीग्राम में पर्णकुटी बनवा वहां इस प्रकार अनासक्त भाव से निवास करने लगे हैं, जिस प्रकार चंपा के उद्यान में भ्रमर अनासक्त रहता है। उनका शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है, किंतु मुखमंडल की कांति पूर्ववत बनी हुई है। शरद ऋतु में जल घटता है, किंतु बेंत विकसित होते हैं और कमल खिल जाते हैं। शम, दम, संयम और उपवास रूपी नक्षत्रों से भरत जी के हृदय का आकाश आलोकित है। उनकी निष्ठा और विश्वास ध्रुव तारे की भांति अटल हैं। 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है। श्री राम की स्मृति आकाश गंगा जैसी निर्दोष और प्रकाशमान है। भरत नित्य प्रति श्री राम की पादुका का पूजन करके उन्हीं से आज्ञा मांगकर राजकाज करते हैं। उनका परम पवित्र आचरण, व्रत और संयम देखकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं। अयोध्या कांड के समापन प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास ने

इन शब्दों में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत का जन्म यदि न होता तो मुनियों के लिए भी दुष्प्राप्य, यज्ञ, नियम, शम, दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान से आज का संगीतमय ये प्रसंग। कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर और संगीतकार सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
1: महाप्रभु वल्लभाचार्य का कथन प्रमाण है, न जगत स्वप्नवत और न जीवन मात्र एक स्वप्न है, स्वप्नवत है मैं और मेरे द्वारा रचित गोरख धंधा जिसे हम संसार कहते हैं। हम तीन भ्रमों के मध्य जीवन नैया को चलाते रहते हैं, देश काल और पृथक तत्व के भ्रम हमें भ्रमित करते रहते हैं। दूर पास, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, आगे पीछे की बातें हम देश के भ्रमवेश करते रहते हैं, क्योंकि देश अथवा दिशा अनंत है। इसी प्रकार देर सवेर, कल परसों आदि की अवधारणा काल के भ्रम की द्योतिका है, क्योंकि काल अनादि और अनंत है। अहंकार यानी मैं एक पृथक सत्ता हूं, यह आत्मगत अथवा पृथक तत्व का भ्रम है जो इन तीन भ्रमों पर विजय प्राप्त कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन एक वास्तविकता है, वो भ्रमों के आवरणों द्वारा प्रच्छन्न रहता है और दूरस्थ अथवा मिथ्या प्रतीत होता है। वास्तविकता की अनुभूति के लिए भ्रम निवृत्ति की स्थिति अनिवार्य है। क्या मनुष्य परमात्मा या प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है? मनुष्य ही एक ऐसा जीवधारी है जो अपना सिर ऊंचा और सीधा रख सकता है, अतएव उससे आशा की जाती है कि वो कोई ऐसा काम न करे जिसके कारण उसे अपना सिर नीचा करना पड़े। केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जो खुलकर अपने हाथों का प्रयोग कर सकता है। अन्य प्राणी हाथों से पैरों का काम लेते हैं, मानव हाथों द्वारा अनेकानेक उपयोगी कार्य करता है। मानव के कार्य कलापों को देखकर ये सोचना स्वाभाविक है कि ये छोटा सा प्राणी इतना सामर्थ्यवान क्यों कर बन सका है। ये विश्व के प्रत्येक पदार्थ को अपने लिए उपयोगी बना लेता है। बड़े से बड़े जीवों को, शेर चीता जैसे खूंखार जानवरों को वश में कर लेता है। मात्र एक इंच के अंकुश द्वारा हाथी जैसे विशाल

0: जीव को वश में रखने वाले महावत की सामर्थ्य किसे आश्चर्यचकित नहीं कर देगी। भ्रमों का निवारण करके वास्तविक स्वरूप में स्थित होना, चट्टानों और अवशेषों के रूप में प्रकृति के विकास की कहानी अंकित है, इसको पढ़ने की सामर्थ्य प्राप्त है। वे कह सकते हैं कि विकास की शत सहस्र वर्षों की प्रक्रिया के उपरांत प्रस्तुत रूप में मानव शरीर का निर्माण संभव हुआ है। उसका एक एक अंग विकास की जिन सीढ़ियों से होकर गुजरा है, इसका पूरा ब्यौरा विकास की कहानी के पृष्ठों पर अंकित है। मनुष्य ही ये परिकल्पना कर सकता है कि जीवन की मूलभूत एकता प्रकृति का एक तथ्य है। विश्व बंधुत्व एक सिद्धांत न होकर जीवन का व्यावहारिक तथ्य है जो जीवन की मूलभूत एकता को स्वीकार करता है। मनुष्यत्व का विकास करना मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना है। मनुष्य का परम धर्म है जिसे हम मानव धर्म कहते हैं। इसी को लक्ष्य करके कहा जाता है, दानव होना मनुष्य की पराजय है, देवत्व की प्राप्ति उसका चमत्कार है और मानव होना उसकी विजय है। चेतना विकास के अध्येताओं ने यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जो स्वतंत्र व्यक्तित्व लेकर जन्म लेता है। उसके जीवन का वरदान यह है कि वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्राप्त प्राणी है। उसके जीवन का अभिशाप यह है कि वो आत्म सदृश अन्य किसी को नहीं पाता है। उसकी व्यक्तिता पग पग पर संघर्ष और टकराव को उसकी नियति बना देती है। मानव स्वतंत्र इच्छानुसार आचरण करता रहे और व्यक्तिता रूपी कांटों की नोकों को दूर करके टकराव या संघर्ष से बचता रहे, ये उसके पुरुषार्थ की सफलता है। ऐसे समर्थ मनुष्य ही मानव और अवतारी पुरुष कहे जाते हैं। मानव जीवन यथार्थ की भूमि पर स्थित है। स्वप्न उसके आदर्श होते हैं जिनसे वो प्रगति और विकास की प्रेरणा प्राप्त करता है। स्वप्न मानव जीवन के यथार्थ को रचना धर्मित की रसायन द्वारा पर्यवेष्टित कर देते हैं। मानव की महत्ता इसमें नहीं है कि उसने क्या उपलब्ध किया है, बल्कि इसमें है कि वो क्या उपलब्ध करने की आकांक्षा करता है। वो आधुनिक मनोविश्लेषकों द्वारा निरूपित स्वप्न नहीं है जिसे वे असंबद्ध अनुभव की छाया मात्र कहते हैं।
1: ये था हमारा आज का चिंतन और अब आकाशवाणी नजीबाबाद से काव्यधारा में लीजिए सुनिए सपना अग्रवाल का ये काव्य पाठ।
2: जीवन में कोई ना कोई शक्ति ऐसी जरूर होती है जो आपको आगे की ओर ले जाती है। उन क्षणों उन पलों में जब आप हार जाते हैं तो उसी पर एक कृष्ण भजन आपके सामने रखती हूँ कि जर्रा जर्रा ढूंढा हमने, जर्रा जर्रा ढूंढा हमने आशियाने का, मगर मंजिल कोई ना थी तेरे सिवा। तलाश में तेरी उम्र भर तलाशते रहे, तलाश में तेरी उम्र भर तलाशते रहे, खत्म हुई मेरी तलाश तेरी तलाश के बाद।

जीवन में बच्चों के लिए माँ कितनी जरूरी है, उसके संस्कार, उसका व्यक्तित्व, उसकी शक्ति सब माँ में ही समाहित है। वो जो भी करती है वो ही भविष्य का निर्माण करती है। कि ख्वाबगाह में सोया हुआ था, ख्वाबगाह में सोया हुआ था, चांदनी सहला रही थी, आंखें खुली तो माँ का आंचल करीब था। बांस से बांसुरी सजे सास सुरों में बांधती, कष्टों की पीड़ा सहकर शक्ति को पहचानती। छैनी हथौड़ा पड़े पत्थर पर प्रतिमा पूजी जाए, टूट टूट कर बिखर बिखर कर नव सृजन को पाए। इसके साथ ही सुनिए मेरी एक रचना। कि दूर तलक मन जीत रहा को बड़ी दूर से आए हैं, जीवन पथ के सर्व विघ्न ही मैंने तोड़ गिराए हैं। हार मान कर चुप हो जाऊं मैंने कब ये सीखा था। हार गई पर उन अनुबंधों से मन का कोना चीखा था। आज तोड़कर उन्हें सर्व ही जीवन स्वयं सजाए हैं, जीवन पथ के सर्व विघ्न ही मैंने तोड़ गिराए हैं। समय चक्र ने जीवन जग का रूप गढ़ा ये कैसा है। समय चक्र ने जीवन जग का रूप गढ़ा ये कैसा है। मन की हर वो व्यथित व्यथा से रूप मढ़ा हो ऐसा है। कृष्ण चरण मन विरल प्रश्न जो जीवन द्वंद समाये हैं, जीवन पथ के सर्व विघ्न ही मैंने तोड़ गिराए हैं। घिरता मन जग संधानों से आज सभी को तपना होगा। घिरता मन जग संधानों से आज सभी को तपना होगा। जीवन के सारे बंधन को अब तो तजना ही होगा। मन विराट व्याकुल समक्ष अब सारी व्यथा सुनाए हैं, जीवन पथ के सर्व विघ्न ही मैंने तोड़ गिराए हैं। अब आप देखिए कि जीवन में चाहे कितने भी संघर्ष आ जाएं, आपको उनसे कभी नहीं हार माननी चाहिए, ना डरना चाहिए। कि आती जाती जीवन पीड़ा स्वयं संघर्षों से भिड़ना होगा। आती जाती जीवन पीड़ा स्वयं संघर्षों से भिड़ना होगा। अंतस शक्ति को कर जागृत तुमको बस चलना होगा। काल चक्र के बंधन से कब क्या कभी कोई बच सका। पार हुआ वही अवरोधों से जिसने खुद में सुहास भरा। सूरज एक तुमको भी स्वयं का सूरज एक तुमको भी

0: स्वयं का अंतर मन में अब भरना होगा। काट मार्ग की हर बाधा को, तुमको बस चलना होगा, तुमको बस चलना होगा। इसी से अंदर में आप मेरी दूसरी रचना सुनिए। अपने ही अंतर मन में, अपने ही अंतर मन में मन को केंद्र बिंदु को, अपने ही अंतर मन में मन को केंद्र बिंदु को आधार बनाकर बांध दिया है मैंने, बांध दिया है मैंने संकल्प शक्ति की डोरी से। और मथा है, और मथा है आसुरी देवी शक्तियों को। उठते बैठते सोते जागते, उठते बैठते सोते जागते, सुबह शाम दिन रात, सुबह शाम दिन रात, हर पल पल पल हर क्षण। और मोड़ दिया है अपनी, और मोड़ दिया है अपनी सभी नकारात्मकता को सकारात्मकता की ओर, विशाल महाकुंभ की यात्रा के लिए। क्योंकि होना है प्रारंभ आदि में अनंतता तक अध्यात्म की खोज, बस मौन के साथ, बस मौन के साथ। हाथों की लकीरों ने, हाथों की लकीरों ने उकेरा ना था, हाथों की लकीरों ने उकेरा ना था, कभी उसका कभी मेरा चेहरा ना था। जो गया जिंदगी से वो मेरा ना था, जो हुआ था तेरा वो भी तेरा ना था, वो भी तेरा ना था। दिलों में पलता प्यार खुशबू की तरह, अहम के घर में उनका बसेरा ना था, अहम के घर में इनका बसेरा ना था। उम्र की दहलीज कभी तो सोचे वो, मेरी उम्मीद का कोई डेरा ना था। वो मुझसे दूर हुआ क्यों कैसे भला, वो मुझसे दूर हुआ क्यों कैसे भला, प्यार ने मेरे उसे तो बिखेरा ना था, प्यार ने मेरे उसे तो बिखेरा ना था।
1: काव्यधारा में अभी आप सुन रहे थे सपना अग्रवाल का ये काव्य पाठ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में।

0: एयम आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नोपवेशनानन्तरं 13,000 कोटिरूप्यकाधिकाः पञ्चपरियोजनाः अनुमोदिताः। एतासु 4 रेलमार्गसम्बद्धाः, एका च राजमार्गसम्बद्धा परियोजना अस्ति। सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन पश्चिमबंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश इत्येतेषु 4 राज्येषु रेलमार्गस्य 8 बहुमार्गीय परियोजनाः अनुमोदिताः। असौ उक्तवान् यत् आहत्य 50,4,900,000,000,000 रूप्यकाणां व्ययेन एताः परियोजनाः 30,2,000,000,000 वर्षात् 31,2,000,000,000 वर्षपर्यन्तं पूर्णाः करिष्यन्ते।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रूपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णवः संसूचितवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन बिहार राज्ये मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खण्डस्य राष्ट्रिय राजमार्ग 22 इत्यस्य चतुर्मार्गीय मानकानुसारम् उन्नयनमपि अनुमोदितम्। अस्य व्ययः आहत्य 90,5,300,000,000,000 रूप्यकाधिकः अस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य नवदिल्ल्यां जापानस्य रक्षामन्त्रिणा शिन्ज़िरो कोइजुमी इत्यमुना सह द्विपाक्षिकोपवेशनं करिष्यति। अपेक्ष्यते यत् अस्मिन् उपवेशने हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे रणनीतिक

0: विश्वासः सहयोगश्च अधिकं सुदृढौ भविष्यतः तथा स्थिरतायाः सुरक्षायाश्च प्रवर्धनं भविष्यति। उभौ मन्त्रिणौ सामुद्रिक सुरक्षा क्षेत्रे गहन सहयोगस्य अथ मेक इन इंडिया इत्यस्य च अन्तर्गतं रक्षोपकरणानां प्रौद्योगिक्याश्च क्षेत्रे अधिक निकट सहयोगस्य विषये विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजुः एतत् कथनं निराकृतवान् यत् चीन देशः अरुणाचल प्रदेशे 60 किलोमीटर पर्यन्तं अन्तः प्रविष्टः अस्ति। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्री रिजिजुः उक्तवान् यत् बांग्लादेशस्य छायाचित्राणि दृश्यचित्राणि च चीन देशस्य अरुणाचल प्रदेशे प्रवेशं मिथ्यारूपेण प्रदर्शयितुं प्रयोज्यन्ते। असौ उक्तवान् यत् एतादृशानि असत्यानि अभिकथनानि सीमां रक्षतां सैनिकानां मनोबलं न्यूनीकर्तुं शक्नुवन्ति तथा अनावश्यकं भ्रमं जनयितुं शक्नुवन्ति। मन्त्री उक्तवान् यत् भारत चीन सीमा सम्बद्धः विषयः गम्भीरः अस्ति। सः जनान् आहूतवान् यत् एतादृशे संवेदनशील विषये मिथ्यानि उत वा अप्रमाणितानि कथनानि न कुर्वन्तु। दिल्ल्यां प्रचलितस्य विशेष गहन पुनरीक्षणस्य अन्तर्गतम् आवेदन पत्राणाम् उपस्थापनस्य अन्तिमतिथिः अस्य मासस्य 24 दिनाङ्कं यावत् वर्धिता। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः अनुसारम् अधुना प्रारूप मतदातृसूची अस्य मासस्य 31 दिनाङ्के प्रकाशिता भविष्यति। अभ्यर्थनानाम् आक्षेपानां च प्रस्तुतेः अन्तिमतिथिः आगामि मासस्य 30 दिनाङ्कं भविष्यति। बांग्लादेशे अद्य राष्ट्रपति पदाय निर्वाचनं भविष्यति। अस्मिन् निर्वाचने सांसदाः शासनाधिरूढस्य बीएनपी दलस्य वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर तथा एकादश दलात्मकस्य विपक्ष संयुतेः प्रत्याशी कर्नल ओली अहमद इत्येतयोः मध्ये चयनं करिष्यन्ति। 35 वर्षाणाम् अनन्तरं प्रथमवारं राष्ट्रपति पदाय निर्वाचने मतदानं भविष्यति। मतदानम् अद्य अपराह्णे 2 सायं 5 संसद भवने भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

0: प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता विषय पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को के गोस्तीनी दौर में आयोजित किया जाएगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरलम, माहे और तमिलनाडु में बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कल देर रात बारिश हुई। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला आज चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल किए, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत को मजबूत बढ़त दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:05 हो रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा में हमारा आज का विषय है वाणी की स्वच्छता।
2: खान पान पर नितांत अनुशासन जरूरी है। गलत दिनचर्या और खान पान की आदतों की वजह से पेट का अम्ल गले में आने की शिकायत हो सकती है, जो गले के अंदर के सराव को परिवर्तित करने के साथ स्वर यंत्र की हल्की सूजन का कारण भी हो सकता है। रिफ्लेक्स के ऐसे मरीजों के गले में कुछ अटकना, बार बार गला साफ करना, लंबी मियाद की खांसी, जीभ पर जमाव, बार बार ब्रोंकाइटिस जैसी शिकायतें हो सकती हैं। ऐसे व्यक्तियों एवं व्यावसायिक वाणी प्रयोग करने वाले को अधिक मिर्च मसाले या तेल युक्त खाना, अधिक चाय, कॉफी, शीतल पेय और शराब नहीं लेनी चाहिए। सादा खाना दिन में 2 बार से ज्यादा बार खाएं, परंतु एक ही बार में पेट भरकर खाना न खाएं। दूध, आइसक्रीम, चॉकलेट, सूखे फल, कार्यक्रम प्रस्तुति या गायन से कुछ समय पूर्व न लेवें। सुगंध युक्त गोलियां, च्युइंगम, श्वास को ताजगी देने वाली गोलियां प्रयोग नहीं करनी चाहिए। पान, पान मसाला या पान पराग, तंबाकू, सुपारी, गुटखा आदि नहीं लेना चाहिए। नींबू का रस और हर्बल चाय आवाज के लिए फायदेमंद होती है। हर बार कुछ भी खाने के पश्चात पानी पिएं। सुरक्षित पीने का पानी हमेशा साथ में रखें। सामान्य रूप से नाक से श्वास लेना अच्छी आवाज के लिए जरूरी होता है, क्योंकि नाक से श्वास छनती है और गर्म होती है और इसे उपयुक्त आर्द्रता मिलती है। नाक बंद रहने, नाक या साइनस की अन्य तकलीफों के लिए विशेषज्ञ उपचार लेना चाहिए। सूखी ठंडी और गर्म हवा दोनों ही नाक गले के स्रावों को प्रभावित करती हैं और आवाज ठीक से नहीं निकलती, खांसी भी होती है। इसी प्रकार मुंह से श्वास लेना, तेज पंखे के नीचे सीधे बैठना या सोना भी ठीक नहीं होता। यदि सामर्थ्य है तो वातानुकूलित वातावरण में रहना अच्छी आवाज

0: के लिए फायदेमंद है। ऐसे वातावरण से बाहर गर्म वातावरण में जाने से कुछ मिनट लगाएं, अचानक ही नहीं जाएं। धूल और धुएं युक्त वातावरण से संभवतः बचें, धूम्रपान न करें। यदि मंच पर धुआं हो तो धुआं हटाने वाली वेंटिलेशन सिस्टम या धुआं खाने वाला यंत्र लगाएं। तेज सर्दी या एक्यूट एलर्जी या नाक गले के तेज या संवेगी संक्रमण के दौरान गायन कार्यक्रम न देवें। नाक की एलर्जी से ग्रसित व्यक्ति धूल धुएं माइट्स फफूंद और परागकण आदि एलर्जेंस को नियंत्रित करने हेतु उपाय करें। अधिक मेकअप, बालों के या फिक्सिंग या अन्य प्रकार के स्प्रे बहुत सावधानी से और कम उपयोग में लाएं। सभागृह या ऑडिटोरियम या कंसर्ट हॉल की नियमित वैक्यूम क्लीनर द्वारा सफाई कराते रहना चाहिए। शारीरिक और मानसिक दोनों ही तनाव आवाज को दुष्प्रभावित करते हैं। किसी भी कार्यक्रम प्रस्तुति पूर्व बराबर नींद, आराम और रिहर्सल आवश्यक होते हैं। गायन, भाषण, व्याख्यान, बातचीत के दौरान गला नहीं सूखने दें। बीच बीच में पानी के घूंट पिए, हल्का गुनगुना शहद युक्त पानी कार्यक्रम के दौरान निरंतर पीते रहें। एक ही समय पर लगातार 45 मिनट से ज्यादा आवाज का प्रयोग न करें। भीड़ या अधिक श्रोताओं के समक्ष भाषण देते वक्त माइक्रोफोन या माइक का प्रयोग करें। सभागृह की एकोस्टिक उपयुक्त हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। गायकों या व्यावसायिक वाणी प्रयोग करने वालों को भी भीड़ भरी शोरगुल वाली पार्टियों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर जोर जोर से बात करनी पड़ती है जिससे स्वर यंत्र पर तनाव आता है। बार बार गला साफ करने की आदत न डालें, उपयुक्त इलाज लेवें। जोर जोर से बोलना, चीखना, चिल्लाना और तनावपूर्ण ढंग से आवाज निकालने से बचें। ख्याल रखें, खेल खेल में बच्चे अधिक चीखें चिल्लाएं नहीं। हमेशा तनाव रहित रिलैक्स होकर धीरे धीरे बात करें। सिर और गर्दन को गायन या बोलचाल के दौरान सीधा रखें। यदि गर्दन की मांसपेशियों में दर्द या ऐठन हो तो मालिश करें, डॉक्टरी सलाह लें। हमेशा 2 फीट की दूरी पर ही बात करनी चाहिए। पेट और श्वसन की कसरतें नियमित करनी चाहिए। बोलचाल या श्वास में बाधा डालने वाला पहनावा या वेशभूषा नहीं पहनना चाहिए। गाने या बोलने से पहले श्वास नहीं रोकना चाहिए। ख्याल रखें आपका वजन नियंत्रित रहे। अधिक वजन को धीरे धीरे कम करना चाहिए। कार्यक्रम प्रस्तुति या गायन से पहले डाययूरेटिक या एंटी एलर्जिक या रक्तचाप कम करने वाली गोलियां नहीं खानी चाहिए। जब कभी आपकी आवाज कर्कश होती है या फटापन आता है तो बातचीत बिल्कुल कम कर देनी चाहिए। व्यावसायिक दृष्टि से वाणी प्रयोग करने वालों की बढ़ती उम्र के कारण आवाज प्रभावित न हो, इसके लिए शारीरिक और श्वसन तंत्र की कसरतें नियमित करनी चाहिए। बराबर खानपान रखना चाहिए। नियमित आवाज का परीक्षण देते रहें और दांत गिरने का उपयुक्त इलाज कराते रहना चाहिए। हर व्यावसायिक रूप से वाणी प्रयोग करने वाले, खासकर पॉप सिंगर्स को नियमित ENT चेकअप करवाते रहना चाहिए।
1: आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, विषय था वाणी की स्वच्छता। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। किसान भाई सुनेंगे खेती की बातें। आज का विषय है पशुशाला प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कार्य।
2: किसान भाई नमस्कार। खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे किसान भाई खेती करते हैं और खेती से लाभ भी कमाते हैं। और कुछ किसान भाई खेती के साथ पशुपालन भी करते हैं, जो हमारी खेती के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज इसी के संबंध में एक जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी का विषय है पशुशाला प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कार्य। किसान भाइयों, पशुपालन किसानों की आय बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि पशुओं से दूध, मांस, ऊन, खाद और अन्य उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। किसान भाइयों, पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी नस्ल और पौष्टिक आहार के साथ साथ पशुशाला का उचित प्रबंधन भी बहुत आवश्यक है। स्वच्छ, हवादार, सुरक्षित और सुविधाजनक पशुशाला पशुओं को स्वस्थ रखने तथा उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसान भाइयों, पशुशाला का निर्माण ऐसे स्थान पर हमें करना चाहिए जो ऊंचा, सूखा और जलभराव से मुक्त हो। किसान भाइयों, वर्षा के समय पानी पशुशाला के अंदर या आसपास जमा नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों, पशुशाला ऐसी जगह हो जहां पर्याप्त धूप और हवा पहुंच सके। पशुशाला के आसपास कूड़ा, कचरा या गंदा पानी नालियों में जमा नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों, पशुशाला घर के आसपास हो ताकि हमारे किसान भाई समय समय पर पशुओं की निगरानी कर सकें। जब भी

0: किसान भाई पशुशाला बनाए तो कुछ बातों का ध्यान रखें। पशुशाला मजबूत और सुविधाजनक होनी चाहिए। फर्श पक्का, साफ और थोड़ा ढलानदार होना चाहिए, जिससे मूत्र तथा गंदा पानी आसानी से बाहर निकल सके। फर्श बहुत ज्यादा चिकना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पशुओं को फिसलने से चोट लग सकती है, और पशुओं की संख्या के अनुसार उनके बैठने, खड़े होने और चलने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। किसान भाइयों, पशुशाला में चारा डालने के लिए नांद और साफ पानी के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। किसान भाई, छत मजबूत हो और गर्मी और वर्षा से पशुओं की रक्षा हो सके। किसान भाइयों, पशुशाला में पर्याप्त हवा का आवागमन होना चाहिए। बंद और घुटन वाली पशुशाला में नमी और दुर्गंध बढ़ती है, जिससे बीमारियां फैल जाती है और पशुओं में सांस संबंधी रोग होने का खतरा रहता है। तो हमारे किसान भाई प्राकृतिक रोशनी और हवा के लिए खिड़कियां तथा उचित वेंटिलेशन का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, पशुशाला प्रबंधन में साफ सफाई का विशेष महत्व है। गोबर और मूत्र को प्रतिदिन साफ करना चाहिए। गंदगी जमा रहने से मक्खी, मच्छर और अन्य कीट बढ़ते हैं, जो रोग फैलाने का काम करते हैं। नांद और पानी के बर्तनों को भी नियमित रूप से हमें धोना चाहिए, उसकी साफ सफाई भी जरूरी है। किसान भाइयों, पशुशाला की समय समय पर अच्छी तरह से साफ सफाई, आवश्यकता अनुसार कीटाणु शोधन करना चाहिए। बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए, ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। किसान भाई, पशुशाला से निकलने वाले गोबर को एक निश्चित स्थान पर एकत्र करना चाहिए। गोबर से कंपोस्ट या जैविक खाद बनाई जा सकती है, जिसका उपयोग खेतों में किया जा सकता है। इससे रासायनिक खाद पर खर्च कम करने में मदद मिलती है। गर्मी में पशुओं को पानी की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए अपने पशुओं को ताजा और स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। पानी की टंकी और बर्तनों की नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। गंदा या दूषित पानी हमें अपने पशुओं को नहीं पिलाना चाहिए, इससे हमारे पशुओं का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और हमारा पशु बीमार हो सकता है, और कई रोगों का कारण भी गंदा पानी बन सकता है। किसान भाइयों, पशुओं को उनकी उम्र, वजन, नस्ल और उत्पादन के अनुसार संतुलित आहार देना चाहिए। हरा चारा, सूखा चारा, दाना, खनिज मिश्रण और नमक उचित मात्रा में देना पशुओं के लिए उपयोगी होता है। सड़ा गला या फफूंद लगा चारा हमें पशुओं को नहीं देना चाहिए। चारे को सूखे और साफ स्थान पर सुरक्षित रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में पशुशाला को ठंडा रखने के लिए पर्याप्त हवा, छाया और स्वच्छ पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार पंखे या पानी के छिड़काव की व्यवस्था भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। सर्दी और बरसात में पशुओं को ठंडी हवा, नमी और बारिश से बचाना चाहिए। फर्श और बिछावन हमेशा सूखा रखना चाहिए। छोटे बछड़ों और कमजोर पशुओं के लिए विशेष सुरक्षा हमें करनी चाहिए। किसान भाई, पशुओं को समय समय पर टीके लगवाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे किसान भाई पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार कृमिनाशक दवाई का उपयोग भी कर सकते हैं। पशु में भूख कम होना, सुस्ती, बुखार, खांसी, दस्त या दूध उत्पादन में अचानक कमी जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत हमें पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। नए खरीदे गए पशुओं को कुछ समय तक अलग रखकर उसकी निगरानी हमें करनी चाहिए। इससे किसी संभावित संक्रामक रोग को झुंड में फैलने से रोका जा सकता है और हमारे पशु स्वस्थ रह सकते हैं। किसान भाइयों, प्रतिदिन पशुओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। उनके खाने पीने, चलने फिरने, गोबर, दूध उत्पादन पर हमें ध्यान देना चाहिए। उनकी समय समय पर निगरानी करनी चाहिए। असामान्य लक्षण दिखाई दे तो हमें तुरंत उपचार कराना चाहिए। दूध देने वाले पशुओं को दूहने से पहले और दूहने के बाद थनों की साफ सफाई करना जरूरी है। इससे दूध की स्वच्छता बनी रहती है और थनेला जैसी समस्याओं से बचाव हो जाता है। तो किसान भाइयों, कुल मिलाकर बात ये निकल के आती है कि अच्छा पशुशाला प्रबंधन, साफ सफाई, पर्याप्त हवा और रोशनी, स्वच्छ पानी, संतुलित आहार, उचित जल निकासी, मौसम से सुरक्षा, टीकाकरण और नियमित स्वास्थ्य जाँच से पशुओं को स्वस्थ रखा जा सकता है।
1: आप सुन रहे थे खेती की बातें, विषय था पशुशाला प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कार्य। आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। तो आज अपराहन कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स 4 बजे, कंट्री वाइड और इनसाइट्स रात 9:30 पर, ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जिले की हलचल में सवेरे 9:15 पर आप सुनेंगे लखनऊ और जौनपुर जिलों की हलचल। आज रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे एक नाटक, नाम है स्वयं साक्षी। ये नाटक डॉक्टर विनय का लिखा हुआ है। इस नाटक के निर्देशक विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक हैं, तो सुनना ना भूलिएगा नाटक स्वयं साक्षी आज रात 10 बजे। सुगम संगीत में शाम 7:32 पर हम आपको सुनवाएंगे साकिब अक्कासी और साथियों के गाई चंद कव्वाली।

आज के युग वाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर हमारे क्रम रहेंगे आपके लिए। बूझो तो जाने कुछ खास है आज, लव स्टोरी, ताना बाना, बूस्टर और फिल्म संगीत के। मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में आज शाम 5 दो महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी जाएगी। पहला रहेगा नई रोशनी, दूसरा रहेगा सीखो और कमाओ। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी का यह नजीबाबाद केंद्र है, थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें, सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान की प्रमुख कंपनियों के साथ की 3,195 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग। कहा, भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर है आधारित। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा सुधार पर राधाकृष्ण समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से मांगा जवाब। झांसी के बेतवा नदी पर बने परीक्षा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स के रूप में मिली मान्यता। 14 अक्टूबर को फ्रांस में मिलेगा अवार्ड। और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में जापान की प्रमुख कंपनियों के सीईओ और बिजनेस लीडर्स के साथ राउंड टेबल मीटिंग की। इस अवसर पर जापान की दो कंपनियों के 3,195 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग की गई। ईडा क्षेत्र में लगने वाली इन परियोजनाओं से 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने निवेशकों का आभार जताते हुए कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, स्पष्ट नीति और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर सुधार करते हुए प्रदेश आज भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। श्री योगी ने कहा कि जापान के पास दशकों का औद्योगिक अनुभव है, वहीं उत्तर प्रदेश के पास उसे आत्मसात करने और आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी है।
5: जापान के पास दशकों का औद्योगिक अनुभव है, उत्तर प्रदेश के पास उसे आत्मसात करने और आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी।

0: उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड गुड गवर्नेंस का एडवांटेज आज उत्तर प्रदेश के पास है।
1: इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। उन्होंने जापान के उद्योग जगत से भारत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में निवेश करने का आह्वान किया। वहीं कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है कि अनुसंधान और तकनीकी नवाचार सीधे किसानों तक पहुंचे। श्री चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और ये वैश्विक निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।
2: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पेरिटी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
1: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आयोजन 18 से 23 अगस्त तक उत्तर प्रदेश और दिल्ली में किया जा रहा है। इसमें 200 से अधिक जापानी उद्योगपति, सीईओ, कारोबारी प्रतिनिधि और नीति निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को नंदन नीलेकणी समिति द्वारा संशोधित रूप में लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के झांसी में स्थित 140 साल पुराने परीक्षा बांध को अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल चुकी है। सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग ICID ने इस ऐतिहासिक बांध को विश्व धरोहर सिंचाई संरक्षण WHS के रूप में मान्यता दी है। एक रिपोर्ट।
3: सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अनिल गर्ग ने बताया कि 14 अक्टूबर को फ्रांस के मार्सिले में आयोजित होने वाले 26वें ICID अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और 77वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक के दौरान परीक्षा बांध को WHIS पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। झांसी में बेतवा नदी स्थित परीक्षा बांध ने 140 वर्षों से बुंदेलखंड की सिंचाई प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बेतवा नहर प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है जो बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि के लिए पानी की आपूर्ति करती है। परीक्षा बांध लगभग 1174 मीटर लंबा और नदी तल से लगभग 16.8 मीटर ऊपर स्थित है। सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल भारत दौरे पर आए नाइजीरियन प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वहां के कृषि और खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री डॉ

0: लियू साबी अब्दुल्लाही से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समेत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे सकारात्मक और जमीनी बदलावों पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर श्री मौर्य ने कहा कि कृषि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रदेश में सरकार अच्छा काम कर रही है।
1: यह सब कुछ जो होता हुआ हम देख रहे हैं, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लगातार 9 वर्ष से अधिक समय से अच्छा काम उत्तर प्रदेश में किया गया उसका सुपरिणाम।
0: श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र कल 3 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। श्री मिश्र आज से शुरू हो रही समिति की बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्ण स्मृति स्तंभ के शीर्ष पर न्यास का लोगो लगाया जाना बाकी है, बाकी सारे कार्य पूरे हो गए हैं। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से कई जनपदों में बाढ़ के हालात हैं। वाराणसी में 84 घाटों का संपर्क भी टूट चुका है। सुरक्षा के लिहाज से अगले आदेश तक नाव संचालन पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर करीब 67 मीटर दर्ज किया गया है, वहीं 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ना लगातार जारी है। चित्रकूट में बारिश की संभावना को देखते हुए कक्षा 12वीं तक के विद्यालयों को आज के लिए बंद कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के प्रमुख कंपनियों के साथ की 3,195 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग। कहा, भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर है आधारित। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा सुधार पर राधाकृष्ण समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से मांगा जवाब। झांसी के बेतवा नदी पर बने परीक्षा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स के रूप में मिली मान्यता। 14 अक्टूबर को फ्रांस में मिलेगा अवार्ड। और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता। फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

साथ साथ। कार्यक्रम सूरज के साथ साथ सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी मनोज वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। गुरुवार की एक नई सुबह में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, भारत वर्ष में एक साथ मिलकर रहना या एक जैसी अच्छी भावना रखना जो हम सबके हित में हो या देश के हित में हो, सद्भावना के रूप में मानी जाती है। और सद्भावना से कहा जाए तो सभी क्षेत्रों में तरक्की होती है। श्रोताओं, सद्भावना को समरसता के नाम से भी जाना जाता है।

सद्भावना या समरसता की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम सद्भावना दिवस या समरसता दिवस मना रहे हैं, और ये दिवस भारत में हर साल भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की स्मृति में मनाया जाता है। हम आपको बता दें कि राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त सन 1944 को मुंबई में हुआ था। उन्हीं की जयंती को सद्भावना दिवस या समरसता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम आपको यह भी बता दें कि उन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा था, साथ ही साथ भारत के सभी धर्मों के बीच सामुदायिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, शांति, प्यार और लगाव को लोगों में बढ़ावा देने के लिए ही ये दिवस मनाया जाता है। उन्होंने ये भी कसम ली थी कि वे बिना हिंसा के संवैधानिक साधनों और वार्तालाप के जरिए ही एक दूसरे के बीच की दूरियों को अवश्य खत्म कर देंगे। इस दिन देश के अलग अलग राज्यों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत का सबसे पहला राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार समाज सेविका मदर टेरेसा को दिया गया था। आइए श्रोताओं, हम सब भी इस मौके पर सभी धर्मों के लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता, शांति, भाईचारा, सहानुभूति बढ़ाने का प्रयास करें ताकि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भी पूरा हो सके और भारतवर्ष की ये परंपरा भी है।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत था ये, और इसका संदेश भी आपको समझ में आ ही गया होगा। सिर्फ और सिर्फ उस संदेश पर काम करना बाकी है हम सबका। आइए हम सब मिलके काम करें, फिलहाल ये संदेश, उसके बाद फिर अगले चरण की ओर बढ़ेंगे।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज आपके साथ हैं आपके साथी मनोज वर्मा। एक बार फिर अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं आज के इस अंक में और नजर डाल लेते हैं बीते वर्षों की 20 अगस्त के कुछ अहम घटनाओं की तरफ भी जो सुनहरे अक्षरों में दर्ज रही हैं। तो 20 अगस्त सन 2001 में भारतीय चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने स्पेन के अलेक्साई शिरोव को हराकर विलारोडेज शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता था। ये चैंपियनशिप स्पेन में हुई थी। 20 अगस्त सन 2008 में भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध कलाकार अरुणा साईराम को अमेरिका में विशिष्ट सम्मान से नवाजा गया था। उन्हें भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष पद से सम्मानित किया है। वर्तमान में वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय संगीत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जानी जाती हैं और आप कर्नाटक संगीत की गायिका हैं। 20 अगस्त सन 1940 को राजेंद्र कुमार पचौरी का जन्म हुआ। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित प्रसिद्ध पर्यावरण विद के रूप में प्रसिद्ध थे। आप ऊर्जा के क्षेत्र में दक्षता रखने वाले पैनल में भी शामिल थे। उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल्बर्ट और नॉल्ड गोर गुनियर के साथ संयुक्त रूप से 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था। आज उनकी जयंती पर उन्हें सादर नमन और श्रद्धांजलि। 20 अगस्त सन 2014 को भारत के प्रसिद्ध योग गुरु बीकेएस आयंगर का निधन हुआ। हम आपको बता दें कि टाइम पत्रिका ने 2004 में दुनिया के

सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में उनका नाम शामिल किया था। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान से भी नवाजा गया था। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन और श्रद्धांजलि। श्रोताओं, हमारे देश में अनेक तरह के प्रदूषण हैं, लेकिन एक प्रदूषण जिसका नाम पर्यावरण प्रदूषण है को हम सब जानते ही हैं, यानी वायु जल मिट्टी में हानिकारक या अवांछित पदार्थों का मिल जाना, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। मतलब हवा में धुआं जो पेट्रोल डीजल के वाहनों से होता है, से सांस की बीमारी होने का खतरा होता है और कभी कभी सांस लेने में परेशानी के साथ चक्कर आने लगते हैं। ऐसे ही जल में अगर गंदा पानी मिल जाए तो वो पानी खराब हो जाता है आदि। पर्यावरण प्रदूषण को स्वस्थ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि हम सब स्वस्थ रह सकें। श्रोताओं, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में या रोकने के लिए अक्षय ऊर्जा बहुत बड़ी भूमिका रखती है। हम आपको बता दें कि अक्षय ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा हैं। ये सभी स्रोत पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलाते, क्योंकि ये कोयला तेल जैसे ईंधन की जगह काम आते हैं। इससे खतरनाक गैसें बहुत कम निकलती हैं और ग्लोबल वार्मिंग रुकती है। ये स्रोत कभी खत्म नहीं होते हैं, इसीलिए इनको अक्षय कहा गया है, क्योंकि ये सब सूरज, हवा और पानी से बनते हैं। अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल से हवा साफ रहती है। हम सब इसका उदाहरण चार्जिंग वाली कार और आजकल स्कूटर देख रहे हैं। सरकार भी इस ओर काफी ध्यान दे रही है ताकि प्रदूषण कम हो। हम आपको यह भी बता दें कि इन सब बातों को ही मद्देनजर रखकर भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, और यह दिवस भी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म की याद में मनाया जाता है। इस दिवस को राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जनमानस को जागरूक करना है कि वे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अलावा अक्षय ऊर्जा यानी नवकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के बारे में विस्तार से सोचें और उपयोग करें, ताकि इस दिवस को भी मनाने का उद्देश्य पूरा हो सके।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और जरा नजर डाल लेते हैं आज के अखबारों की अहम सुर्खियों की तरफ भी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI 1 अक्टूबर से बेसिक बचत बैंक जमा खाताधारों के लिए नकद निकासी नियमों में बदलाव करने जा रहा है। अब एक माह में 4 मुफ्त निकासी के बाद हर निकासी पर 15 रुपये शुल्क और GST लगेगा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आए दिन शिक्षण संस्थानों की अव्यवस्थाओं को लेकर छात्र छात्राओं के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। जहां भी कमी सामने आएगी वहां के संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही होगी। ये दोनों अहम सुर्खियां हमने ली थी अमर उजाला से। बात की जाए दैनिक जागरण में प्रकाशित होने वाली इन अहम सुर्खियों की, तो भारत ने बीते कल FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के अपने अंतिम पूल डी मुकाबले में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। कप्तान हरमनप्रीत और अभिषेक भारत की जीत के प्रमुख नायक रहे। इसके अलावा भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने अपने पहले कश्मीर दौरे में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद भारत के रुख के अनुसार इस प्रदेश को भारत का अहम अंग बताया और सुरक्षा स्थिति में सुधार की सराहना की। यानी जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा, ये बात कही गई। बात की जाए हिंदुस्तान की, तो साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सिम जारी करने की प्रक्रिया को और सख्त करने का फैसला किया है। दूरसंचार विभाग ने एक व्यक्ति के नाम पर तय सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन रखने और नए सिम लेने पर रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। तो ये अहम सुर्खियां थी आज के अखबारों की। और अब हम बात करेंगे विश्व मच्छर दिवस की, जिसे हम आज मना रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, विश्व मच्छर दिवस की। और आपको सुनकर भी हंसी मुस्कुराहट आ ही रही होगी, हमें तो आ ही रही है। मच्छर से हम सब परिचित हैं, जिसकी वजह से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया नामक बीमारी हो जाती है। और अगर इन बीमारी का तुरंत इलाज ना किया जाए तो गंभीर परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इस समय यानी बरसात के मौसम में काफ़ी मच्छर घर के आसपास गमलों में या किसी और जगह पानी इकट्ठा होने पर पैदा हो जाते हैं और गंभीर परिणाम मिल सकते हैं उनके काटने पर। अब अगर आगे की बात करें तो सन 1897 में ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने इस बात का पता लगाया कि मलेरिया नामक बीमारी मादा एनोफिलीज

मच्छरों द्वारा फैलती है। इस बात को ही याद रखने के लिए विश्व मच्छर दिवस हर साल के 20 अगस्त को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत सन 1930 से लंदन से हुई थी। सर रोनाल्ड रॉस ने यह भी साबित किया था कि मलेरिया गंदे पानी या हवा से नहीं होता बल्कि मच्छरों से होता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि जनमानस को मच्छरों से होने वाली खतरनाक बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से जागरूक और सचेत करना है ताकि वे स्वस्थ रहें। इसलिए श्रोताओं, आइए हम सब भी आज से ये प्रण करें कि हम अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करेंगे और मच्छर को दूर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही अपने आसपास साफ सफाई का पूरा ख्याल करेंगे ताकि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पूरा हो सके। वैसे कितनी भी हम साफ सफाई कर लें, कहीं ना कहीं मच्छर तो भाई दिखाई पड़े जाते हैं और अपना काम भी कर ही जाते हैं, है ना। चलिए फिलहाल एक गीत भी बना हुआ है मच्छर पर, वो सुनवा देते हैं आपको।

और इस गीत के साथ आज का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ संपन्न करने की मुझे यानी मनोज वर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, अपना खास ख्याल रखें।

साथ साथ। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। सब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
3: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक, ये 4 लेन हाईवे

0: बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
0: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का 4th संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
3: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
1: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
4: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्तिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती

0: टीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
2: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और अब ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
4: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी जबकि खतरे का 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
5: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्व

0: महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज की सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, सीआईडी को सौंपी गई जांच। यूपीएससी जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेनजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए सीएम जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टरडेम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स 4 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स कवरिंग 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। Cabinet also clears 4 laning of Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. Fourth round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to post today to elect a new president. US President Donald Trump declares economic warfare against Iran, threatens economic punishment for any country helping Tehran. And Indian women's team to take on England in their final Pool D match of FIH Hockey World Cup in Amstelveen this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railways covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
3: Five major decisions have been taken. The first 4 projects are related to the railways, while the fifth is a highway project. The first 4 railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradeep railway line. The fifth project is the construction of a 4-lane highway from Muzaffarpur via Sitamarhi to Sonbarsa. These projects, with a total cost of 13,041 crore rupees, were approved by the cabinet today.
4: Total 13,041 crore rupees ke projects cabinet ne approve kiye.
2: Mr. Vaishnaw informed that the cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of National Highway 22 in Bihar to a 4-lane standard at a total capital cost of over 3,590 crore rupees.
3: The project is becoming a major lifeline for the entire Bihar. It starts from Sonbarsa on the Nepal border and passes through Sitamarhi and Muzaffarpur. It will create a complete transport artery which will benefit Bihar for many years. It is an 83-kilometer brownfield project under which the existing road

0: favorable reception is another headline in the Tribune. New U.S. immigration rules may mean greater scrutiny for Indians with expanded definition of public charge, reports the Asian Age. And finally, the Times of India refers to a study saying people with no high BP, diabetes or smoking habit lived nearly 13 years longer without dementia than those with all three risk factors. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves four multi-tracking railway projects covering eight districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears four-laning of Muzaffarpur-Sitamarhi-Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. Fourth round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to polls today to elect a new president. U.S. President Donald Trump declares economic warfare against Iran threatens economic punishment for any country helping Tehran. And Indian women's team to take on England in their final Pool D match of AFIH Hockey World Cup in Amstel, Finn this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। मरकजी काबीना ने मगरबी बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आठ जिलों का इहाता करने वाले चार मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। मरकजी काबीना ने बिहार में कौमी शाहराह नंबर 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा सेक्शन को चार लेन करने को भी मंजूरी दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवालम में जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज का चौथा दौर आज सिंगापुर में मुनक्किद होगा। बांग्लादेश में नए सदर के इंतखाब के लिए आज वोट डाले जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का ऐलान किया है। ट्रंप ने तेहरान की मदद करने वाले किसी भी मुल्क को मुआशी तौर पर सजा देने की भी धमकी दी है। और एफआईएच हॉकी आलमी कप में पूल डी के आखिरी मैच में आज शाम एम्स्टल फेन में खवातीन की भारतीय टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने कल 13,000 करोड़ रुपए मालियत के पांच प्रोजेक्टों को मंजूरी दी, जिनमें रेलवे के चार और शाहराहों का एक प्रोजेक्ट शामिल है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद मीडिया को प्रोजेक्टों से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की। जनाब वैष्णव ने मुतला किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जेर क्यादत काबीना ने रेलवे के मल्टी ट्रैकिंग के चार प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिनमें चार रियासतों मगरबी बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आठ अजला का इहाता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पर कुल 9,450 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी और ये प्रोजेक्ट साल 2030-31 तक मुकम्मल होंगे।
3: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले चार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: जनाब वैष्णव ने मुत्तला किया कि मरकजी काबीना ने बिहार में कौमी शाहराह 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा हिस्से को चार लेन वाला करने को भी मंजूरी दी है, जिस पर तकरीबन 3,590 करोड़ रुपए की कुल सरमाया लागत आएगी। जनूबी जोनल काउंसिल की 31वीं मीटिंग आज तमिलनाडु में चेन्नई के करीब कोवालम में होगी, जिसकी सदारत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे। जनूबी रियासतों के वज़राए आला और तीन मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके पुदुचेरी, अंडमान निकोबार जज़ायर और लक्षद्वीप भी इस मीटिंग में शिरकत कर रही हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
4: जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग में छह वज़राए आला हिस्सा लेंगे, जिनमें तमिलनाडु के वज़ीर आला जोसेफ विजय, कर्नाटक के वज़ीर आला डी के शिव कुमार, तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और पुडुचेरी

0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नई मुआशी जंग शुरू करने का ऐलान किया है। ट्रूथ सोशल पर की गई पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमरीका के साथ समझौता करने के कई मौके दिए गए, ताहम ईरान ऐसा करने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन अब तेहरान के खिलाफ मुआशी जंग और अलग थलग करने की ऐसी मुहिम का आगाज करेगा जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। ट्रंप ने तेहरान की मदद करने वाले किसी भी मुल्क को मुआशी तौर पर सजा देने की भी धमकी दी। उन्होंने खबरदार किया कि कोई भी मुल्क जो ईरान के माली इदारों, कारोबार, हवाई अड्डों और हुकूमती एजेंसियों की मदद करेगा, उसे संगीन इक्तिसादी नतायज का सामना करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि इन इकदामात का मकसद तेल के स्मगलिंग नेटवर्क, मुआशी लेन देन, मकानात के लेन देन, बहरी जहाजों की रजिस्ट्री और फ्रंट कंपनियों समेत ईरान की इक्तिसादी शहरत को निशाना बनाना है। सदर ट्रंप ने नए इकदामात को मुआशी डी डे करार देते हुए अमरीकी इत्तेहादियों से अपील की कि वो ईरान को अलग थलग करने में वाशिंगटन का साथ दें। ट्रंप ने मजीद कहा कि इस मुहिम का मकसद बैरून मुल्क फाइनेंस और मदद की ईरान की सलाहियत को कमजोर करना है। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब तेल की आलमी आमदोरफ्त की अहम तरीन आबी गुजरगाह आबनाए हुरमुज पर अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुरमुज खुली रहेगी। ट्रंप ने दावा किया कि आबनाए हुरमुज की अमरीकी बहरी नाकाबंदी बेहद मुअसर रही। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल UNSC में फौरी इस्लाहात का मुतालबा किया है और कहा है कि सलामती काउंसिल के ढांचे और फैसला साजी के अमल में मौजूदा दौर की आलमी हकीकतों की अक्कासी होनी चाहिए और तरक्की पजीर मुल्कों को ज्यादा नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। कामकाज के तरीक़ाकार से मुतालिक UNSC के खुले मुबाहिसे के दौरान इजहार ख्याल करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा में भारत की शाज़े दाफ़े योजना पटेल ने जोर देते हुए कहा कि इस्लाहात की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा वाज़े तौर पर महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि साल 1945 से अक़वामे मुत्तहिदा के अराकीन की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। मोहतरमा पटेल ने दलील दी कि सलामती काउंसिल को उस दौरे के हालात के मुताबिक तरतीब देनी नहीं दी जा सकता। दिल्ली में जारी वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी SIR में दरखास्तें जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 24 अगस्त कर दी गई है। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल अफसर के मुताबिक नजरसानी शुदा शेड्यूल के तहत 31 अगस्त को इंतखाबी फहरिस्तों का मुसविदा शाई किया जाएगा। दावे और एतराजात दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर होगी। इन एतराजात से निमटने का अमल 31 अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा, जिसके बाद 4 नवंबर को हतमी वोटर फहरिस्त शाई की जाएगी। भारत के महकमाए मौसमियात ने आज छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में बहुत तेज बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी भारत के हिस्सों में कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमाए मौसमियात ने कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरलम, माहे और तमिलनाडु में दिन के दौरान गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। शिमाली ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल लगातार संगीन बनी हुई है, जहां बारिश में कमी के बावजूद भद्रक, केंद्रपड़ा, बालासोर, मयूरभंज और क्योंझर जिले पानी में डूबे हुए हैं। सुबर्णरेखा नदी से मुतालिक तशवीश जारी है, जो आज सुबह राजघाट पर 10.36 मीटर के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। FIH हॉकी आलमी कप के पूल डी के आखिरी मैच में ख्वातीन की भारतीय टीम का मुकाबला आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। बैडमिंटन में नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जारी BWF आलमी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी आज प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा इनकलाब ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में इदारा जाती इस्लाहात पर जोर देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को अपनी शेसुर्खी बनाया है कि हमारा फर्ज है कि एक ऐसा मुतहर्रिक इदारा बने जिस पर मुल्क को फख्र हो। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी है कि झारखंड में 26 दिनों से जारी

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: संदेश से पहले जो गीत आपने सुना वो आशीर्वाद फिल्म का था। आवाज थी लता मंगेशकर की, बोल गुलजार के, और संगीत वसंत देसाई का था। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम मौसम, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। गीत लिखा है गुलजार ने और धुन तैयार की है मदन मोहन ने।

ये संगीत खय्याम का, बशर नवाज के बोल, भूपेंद्र की आवाज, फिल्म का नाम बाजार।

0: संगीत खयाम का था, बशर नवाज के बोल थे, भूपेंद्र की आवाज बाजार फिल्म के लिए।
1: दी, ये देख।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: गोल्डन हिट्स आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। ये आवाज मुकेश की, गुलजार के बोल, सलील चौधरी का संगीत, फिल्म का नाम।

पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, खय्याम के संगीत निर्देशन में, गुलजार के बोल, आशा भोसले की आवाज़, फिल्म का नाम थोड़ी सी बेवफाई।

आवाज़ थी आशा भोसले की, फिल्म का नाम थोड़ी सी बेवफाई। इससे पहले कि अंतिम गीत आपको सुनवाएं, हम आपको बता दें कि आज सवेरे 9:25 पर, यानी अब से थोड़ी ही देर बाद, धरती गाती है कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे उषा पंत के गाए कुछ रुहेलखंडी लोकगीत। तो सुनना ना भूलिएगा आज का ये कार्यक्रम। और एक ही गीत के लिए हमारे पास वक्त बचा है, और चाहते तो हमारे भी होती हैं कि भाई हम भी आपके साथ और ठहरे हैं, लेकिन क्या करें कि उसके बाद भी नहीं चाह पाते हैं ना, क्योंकि वक्त के हिसाब से हमें चलना होता है और वक्त के हिसाब से ही हमें काम करना होता है। भले ही कोई भी कितना कहता रह जाए कि भाई थोड़ी देर और ठहरिए, जैसा कि मोहम्मद रफ़ी साहब कह रहे हैं।

भाई जाना तो हमें भी होगा इस गोल्डन हिट्स कार्यक्रम से, क्योंकि अगले कार्यक्रम भी आपको सुनवाने हैं और रहेंगे तो हम आपके साथ 11 बजे तक। ये गीत था फिल्म आखिरी खत का, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ थी। और इस वक्त 9:14 और 45 सेकंड हो रहे हैं। ज़िले की हलचल थोड़ी ही देर में हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए लखनऊ और जौनपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का।
1: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुई। लखनऊ में विभिन्न PM श्री केंद्रीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को तन्मयता से सुना। संबोधन के बाद छात्रों ने नशा मुक्त जीवन जीने और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने का संकल्प लिया।
2: आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: स्वतंत्रता दिवस राजधानी लखनऊ में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक विधान भवन के समक्ष आयोजित राजकीय समारोह में ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा और सम्मान के लिए अदम्य साहस दिखाने वाले वीर सैनिकों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। उन्होंने उन परिवारों के प्रति कृतज्ञता जताई जिनके घर जन्मे वीरों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा किया। मुख्यमंत्री ने कहा, आजादी का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि अराजकता, पिछड़ेपन, गरीबी, अशिक्षा और असमानता से भी पूर्ण मुक्ति है। स्वतंत्रता दिवस से पहले 9 अगस्त 2026 को हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकालकर हुई। हजरतगंज क्षेत्र में निकली तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में आम जनमानस और समाज के संभ्रांत नागरिकों ने भाग लिया। यात्रा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित विभिन्न भाजपा नेताओं ने भी भाग लिया। 17 अगस्त तक विभिन्न संगठनों, स्कूल, कॉलेज और संस्थानों द्वारा अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया गया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 8 अगस्त 2026 को लखनऊ स्थित CSIR राजकीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के बंथरा कैंपस में इको एजुकेशनल हब का उद्घाटन किया। ये हब जैव विविधता के प्रति जागरूकता और प्राकृतिक पर्यावरण की गहरी समझ बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह पहल विज्ञान, शिक्षा और सस्टेनेबिलिटी को जोड़कर हरित और जागरूक भविष्य की दिशा में प्रेरित करती है। इसके लिए उन्होंने संस्थान के निदेशक और वैज्ञानिकों की प्रशंसा की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के छात्र अब घर बैठे अपने कार्यों का निस्तारण करा रहे हैं। विश्वविद्यालय ने छात्रों की सुविधा के लिए ऑनलाइन फेसलेस स्टूडेंट सिस्टम पोर्टल की शुरुआत की है। अब छात्र परीक्षा सहित अन्य कार्यों को ऑनलाइन माध्यम से करा सकेंगे। विश्वविद्यालय से पूरे प्रदेश में 750 से अधिक संस्थान जुड़े हैं। कई बार छात्र परीक्षा से संबंधित रिजल्ट में सुधार, अंक पत्र अपडेट करने सहित डिग्री से जुड़े कामों के लिए विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर या नोएडा परिसर पहुंचते हैं, जिससे असुविधा होती है। अब ये कार्य ऑनलाइन होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JP पांडे ने बताया कि स्टूडेंट्स को अपने कार्य और उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इसके बाद छात्र को एक विशिष्ट ग्रीवांस नंबर मिल जाएगा। इस विशिष्ट नंबर से छात्र अपने कार्य की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। सावन माह के प्रत्येक सोमवार को लखनऊ के मशहूर मनकामेश्वर, बुद्धेश्वर और कोनेश्वर सहित विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है। प्रशासन ने प्रमुख मंदिरों और उनके आसपास के रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है।

0: कि पूरे महीने लागू रहेगा। सावन के तीसरे सोमवार यानी 17 अगस्त 2026 को नागपंचमी मनाई गई। इस अवसर पर शहर के ग्रामीण इलाकों में विशेष दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें पहलवानों ने जोर आजमाइश की। इमाम हुसैन का चहलुम 4 अगस्त को लखनऊ में गम के माहौल में मनाया गया। राजधानी में चहलुम के अवसर पर निकले ऐतिहासिक जुलूस में हजारों की संख्या में अदादारों ने भाग लिया और आंसू बहाकर इमाम को अपना पुरसा पेश किया। चहलुम का जुलूस विक्टोरिया स्ट्रीट स्थित नदीम साहब के इमामबाड़े से शुरू होकर तालकटोरा की करबला पर जाकर खत्म हुआ। जुलूस से पहले एक मजलिस भी आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल महासंघों को बढ़ी हुई वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसे आजादी के बाद देश का सबसे महत्वाकांक्षी खेल विकास कार्यक्रम बताया है। लखनऊ निवासी और अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन में देश के लिए स्वर्ण पदक सहित कई पदक जीतने वाले खिलाड़ी अबू हुबैदा ने सरकार के इस फैसले की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और वह देश के लिए अधिक संख्या में मेडल जीत पाएंगे। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा कराई जाने वाली यूपी टी20 लीग के चौथे संस्करण की शुरुआत 14 अगस्त 2026 को हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इकाना स्टेडियम में आयोजित उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उन्होंने पहले मैच के टॉस के लिए सिक्का उछालकर लीग की औपचारिक शुरुआत की। इस बार लीग का आयोजन लखनऊ और कानपुर दो स्थानों पर किया जा रहा है। लीग के चेयरमैन डॉक्टर संजय कपूर ने बताया कि 22 मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जबकि फाइनल सहित 12 मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जाएंगे। लीग में लखनऊ फाल्कन्स, कानपुर सुपर स्टार्स, मेरठ मैवरिक्स, नोएडा किंग्स, काशी रुद्रास और गोरखपुर लायंस टीम भाग ले रही हैं।
1: लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का।
2: जौनपुर में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास, गरिमा एवं देशभक्ति की भावनाओं के साथ मनाया गया। पुलिस लाइन परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हुआ। राज्यमंत्री समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ मना रहा है। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्र कराने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने, वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अमर शहीदों के त्याग, बलिदान, संघर्षों के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। उन्होंने सभी स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हम उनके आदर्श और त्याग की प्रेरणा लेकर देश की एकता, अखंडता, समृद्धि एवं विकास के लिए निरंतर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के विकास में प्रत्येक नागरिक को महत्वपूर्ण भूमिका है तथा हमें अपने कर्तव्य को ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए देश के विकास में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में देश में चौमुखी विकास हो रहा है। सेमी कंडक्टर समेत हर क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या कहते हैं गिरीश चंद्र यादव?
3: प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी क्षेत्रों में भारत अग्रणी भूमिका में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, रक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में भारत कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
2: जिलाधिकारी सेमुल पाल के द्वारा तहसील बदलापुर और सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र का अचूक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही समस्त सुविधाओं और दवा वितरण, चिकित्सा, पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति, साफ सफाई तथा अन्य व्यवस्थाओं को जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि शासन के मंशा के अनुरूप आम जनमानस को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार के असुविधा न हो, चिकित्सा एवं के समय से उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनी रहे तथा जांच एवं उपचार की सुविधा शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप सरकारी स्वास्थ्य संसाधनों में आम जन को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता की जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी का स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं में सुधार एवं जनमानस में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरीक्षण की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि निरीक्षण में पाई गई कमियों को तत्काल दूर कर अनुपालन उपलब्ध कराया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस प्रकार की कोई शिकायत पुनर्वित्त न हो। साइबर क्राइम थाना सेल जौनपुर जनपद के द्वारा साइबर के सेल पुलिस टीम के द्वारा CER पोर्टल के माध्यम से 200 गुमशुदा मोबाइल की कीमत 45 लाख रुपए, अब तक कुल 1941 मोबाइल जो कीमत 3,90,00,000 रुपए की बरामद कर चुके हैं। मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम थाना जनपद जौनपुर द्वारा CER पोर्टल के माध्यम से 200 गुमशुदा मोबाइल जो जिसकी कीमत 45 लाख रुपए के मोबाइल फोन को बरामद मोबाइल स्वामी कर्मियों को सुपुर्द किया गया। अब तक जिले में कुल 1941 मोबाइल बरामद की गई जिसकी कीमत कुल 3,90,00,000 रुपए है। मोबाइल फोन स्वामी कर्मियों को सुपुर्द किया जा चुका है। गुमशुदा मोबाइल के प्रार्थना पत्र CEIR पोर्टल के आधार पर साइबर क्राइम थाना जौनपुर पुलिस टीम के द्वारा पीड़ितों को गुम मोबाइल 200 मोबाइलों में जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र से व थाना के साइबर सेल द्वारा बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद वाराणसी, आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बलिया, प्रतापगढ़, भदोही से मोबाइल फोन बरामद किया गया। कुछ मोबाइल फोन अन्य प्रांत जैसे दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, राजस्थान से बरामद किया गया।

0: जिलाधिकारी समीप पाल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के द्वारा थाना बरसट्टी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर कार्यालय अभिलेख माला खान बैरक तथा अन्य व्यवस्थाओं को जायजा लिया गया तथा संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए शिकायतों एवं विवेचना में गुणवत्तापूर्ण संबंध निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिया गया। इस अवसर पर थाना परिसर में नव निर्मित भोजनालय का उद्घाटन किया गया। भोजनालय की व्यवस्था में निरीक्षण करते हुए साफ सफाई एवं स्वच्छता विशेष ध्यान रखने तथा पुलिस कर्मियों को गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी थाना परिसर में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा आम जन मानस की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निष्पक्ष एवं त्वरित निस्तारण करने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 9:25 हो रहे हैं। समय है कार्यक्रम धरती गाती है का। तो इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे उषा पंत के गाए कुछ रुहेलखंडी लोकगीत। पहले सुनते हैं इनकी आवाज में ये रुहेलखंडी लोकगीत।

उषा पंत की आवाज़ में आपने सुना ये रुहेलखंडी लोकगीत, और आज के धरती गाती है कार्यक्रम में हम आपको इन्हीं की आवाज़ में कुछ रुहेलखंडी लोकगीत सुनवा रहे हैं। पेश है इस कार्यक्रम का अगला रुहेलखंडी लोकगीत।

धरती गाती है कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उषा पंत के गाए कुछ रुहेलखंडी लोकगीत।

आप सुन रहे हैं उषा पंत के गाए हुए रोहिलखंडी लोकगीत और कार्यक्रम है धरती गाती है। और ये कार्यक्रम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है।

0: उषा पंत के गाए इस रुहेलखंडी लोकगीत के साथ आज का धरती गाती है कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर, 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है आपका नियमित और पसंदीदा कार्यक्रम गीत तुम्हारे। तो गीत तुम्हारे कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मनोज वर्मा और मेरे साथ मेरी साथी
1: निधि भारद्वाज का नमस्कार। श्रोताओं कैसे हैं आप? कैसे हैं मनोज जी?
0: मैं बहुत अच्छा हूं और एक मुद्दत बाद कहेंगे या ये कहेंगे कि पहली बार ये गीत तुम्हारे कार्यक्रम करने का हम दोनों को मौका मिल रहा
1: एक
0: है।
1: साथ, और हमारे श्रोता भी बिल्कुल खुश होंगे और अपने काम में बिजी होने के साथ हमारा आनंद भी ले रहे होंगे। और मुद्दत बाद जैसे आपने बात की है वैसे इस कार्यक्रम के अलावा हम और किसी कार्यक्रम में शायद साथ बैठे होंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना आज के इस कार्यक्रम का सिलसिला शुरू कर दें फोन नंबर के साथ।
0: बिल्कुल, तो मैं ये चाहता हूँ निधि कि इससे पहले कि सभी श्रोताओं का स्वागत तो हम दोनों ने
1: कर दिया
0: है ना, और लगातार वैसे मैसेज मिल रहे हैं, और यही मैं कहना चाहूंगा कि निधि
1: जी
0: हमारे जो श्रोता हैं नए भी हैं और पुराने भी हैं।
1: हाँ,
0: तो पुराने तो हमारे जानते ही हैं हमारा नंबर, तो जो आज हमारे श्रोता नए जुड़ रहे हैं तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे और उनको नंबर बता दीजिए।
1: हम उनका स्वागत करेंगे और कहेंगे कि आप जुड़े हमें अच्छा लगा, और जो नए साथी ने बिल्कुल अभी अभी रेडियो सेट पर हमारी आवाज सुनी है उनको हम बताते हैं साथी श्रोताओं कार्यक्रम की तुम्हारे में अपनी फरमाइश भेजिएगा 9457078 इस व्हाट्सएप नंबर पर।
0: अच्छा, हिंदी अंग्रेजी में तो निधि ने बता दिया, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो 94-570-78-288 ये रटा हुआ नंबर है हमारी तो। और भाई आप भी इसी इसको फेज में याद कर लीजिएगा कि एक सिस्टम से कि 94-570-78-288 ये हमारा नंबर है। और भाई अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कि लगातार मैसेज तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा था निधि इस वक्त जब व्हाट्सएप हम अपने श्रोताओं के देख रहे थे तो लगभग 6:20 से हमारे कंप्यूटर में मैसेजेस पड़े हुए हैं जी तुम्हारे के लिए
1: सुबह से ही, है ना। वंदना के साथ ही इन्होंने अपनी पसंद भेजनी शुरू कर दी, तो क्यों ना पहला हम व्हाट्सएप मैसेज ले लें।
0: बिल्कुल,
1: आप है हमारे साथी पुराने बस स्टैंड नगर पंचायत बड़ापुर बिजनौर से एम ताहिर, और इंद्रेश लाल जैन प्लांट देहरादून से हमारे उनके अन्य साथी, गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बाबूरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, और ये फरमाइश है रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल की, और साथ में है चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल। ये हमारे साथी हमें मैसेज भेज रहे हैं लाल माता सुदामा नगर अटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी काना श्रीमती मनोहर भाई बागरी प्रभु लाल बागरी, और बागरी मोहल्ला अटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मन भवन नैना सत्यनारायण कपिल शोभा फुंदी भाई बागरी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। और ये जुड़ चुके हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदा दिल्ली से तुलसी मस्किन वीना मस्किन आशीष राजा चैतन्य मस्किन मेघा मस्किन चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता खुराना केशु रिधान खुराना भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल छिपा ईशान छिपा पूजा परिहार की भी हमें फरमाइश मिली है और अपनी पसंद का गीत सुनने का अनुरोध कर रहे हैं। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू लक्ष्य मल्होत्रा राडू कोयल मल्होत्रा नानक चंद्र जी, और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल सिक्का डुगू भाविक सिक्का और इनके साथी, और ये हैं हमारे साथ जुड़ चुके हमारे साथी आप

एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज़ों में हमारे श्रोताओं ने सुना उन्हीं की पसंद पर एक दूजे के लिए फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश करने वाले हैं हमारे आप सब श्रोता, मौला धर्मदास नजीबाबाद के श्रोता हैं हमारे गुलाम हसन, निशात बानो, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, साबरा खातून, शहजादी शराफत अली अब्दुल रहमान और रानी बिटिया मदीहा। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई ज़िला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा के श्रोता हैं हमारे बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान, मोहम्मद यूसुफ, अनाबिया, बिटिया अलीशा, शकील, फ़हीम, अफ़ान और मोहम्मद यासीन अंसारी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये मैसेज देखिए हमें मिल रहा है हमारे नियमित श्रोता हैं और नाज पैलेस अजमेर शरीफ के श्रोता हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा हाशमी, असद अरहाम हाशमी और मोहम्मद आलम हाशमी के साथ पूरा ही हाशमी परिवार और बहुत ही खूबसूरत निधि ये हमेशा मैसेज लिखते हैं एकदम बोल्ड लेटर्स में, एक भी वर्तनी की इसके अंदर गड़बड़ी नहीं होती है। धन्यवाद बहुत बहुत, इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिएगा, सभी श्रोताओं के लिए हम कहना चाहेंगे और लिखते रहिएगा, अपने SMS को शामिल करने की पूरी कोशिश रहेगी। इसके अलावा भाई देखिए ये मैसेज

0: हमें मिल रहा है रविपाल राजपूत, रक्षु राजपूत, वंशल राजपूत, कुहू राजपूत, गांव बेर थाना शिवाला कलां बिजनौर के हमारे श्रोता हैं। इसके अलावा ये मैसेज मुझे मिल रहा है ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरा ही अब्बासी परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई, देखिए ये आप भी श्रोता हैं हमारे जिला हिंगोली महाराष्ट्र के श्रोता हैं शाहजी बोर्डखे, श्रीमती नंदा, हनुमान और उत्तम जमदाडे। के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद सांगली महाराष्ट्र के श्रोता हैं हनुमंत शिंदे, संगीता ऋषिकेश और वसुंधरा। के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद देखिए ये भी हैं कृष्ण की नगरी से हैं ये निधि मथुरा से, सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता अंसारी, नंदिनी और अंजलि। के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद देखिए हमारे आप भी श्रोता हैं। ये श्रोता देखिए हमें मैसेज तो कर रहे हैं लेकिन इनके कुछ स्टिकर्स भी आते हैं। निधि
1: परिमहल कासगंज से आप हमारे साथ जुड़े हैं, आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान, जमीन खान और इनके साथी, उत्तम नगर दिल्ली से हमें अनुरोध करते हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी आप हैं हमारे साथी। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नुहानकर, निर्मला नुहानकर, विशाल नुहानकर, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुहकर्रे और आप हैं पारडक कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनेश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे के साथ अडार नांदगांव छत्तीसगढ़ से भी हमें एक फरमाइश भेज रहे हैं माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा और ये फरमाइश भेजी है पहाड़गंज मुल्तानी टांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक ने। ये अनुरोध करते हैं पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी और शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातमा नाज, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा और ये हमारे पास फरमाइश है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी पी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पालीपुरी और सुनील पाठक के साथ बीकेपुरी और विनोदपुरी जी ये फरमाइश भेज रहे हैं। गणेशपुरगंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख, गुलफराज शेख के साथ बेबी मुस्कान।
0: इसके अलावा इस ही गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे आप सब श्रोता भी भाई। देखिए ये हमारे श्रोता हैं जसपुर के, उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नादमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे ये श्रोता भी हैं पटियाली रोड गंजुंडवारा के श्रोता हैं भाई हमारे आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल शेख, अरहान शेख और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं कोल सिटी बरका काना के श्रोता हैं अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम और निप्पी सहानी, साथ में मोहम्मद अफजाल मलिक भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई देखिए आप भी हैं नई बस्ती गंजुंडवारा के श्रोता हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी। के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई देखिए आप भी हैं
1: तेलंगाना निजामाबाद
0: के शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख है ना। और भाई देखिए जो बात आपने लिखी है वो भी हमने पढ़ ली, धन्यवाद इसके लिए आपका। और ये एक मैसेज और ले रहा हूँ उसके बाद में मैं गीत सुनवाऊंगा। नजीबाबाद गीत तुम्हारे का नाम से लिखा है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, करुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। के अलावा इनका पूरा भगत परिवार। सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

तपस्या फिल्म का ये गीत था आरती मुखर्जी और किशोर कुमार की आवाज में। गीत तुम्हारे कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश करने वाले हैं हमारे आप सब श्रोता जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान के श्रोताएं हैं। ये मैसेज देखिए बहुत दूर से मिला है हमें, आसाम से मिला है निधि, और पहली बार हमें मौका मिल रहा है इसको पढ़ने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये भी कहना चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हम आपके आभारी हैं। और ये हमारे श्रोता हैं हितेंद्र दास, आसाम से हैं ये। तो इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद देखिए आप श्रोता भी हैं, पटेल नगर मलोट के श्रोता हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जाजौरिया और गुड्डू भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं, कोपर गाँव से सुरेश मालोदे, वर्षा शिवगांव से श्रीराम गोधली और उषा इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं, मोहाली पंजाब के बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, इनके अलावा इस गीत

0: हमारे जो है ना सिंधौली मीरगंज बरेली का क्लब है ये, जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करुला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, मेराज अंसारी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं भाई। गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा के सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजारनिया इनके साथ हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद देखिए आप भी हैं। जिला नवांशहर पंजाब के श्रोता हैं गगनदीप ठांडी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम और बेबी वामिका और वाणी ठांडी इनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे श्रोता लगातार हमसे जुड़ रहे हैं। शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र के श्रोता हैं। संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे के अलावा निधि,
1: हाँ ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी और मुन्ना भाई, नेशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी जी ये फरमाइश भेज रहे हैं। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह चौडा और सिटी दीवाना, और अनुरोध करते हैं हमारे साथ लाल मोहम्मद अंसारी जी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा, तमन्ना, आशिक हुसैन अंसारी जी एक बार फिर पुरानी मस्जिद करेली बरेली से, और आप हैं एम असलम सैफी, जपनिश अभिगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी, दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से आप अनुरोध कर रहे हैं। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह जी जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से ये फरमाइश हमें मिली है, जिला मुरादाबाद से ही ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून जी की। आप हैं हमारे साथी ग्राम बग बुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरे नेताम, कुसुम नेताम और इनके साथी ग्राम व डाकघर निम्नावाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर और इनके साथी, और ये फरमाइश मिल रही है मजनू का टीला से कमला बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक की। ये फरमाइश डुमराव बिहार से हमारे पास पहुंची है डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम मदीबा और दानिश अंसारी की। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू जी भी सुनना चाहते हैं गीत। और गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य और परमानंद आर्य जी हमसे जुड़े हैं और जुड़ चुके हैं। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान भी, फौजिया शेख, आहिल शेख, अरहान शेख और बेगम तैयबा शेख, आमिर हुसैन जी जुड़े हैं पटियाली रोड गंज डुंडवार से।
0: लीजिए सुनिएगा इनकी पसंद पर कार्यक्रम का अगला गीत।

0: निधि बहुत ही खूबसूरत गीत हमारे श्रोताओं ने सुना था, ये सन्यासी फिल्म का था, लता मंगेशकर के साथ मुकेश की आवाज थी। अच्छा, अगला गीत जो हम बजाएंगे ना, उसके लिए जो फरमाइशें हैं निधि, वो हम शुरू करते हैं नगीना से। अनिल विनोचा, शम्मी विनोचा, अक्षय विनोचा, गीत अरोड़ा, सहज अरोड़ा, कनिका अरोड़ा और इनका पूरा ही विनोचा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद देखिए भाई आप भी हैं, गन ढुंडवारा के हमारे श्रोता हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव भाई इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये मैसेज हमें मिल गया है अनारकली बाजार जगराओं के हमारे नियमित श्रोता हैं साहब, 10:32 पर ये मैसेज इन्होंने किया है और तुरंत पढ़ना है। देखिए हम कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव भी निधि इनके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे श्रोताओं का पूरा नेटवर्क है ये।
1: हाँ, कभी कभी जो नाम पढ़ चुकते हैं वो दूसरे साथी के साथ जुड़ते हैं।
0: चंद्रनगर सहारनपुर के श्रोता हैं आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग भी अगले मैसेज में हैं ये हमारे। और ये मैसेज हमें मिल रहा है देखिए हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान के रजाक मोहम्मद, तमीम बेगम और इमरान खान के साथ इरफान खान भी इन्हीं के साथ में काम कर रहे हैं कि ये गीत सुनेंगे वो। और इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद देखिए आप भी हैं, हाँ जी, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, सिंधौली, मीरगंज, बरेली से जिशान वारसी, देखिए इनके साथ भी जुड़ के आ गए हैं हमारे श्रोताओं का
1: ये प्रेम है एक दूसरे के प्रति।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी नजीबाबाद के प्रति भी प्रेम है भाई,
1: आपस की दोस्ती भी तो गहरी है
0: बहुत मुद्दत से भाई ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद देखिए आप भी हैं, शेरवानी स्कूल गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर, मास्टर लुबना अंसारी, आलिया अंसारी के साथ इनका पूरा परिवार। और ये मैसेज मैं ले रहा हूं तेलंगाना भोंगीर के श्रोता हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा आजमीन और गुड़िया के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद जेवरा हिसार के श्रोता हैं वीरेंद्र भैयाण,

0: महेंद्र शमशेर और मनोज भयाण भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा देखिए राजस्थान से मैसेज मिल रहा है, गोविंदपुरा से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा निधि
1: फूलगांव निजामाबाद तेलंगाना से भी जुड़ चुके हैं। साथी एम ए वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुकरम, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद फाजिल।
0: और हम बता दें फुलोंग निजामाबाद तेलंगाना फुलांग, ये है ना, वो थोड़ा सा फूलगांव का तो हमारे श्रोता जो है ना और लगातार जुड़े हुए हैं। बहरहाल उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक श्रोता कह रहे हैं हमारे के साथ लाइव सुन रहे हैं आपको, तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत सुनते रहिएगा इसी तरीके से। और ये श्रोता हमारे जुड़े हैं बिल्कुल अभी, गांव पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और निधि निखिल वर्मा भी है। और निधि ये मैसेज,
1: पक निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई, अब्दुल रहमान जी का, शेख चंद, फारूक फूल भाली, सैयद खलील मुबीन, एमजी यासिन, मूसा करीम, शेख सलीम, नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से जुड़े हैं और अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने नाम लिखे। शिरकुट बिजनौर से जुड़ चुके हैं निजामुद्दीन, रऊफ अहमद, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद हन्नान, महक और ये
0: इनकी प्यारी बिटियां हैं वो जुड़े हुए हैं ना। ये
1: ग्राम लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह जी जुड़े हैं और अपना पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। दादी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और इनके साथी, और अनुरोध कर रहे हैं गीत की कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, श्रीमती उषा राय जी, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय भी सुनना चाहते हैं गीत। और अगला गीत जो हम सुनवाएंगे उसको सुनना चाहते हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से आर राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरव शर्मा और
0: शाइना शर्मा। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई देखिए आप भी हैं, नियमित श्रोता है निधि हमारे, ये गांव जाखोद राजस्थान के शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक के अलावा हमारे श्रोता बिल्कुल अभी जुड़े हैं फाजिल का, पंजाब के भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बूक और समस्त खेड़ा परिवार। सुनिएगा इन सब की पसंद पर अन्य श्रोता भी कार्यक्रम का अगला गीत।

0: गदर 2 फिल्म का गीत था ये, बहुत ही खूबसूरत, निति मोहन, विशाल मिश्रा और साथियों की आवाजों में। और निधि एक संदेश सुनवा देते हैं अपने श्रोताओं को, उसके बाद तुरंत जुड़ते हैं।
1: हाँ बिल्कुल।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: अब जो गीत हम आपको सुनवाएंगे उसे पसंद करने वाले हैं आप सब। निधि
2: जसपुर रोड धूलापुर जिला मुरादाबाद से महबूब दुकानदार बेगम साहिबा, महबूब मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, बेटी अलशिफ अंसारी और बेटी अलसिफ अंसारी के साथ इनके बहुत सारे साथी और नए श्रोताओं को हम करते हैं एक बार पुनः स्वागत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से कार्यक्रम गीत तुम्हारे। फाइव स्टार रेडियो श्रोता संघ जिला कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, श्रीमती गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और सुरेश चौरसिया जी हमसे जुड़े हैं। ये फरमाइश भेज रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। और ये अगला मैसेज हमारे पास पहुंचा है इंदिरा विहार दिल्ली से डॉक्टर बेबी अंसारी और डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी जी का। राजकोट गुजरात से अजीत कुटरिया और गौरैया चौक अम्बाला से फरमाइश करते हैं संदीप हगोडिया और राकेश जी। बिहार राज्य से राज एस जी वली अंसारी साहब हमसे जुड़ चुके हैं, ये फरमाइश भेज रहे हैं मोहल्ला बारादरी
1: महमूद खान रामपुर से।
2: भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई और फिरोजा मुस्कान, अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी जी। ये फरमाइश अगली हमें मिली है उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर पोस्ट लपड़ी ग्राम से कुमारी चंदा कुमारी, चांदनी आकाश कुमार और उनके मम्मी पापा जी। न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से सुरेंद्र खुराना, सुमित्रा भी जी भी हमें फरमाइश भेज रही हैं। इसी गीत को जो हम सुनवाएंगे सुनना चाहते हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाई, जान भाई, राजकुमार बुढ़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप जी।
1: इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे श्रोता भी हैं। ये श्रोता हैं असलम खां, रेशमा खां और उनकी पोती जर्मिश, ग्राम नंगली जाजू बिजनौर से। और इनका मैसेज हमने शामिल कर लिया। इसके अलावा जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती और छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार कुम्हार और उमा यामिनी कुम्हार भी सुनना चाहते हैं इसी गीत को। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई देखिए आप भी हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान के श्रोता हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, बेबी गर्वी और हिमाक्ष के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं। दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जबुनिशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी और आबाद खान। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब से सुधा शर्मा, काजल, मीरा, सोनाली और अनामिका शर्मा को, आथ रोहतास से पंकज शर्मा और नेहा शर्मा भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज इस गीत को सुनना चाहते हैं। सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

0: महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में आपने सुना तकदीर फिल्म का ये गीत, और निधि अंतिम गीत है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ और इस गीत में।
1: फरमाइश बहुत
0: हाँ
1: सारे
0: है
1: हैं
0: ना,
1: और
0: कोशिश
1: आप
0: करेंगे और ख़त भी हमें लेने हैं इसके अंदर, है ना। तो शुरुआत कर देते हैं हम। गांव कैरों जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और उनका पोतरा गुरु शब्द। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे देखिए उत्तराखंड के श्रोता हैं। पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य और दिनेश। इसके अलावा इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद देखिए हमें ये मैसेज हमें मिल रहा है, मगनपुर का मैसेज है, झारखंड से। अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली निशा और उनके घर के सभी सदस्य इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे श्रोता अपनी बात तो बहुत लिखते हैं। अब क्या करें कि हम बात
1: इस
0: पढ़ भी
1: समय।
0: लें तो
1: हाँ
0: हमारे पास वक्त तो बहुत अहम होता है ना। आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, के संजीव डाबे राव भी इनके साथ जुड़े हैं और ये कह रहे हैं साहब ये हमारा पहला मैसेज है इस प्रोग्राम में, क्या बात है, धन्यवाद। तेलंगाना काठगोदाम डिस्ट्रिक्ट आलंदू से राजेश खन्ना, चिन्ना पासी, सुनीता राज खन्ना, भानु राज खन्ना, अमित खन्ना और अम्मी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और इनके परिवार के सभी सदस्य। निधि थोड़े से मखत ले रहा हूँ, ग्राम जुझैला थाना शिवाला कलां बिजनौर के राशिद अंसारी, परवीन जहां, निसात, आयशा, आलिया, साइना, महविश, मोहम्मद अफान, अदीना, नूर, ये हमारे श्रोता हैं। शाही मार्केट सियौरा जिला बिजनौर के आसिफ चौधरी, आराफात चौधरी, आदिब चौधरी, कादिर

0: पद्मावत फिल्म के इस गीत के साथ मुझे यानी मनोज वर्मा को गीत तुम्हारे से और आज के कार्यक्रमों से दीजिए अनुमति। नमस्कार, यहां से आपके साथ रहेंगी निधि।
1: धन्यवाद मनोज जी। और श्रोताओं, आप सुन रहे थे पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।

प्रातः के 11 बज रहे हैं। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब प्रारंभ होता है, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। सोनू निगम और सुनिधि चौहान की युगल आवाज में फिल्म का नाम है अरमान। थैंक यू सो मच। अरे आपने सब कुछ प्ले भी टाइम भी कर दिया इसलिए।

श्रोताओं, कार्यक्रम का यह पहला गीत आपने सुना अरमान फिल्म से सोनू निगम और सुनिधि चौहान की युगल आवाज में। संगीत शंकर एहसान लॉय का था, गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, फिल्म बागवा से उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाज में। संगीतकार है आदेश श्रीवास्तव और शब्द रचना है समीर की। देखिए, जिस तरह से जिंदगी में आने से किसी के भी हमारे बदलाव को हम महसूस करते हैं, उसी तरह से ये बदलाव हमारे व्यवहार में भी लाता है और हमारे अंदाज में भी लाता है। किस तरह, सुनिएगा ये प्यारा सा गीत और समझने का कीजिएगा प्रयास।

0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: श्रोताओं, फिल्म संगीत पर आधारित चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये अगला गीत। पसंद का गीत इसलिए कहा क्योंकि आपको ज़रूर पसंद आने वाला है ये गीत। कैसे पता? क्योंकि शब्द ही इतने अच्छे हैं। फिल्म है इश्क और संगीत दिया है अनु मलिक ने, गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, युगल आवाज़ उदित नारायण और विभा शर्मा की। ये पसंद हमारी और आपकी इसलिए होती है क्योंकि हम सब चाहते हैं जीवन इतनी खुशी से गुजरे जिसमें प्रेम हो, अपनापन हो और हम सब एक दूसरे के साथ जीते रहें। लेकिन ये प्रेम का, प्यार का, इश्क का, कुछ भी कहिए, एहसास कब, कहाँ, कैसे होता है समझना ज़रा मुश्किल है। दिमाग का नहीं, दिल का मामला है भाई।
3: कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है,
4: मुझे शर्म आती है।
3: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
4: I love you.
5: Yeah!

विभा शर्मा और उदित नारायण की युगल आवाज़ पे आपने फिल्म इश्क का ये गीत सुना। श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन रखे हैं आकाशवाणी के नचिपाबाद केंद्र से, और मैं हूँ आज आपके साथ आपकी सखी निधि भारद्वाज। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा संगीत, संगीत से सजाया है तनिष्क बागची ने और शब्दों में पिरोया है रश्मि विरक ने। फिल्म का नाम है सिम्बा, आवाज़ है दाऊद फतेह अली खान, असीस कौर और साथियों की।

फिल्म सिम्बा का एक गीत आपने सुना राहत फतेह अली खान, असीज कौर और साथियों के स्वर में। चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रखे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए श्रोताओं सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म खाकी से। उदित नारायण और श्रेया घोषाल की युगल आवाज में, संगीत राम संपत का है और शब्द रचना समीर की।

उदित नारायण श्रेया घोषाल की युगल आवाज में फिल्म खाकी का ये गीत आपने सुना, और सच में यही एहसास रहता है प्रत्येक दिल में जिसे भी हम पसंद करते हैं उसके साथ हर समय रहें, खुशी के साथ समय को बिताएं। आइए चलते चलते कार्यक्रम का सुनते हैं अंतिम ये गीत, लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की युगल आवाज़ में।

श्रोताओं, सोनू निगम और श्रेया घोषाल के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11:30 को है प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। उमंग कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
1: और अजीत का भी जोहार और नमस्कार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सूर्य बिना कुछ मांगे हमें प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने दिया, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है।
1: बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है
2: जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, इसी प्रकार प्रकृति भी हमें बस देती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का,
2: शेरी वर्नेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कूट कुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी जी ने लिखा है।
1: उन्होंने लिखा है, धैर्य रखें, कठिन समय भी सरल हो जाएगा।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन और ईशांत देवांगन।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ज्ञान विज्ञान साहित्य भूगोल इतिहास और अनेकों ज्ञान की शाखाओं की मनोरंजक जानकारियाँ।
1: तो विमलेश जी, आज हमारी बातचीत का विषय क्या रहेगा?
2: अजीत जी, मैं सोच रही थी जानकारियां तो हम इस श्रृंखला में देते ही रहते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह प्राप्त संदेशों से पता चलता है कि हमारे श्रोता प्रेरक प्रसंग भी बहुत पसंद करते हैं।
1: जी हाँ, ये तो है।
2: तो क्यों ना आज और कल कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएं?
1: नेकी और पूछ विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जीवन में प्रेरक प्रसंगों से भी हमें बहुत सहायता और संबल मिलता है। तो बताइए जरा श्रोताओं को कि हमारा आज का प्रेरक प्रसंग क्या रहेगा?
2: अजी जी, आज बात करते हैं एक तितली के संघर्ष की।
1: वाह, क्या बात है, एक तितली के संघर्ष की।
2: श्रोताओ, आज हम आपको एक छोटी सी तितली की कहानी सुनाने जा रहे हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, ये कहानी लंदन की प्रसिद्ध बाल पत्रिका किड्स वर्ल्ड में छपी थी। शीर्षक था द बटरफ्लाई एंड द कुकून। ये कहानी केवल एक कीट की नहीं बल्कि हम सबके जीवन की कहानी है
2: जी।
1: श्रोताओ, कहानी कुछ इस प्रकार से है।
2: एक दिन एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर लटके एक छोटे से कुकून पर पड़ी, यानी रेशम के कोए पर पड़ी। उसने देखा कि कुकून के भीतर एक प्यूपानुमा तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।
1: श्रोता, वो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा
2: जी।
1: उसने देखा कि वो तितली एक बहुत छोटे से छेद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार जोर लगाती और फिर रुक जाती। कुछ देर के बाद फिर पूरी ताकत से प्रयास करती। ये संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। विमलेश जी, आगे क्या हुआ?
2: जी अजीत जी, जो हुआ वो बहुत ही अजीब हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा कि तितली थक गई है, वो बेचारी अब बाहर निकल ही नहीं पाएगी। उस व्यक्ति का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, बेचारी तितली कितना संघर्ष कर रही है, यदि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं तो इसका कष्ट समाप्त हो जाएगा।
1: श्रोताओ, ऐसा सोचता हुआ वो अपने घर गया, एक छोटी सी कैंची लाया और बहुत सावधानी से कुकून का छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया
2: जी।
1: अब वो तितली बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उस व्यक्ति ने देखा उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख छोटे और सिकुड़े हुए और बहुत ही कमजोर थे।
2: उसे लगा कि बस कुछ देर की ही तो बात है, कुछ ही देर में पंख फैल जाएंगे और तितली उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली जमीन पर ही रेंगती रही, वो कभी उड़ न सकी और कुछ ही दिनों में उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई।
1: जी हाँ श्रोताओ, उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने एक और कुकून देखा जिससे तितली निकलने का प्रयास कर रही थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी
2: जी।
1: बार बार प्रयास करती पर थक कर रुक जाती। अब की बार इस व्यक्ति ने सोच लिया था कि वो तितली की कोई मदद नहीं करेगा।
2: कई घंटों के बाद जब वो तितली बाहर आई तो उस व्यक्ति ने देखा कि वो शानदार रंगों वाली एक बेहद सुंदर तितली थी। वो थोड़ी देर रेंगी, फिर पंख फैलाकर उड़ गई।
1: श्रोताओ, उस व्यक्ति ने अपनी कहानी में लिखा, मुझे अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि प्रकृति ने तितली के लिए

0: यह संघर्ष जानबूझकर रखा था।
1: जी।
0: जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने का प्रयास करती है, तब मेहनत के कारण तो उसके शरीर का द्रव उसके सिकुड़े हुए पंखों में पहुंचता है। इस द्रव को हीमोलिम्फ कहते हैं।
1: और यही द्रव पंखों को मजबूत और उड़ने योग्य बनाता है। यदि तितली संघर्ष न करे तो उसके पंख कभी विकसित ही नहीं हो सकते।
0: तो विमलेश जी, इस घटना का सारांश क्या बनता है?
1: अजीत जी, जिस दया को उस व्यक्ति ने सहायता समझा था, वही तितली के जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो रातों की मेहनत, असफलताओं का डर और लगातार अभ्यास, यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
0: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है तो वही संघर्ष, वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
1: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है तभी उसकी फसल लहलाती है। जी हाँ श्रोताओ, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के न शक्ति मिलती है न सफलता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है वही महान बने हैं।
0: श्रोताओ, अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया, लेकिन हार नहीं मानी।
1: जी।
0: हेलन केलर ने जीवन भर दिव्यांगता का सामना किया, लेकिन संघर्ष के कारण वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
1: हम सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए, लेकिन उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन गया।
0: जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, यदि इन लोगों के जीवन से संघर्ष निकाल दिया जाए तो शायद दुनिया इन्हें कभी याद भी न रखे।
1: जी।
0: तो प्रिय मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि लगता है कि बार बार असफलता मिल रही है,
1: तो निराश मत होइए। हो सकता है शायद जीवन आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है।
0: तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। श्रोताओ, हमारा आज का प्रश्न है, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो प्रारूप में यानी ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो जाइए NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर, और इसी ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को सुन सकते हैं। श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी जल चक्र की कहानी।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नट और नटी के तुकांत नाट्य प्रारूप में जल चक्र की कहानी को कविता और ताल वाद्य की मजेदार संगत से बताया गया है और बच्चों को जल संरक्षण की प्रेरणा दी गई है।
0: पानी रे पानी जल चक्र पर कविता।

0: सोनी जल्दी उठ जा बेटी, भीड़ हो जाएगी।
1: मम्मी सोने दो ना, ये भी कोई समय है उठने का? अभी तो सुबह के 3:30 ही बजे हैं।
0: अरे बेटी, 2 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे सामुदायिक रेडियो पर मैसेज आया था कि मोहल्ले में आज सुबह 4 बजे टैंकर से पानी दिया जाएगा। चल तैयार हो जा, मैं भी बाल्टी ले लेती हूँ।
1: माँ भैया को भी ले चलते हैं ना?
0: अरे उसे सोने दे, भैया थका हुआ है। इन दिनों स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना, कसरत करने भी तो जाता है कितनी।
1: माँ मैं भी तो स्कूल जाती हूँ और आपके साथ साथ घर का सारा काम भी कराती हूँ, क्या भैया ही थकता है बस।
0: ओहो अब चल भी, बहस मत कर।
2: नहीं माँ, इस बार मेरी बारी, अगली बार भैया की बारी, ठीक है?
0: ठीक है बाबा, ठीक है, अब चल भी, बहस मत कर।
1: ठीक है चलो।

0: तो साथियों, ऐसा दृश्य थोड़े बहुत अंतर के साथ दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल जाएगा। आए दिन अलग अलग समाचार माध्यमों से सूचनाएं मिलती हैं कि जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं।
1: जी हाँ, इसी तरह सोनी के मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में अक्सर पानी की समस्या बनी रहती थी और हर बार वही क्रम चलता रहता था। वही क्रम यानी सोनी शाम को रेडियो सुन रही थी।
2: नमस्ते, हमारे कम्युनिटी रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट गौहर परवेज। शनिवार को संध्या 7 बजे हरित नगर कम्युनिटी हॉल में आप सब कर रहेगा इंतजार। हम लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम, पानी रे पानी। बेहद खास इसलिए कि उस दिन आप मिल पाएंगे अपने चहेते रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी से। तो आइएगा जरूर।
1: बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि प्रोग्राम में आ रहे थे उनके प्रिय रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी।
3: इनका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है।
4: अरे आ गए, देखो,
5: अरे देखो, आ गए।

0: तो प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।
1: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
1: किस पर?
0: पानी पर।
1: पानी पर? क्यों?
0: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
1: हाँ, बड़ी तो है। अब देखो ना, इन बच्चों को सुबह सुबह 3-4 बजे पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्यों बच्चों, है ना यही बात?
2: हाँ, ये बात तो है,
3: पानी की समस्या तो है,
4: हम तो परेशान हो गए हैं।
1: तो बच्चों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जल चक्र।
5: जल चक्र?
1: हाँ, तो आज हम खेलेंगे भाषा का खेल, जिसमें आपको करना है शब्दों का मेल।
0: तो चलो शुरू करें।
1: चलो झुमकी।
0: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। सूरज निकला चमचमाया, धूप ने फिर जल को तपाया, आगे जोड़ो झुमरू जी और वो भी ताल में।
1: हाँ हाँ, जोड़ता हूँ मैं, ये लो बात ध्यान से मेरी सुन लो। नदियों तालों का जल उड़ाया, भाप बन जल ऊपर आया।
0: झुमरू जी ने तो कमाल कर दिया। अब ये भी लीजिए, जब भाप बनी तब बादल छाए, नील गगन में झूले खाए।

0: जब लग गए बूंदों से बादल, भारी हो गए तब बादल।
1: रिमझिम रिमझिम वर्षा आई, चहुं ओर हरियाली छाई। झरनों नदियों में बह पानी, जल चक्र की है ये कहानी।
0: इसके बाद क्या हुआ झुमरू जी?
1: बताते हैं, सुनिए। पानी फिर से सागर जाता, बार बार यही क्रम दोहराता।
0: क्या बात है! सूरज भाप बादल, वर्षा का जल चक्र यू चलता जाता। सभी बोलेंगे, जल चक्र यू चलता जाता।
1: तो बच्चों, कैसा लगा भाषा का ये खेल?
2: बहुत अच्छा।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो बारिश का दिन।
4: ये कार्यक्रम एक रोचक नाटक के द्वारा वैज्ञानिक खोज की जानकारी देते हुए बताता है कि ज्वर मापी यंत्र थर्मामीटर का आविष्कार कैसे हुआ।
5: तनु माँ के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुई है। तनु के नाना जी आजकल तनु के साथ छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पर अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते हैं। नाना जी के साथ तनु रोज सैर करने जाती है, पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं।
6: ये मारा! हरा दिया, हरा दिया।
7: वैसे तनु,
6: हाँ, बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा है।
8: जी,
6: पर कैरम का खेल खूब जमा।
7: न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आज मैंने, फिर भी एक खिलाड़ी को हरा दिया।
8: नाना जी, मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ।
7: ये कैसी अजीब बात है?
8: देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते, हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है।
7: ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की?
8: ना परियों की ना जादू वाली, मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाइए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे।
7: अच्छा बेटा तरु, तेरे डॉक्टर नाना के पास तो बीमारी, रोगी और उनके स्वस्थ होने की कहानियाँ ही है बस।
8: लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक रोचक और मजेदार होती हैं।
7: अच्छा?
8: हाँ, और क्या, तो सुनाइए ना। जल्दी सुनाइए।
7: हाँ बेटा,
8: जल्दी सुनाइए।
7: अरे सोचने तो दो,
8: जल्दी सोचिए।
7: मैं किसकी कहानी सुनाऊं? देखो।
8: अरे जीवन काका।
7: अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई?
9: बाबूजी,
7: हाँ,
9: आज सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है।
7: बुखार? अरे भाई, बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं? आओ आओ, अभी देखता हूँ, आओ इधर आओ।
9: जी,
7: यहाँ लेट जाओ।
9: जी।
7: लग रहा है बुखार। अरे बेटे तनु।
8: जी।
7: जरा अंदर से थर्मामीटर तो ले आओ।
8: जी अभी लाई।
7: हाँ हाँ, खांसी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो।
9: जी।
7: पेट भी गड़बड़ है तुम्हारा तो। एक मिनट देखो, ये बारिश की वजह से हुआ है।
9: जी।
7: पहली बारिश में थोड़ा सावधान रहा करो।
9: जी जी जी।
7: अरे बदलते मौसम का असर तो होता ही है ना भाई जीवन।
8: जी, जी, जी, नाना जी।
7: हाँ ला बेटा ला। जीवन
9: जी,
7: जरा मुंह खोलो। लो, इसे जीभ के नीचे रख लो।

0: डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी।
1: अरे तनु
2: जी,
1: क्या बात है, कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
2: नाना जी, मैं सोच रही थी जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे?
1: बेटी तनु
2: जी,
1: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
2: तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना।
1: सुनो
2: जी,
1: जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छूकर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे।
2: लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा।
1: एकदम ठीक बात कही तूने बेटा।
2: दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था
1: ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया वो भी अपने देश से दूर विदेश में।
2: तो चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए।
1: चलो। ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहाँ एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस
2: जी।
1: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
2: अच्छा।
1: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी।
2: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
1: बेटे एकदम अलग आकार था।
2: अच्छा।
1: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
2: जी,
1: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उठते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
2: अच्छा।
1: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
2: लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
1: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी।
2: अच्छा।
1: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
2: अच्छा।
1: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।
2: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
1: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
2: जी,
1: जिसे बुखार होता
2: जी,
1: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते
2: जी।
1: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता।
2: फिर
1: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता
2: जी।
1: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
2: अच्छा।
1: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
2: लेकिन बुखार?
1: ओहो बेटा, बताता हूँ, सांस लेने दे, बूढ़ा आदमी। सुन ध्यान से
2: जी।
1: तो बेटा तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना
2: जी,
1: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती
2: जी।
1: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।
2: अच्छा।
1: और बुखार का अनुमान लगा।

0: लेते। हाँ, लेकिन एक बात,
1: क्या?
0: देखो पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था
1: जी
0: कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे।
1: यानी बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती, रोगी का बुखार उतना ही तेज होता।
0: बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक।
1: लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना।
0: हाँ बेटा, ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
1: हाँ जी,
0: इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर
1: जी
0: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना।
1: जी
0: समझ गई ना।
1: जी,
0: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था।
1: जी,
0: और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते।
1: अच्छा।
0: आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा।
1: वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
0: नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
1: अच्छा।
0: आजकल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं।
1: जी,
0: इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं।
1: अच्छा।
0: डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा।
1: जी,
0: लगाते ही डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता।
1: अरे वाह।
0: हाँ। पर बेटा, डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है।
1: हाँ, और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे।
0: हाँ, क्यों नहीं बेटा। और बेटे, अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर भी बन गया है।
1: वाह, क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं
1: जी,
0: बोलकर बतला देता है।
1: नाना जी।
0: हा?
1: मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं।
0: सही कह रहे बेटा, लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है।
1: अरे वाह।
0: हाँ, और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती।
1: वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी।
0: है ना
1: जी।
0: अरे बेटा, नाना किसका हूँ।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम वो बारिश का दिन, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना
2: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम उमंग। इस प्रायोजित कार्यक्रम को अभी आपने सुना। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।

दिन के 12 बज रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब हम आपको देते हैं संक्षिप्त जानकारी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। पहले कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम, सैनिक भाइयों के लिए विशेष कार्यक्रम सैनिकों के लिए, दिन में 12:05 पर। दिन में 12:05

बहनें सुन सकेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत दिन में 1:15 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे कार्यक्रम आधी आबादी से, साथ ही सुनेंगे भूली बिसरे यादें में इंदु अग्रवाल से प्रियंका त्यागी की पूर्व प्रसारित बातचीत। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत आज आप सुन सकेंगे भजन दास के स्वर में जौनसारी लोकगीत।

एक ही संगीतकार फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम आज आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर, जिसमें आज हमारे संगीतकार रहेंगे श्रवण कुमार राठौर। मेरा सपना उन्नत भारत ये कार्यक्रम आप सुनेगा शाम की सभा में 5:00 प्रधानमंत्री के 15 नए सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत। आज इसमें नई रोशनी और सीखो और कमाओ विषय पर आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज के आकर्षण रहेंगे पूछो तो जाने, कुछ खास है आज, नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर, लव स्टोरी, ताना वाना, बूस्टर के साथ आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का भी।

रात्रि 10 बजे सुनिएगा पूर्व प्रसारित नाटक स्वयं साक्षी। लेखक डॉक्टर विनय, निर्देशक विश्व प्रकाश दीक्षित बचुक, प्रस्तुति सहायक सुदर्शन कुमार, कृष्ण कुमार नरूला और प्रतिभागी कलाकार होंगे अरुणा कपूर, विष्णु नारायण शर्मा, नीरज शर्मा, राजकुमारी प्रसाद, नरेश कौशिक और वीणा गौड़। समय रहेगा रात्रि 10 बजे। सुनना न भूले नाटक स्वयं साक्षी।

आज शाम 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स और रात्रि 9:30 पर कंट्री वाइड्स और इनसाइट्स, ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

शाम 7:32 पर सुगम संगीत में सुनेगा साकिब अक्काजी और साथियों की गाई कव्वाली। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुन सकेंगे शाम 6:50 पर। प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

किसान भाई सुन सकेंगे अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत शाम 6:05 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे संध्या 8 बजे गीत संध्या में, शाम रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से और रात्रि 10:30 पर फिल्म आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंतर्गत। तो श्रोता इतनी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है सैनिक भाइयों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

शंकर महादेवन, सोनू निगम और साथियों के स्वर में फिल्म लक्ष्य का एक गीत आपने सुना। संगीत शंकर हसन रॉय का था और शब्द रचना जावेद अख्तर की। श्रोताओं, सैनिक हम सबकी पहचान ही नहीं बल्कि हम सबके रक्षक हैं, ये हम सब जानते हैं। कहते हैं वो वहाँ है जहाँ हर कोई आम इंसान नहीं पहुँच सकता। तभी तो कहते भी हैं, खड़ा है सीना तान वहाँ, खड़ा है सीना तान वहाँ, मामूली नहीं होती बात जहाँ, दुश्मनों से हिफाजत करता है फौजी, देश के लिए जान भी देता है फौजी। सिर्फ एक दिन, कभी गीत के माध्यम से, कभी कार्यक्रम के माध्यम से, कभी किसी दिवस को बहुत उल्लासपूर्वक मनाकर हम उनको हमेशा के सम्मान से तो मुक्ति नहीं पा सकते, हर दिन हमें उनका सम्मान करने का एहसास दिल में रहता ही है, क्योंकि सैनिक हैं तो हम भी हैं। वंदे मातरम। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत जो देशभक्ति से भरा, दुश्मनों को डराने वाला और हमें हिम्मत देने वाला है। महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में सुनिएगा फिल्म देश के दुश्मन फिल्म का ये गीत। संगीत है सोनिक ओमी का और शब्द रचना वर्मा मलिक की।

वंदे मातरम। एक साथ बोलकर जो आनंद आता है ना, वो तो बस क्या ही कहने। इसलिए एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए, जितनी बार भी बोलते हैं उतना आनंद आता है, जोश आता है, और लगता है कि हम फौजी तो नहीं हैं लेकिन फौजियों का हौसला तो बढ़ा सकते हैं। अपने देश में हम जहाँ भी रहते हैं, देश के ऐसी गतिविधियों में हमें तरक्की की भाग लेना है, जैसे कि हम हमारा अपने आसपास का, अपने परिवारजनों के साथ इस पूरे देश का नाम रोशन कर सके। सुनते रहिएगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए आकाशवाणी की निचिपा पात के रस्ते। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो सैनिक हैं वो वहाँ भी खड़े होते हैं जहाँ हम नहीं पहुँच सकते। किसी भी तरह का मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बर्फ हो, कहीं पर भी वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं। घर में भले ही उनकी माँ कभी बच्चे की चिंता में सहम जाती हो, पत्नी याद में रो लेती हो, लेकिन गर्भ में पल रहा बच्चा न रोता है बल्कि क्या कहता है, अरे माँ क्यों रो रही हो, अरे माँ क्यों रो रही हो, गर्व करो, पापा वहाँ खड़े हैं।

जहां बड़े बड़े लोग न खड़े हो सकते हैं, है ना। तो फिर गर्व की बात तो होती ही है परिवारजनों के लिए, लेकिन एक और चीज भी है कि वो फौजी भी तो हम और आप जैसे ही होते हैं, उनका भी एक दिल होता है, वो गाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं। आइए एक प्यारा सा गीत उनके साथ हम भी सुनते हैं, फिल्म गुलाम से संगीत जतिन ललित का है, गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और गायक स्वर है कुमार सानू और अलका याग्निक के। तो लीजिए सुनिए फिल्म गुलाम का ये गीत।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिड डे मेलोडी।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम विजय मेलोडी लेकर पहुंच गई हूँ मैं आज आपकी सखी निधि भारद्वाज। कहिए कैसे हैं आप? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जुड़ रहे हैं हमारे आकाशवाणी के केंद्र से और सुन रहे हैं इस समय आप अपनी प्यारी सखी निधि भारद्वाज को। बस यही

बात हमें कहनी और सुननी अच्छी लगती है। देखिए श्रोताओ, कितना अच्छा मौसम है ना। सावन के महीने में झिमझिम बारिश की फुहारों में अपने लोगों के साथ हम कितने प्रसन्न रहते हैं। आज भी कहीं बारिश हो रही है तो कहीं हल्की सी उमस है, कहीं गर्मी है, लेकिन प्रकृति के इस मौसम का आनंद तो लेना बनता ही है। ऐसे में जब अपने साथ हों तो वाह क्या ही कहने। चाहे काम को करना हो या किसी भी समय गर्मा गर्म चाय पकौड़ी खानी हो या एक साथ रसोई में बैठ के खाना बनाना हो, मिट्टी मेलोडी का ये कार्यक्रम तो आपको हर हाल में अपने से जोड़ ही लेगा। भाई समय ही ऐसा है, क्योंकि दिन के बज चुके हैं 12:31:46 और सुनना चाहते होंगे आप कार्यक्रम का पहला गीत, तो फिर बिना किसी देर के अपने मन की बात भी हम आपसे पहुंचा देते हैं कि हमारा जो दिल का रिश्ता है आपके साथ बहुत ही प्यारा है, पुराना है, गहरा है। तो आइए सुनते हैं फिल्म दिल का रिश्ता का ये पहला प्यारा सा गीत अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों के स्वर में, और फिर गीत के उस पार करते हैं आपसे बातें।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम मीठी मेलोडी में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और साथियों, मौसम की बात अभी हमने की, दिल की बात भी की कि अपनों के साथ जब रहते हैं तो दिल के रिश्ते बहुत खूब ही हम निभाते हैं। और जब बारिश की बात करते हैं तो याद तो आता ही है ना कि आसमान से गिरने वाली पानी की वो बूंदे जो मन को ठंडक देती हैं, तो गर्मी के मौसम के बाद की राहत भी तो देती हैं। ये प्रकृति को हरा भरा, फसलों को जीवन और मौसम को सुहावना बना देती हैं साथियों। ऐसे में हमारा गाना गुनगुनाना तो बन ही जाता है मन में कुछ इस तरह से। आइए सुनवाते हैं एआर रहमान के संगीत निर्देशन में गुलजार के लिखे गीत को फिल्म गुरु से श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की युगल आवाज में।

मीठी मेलोडी इस कार्यक्रम का आनंद आप ले रखे हैं आकाशवाणी के नची बबात केंद्र से। और जो अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो है उदित नारायण के स्वर में, फिल्म है पापा कहते हैं, संगीत में पिरोया है राजेश रोशन ने और शब्दों में पिरोया है जावेद अख्तर साहब ने। साथियों, सबका व्यवहार अलग है, विचार अलग हैं, लेकिन एक चीज जो सबको एक सी लगती है या एक ही गुण सब में आता है वो ये है कि सब सुख शांति और समृद्धि की चाह करते हैं। साथ ही प्रेम किसे अच्छा नहीं लगता, प्रेम की सबकी अलग अलग परिभाषा है। काम से प्रेम भी होता है, अपने परिवारजनों से प्रेम होता है, अपने साथियों से भी होता है और उसी हिसाब से हमारे भाव भी होते हैं। लेकिन एक प्रेम किसी के आकर्षण के प्रति जब होता है तो उसमें भाव कुछ अलग होते हैं।

रॉकी और रोनी की प्रेम कहानी। लीजिए सुनिए इस फिल्म में अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल को। संगीत प्रीतम का है और गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य।

0: श्रोताओं, फिल्म रोजा के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम में इतनी मेलोडी संपन्न करने की निधि भारद्वाज अपनी सखी को अनुमति दीजिएगा। नमस्कार। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम मिट्टी मेलोडी। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 956 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। श्री सिंह ने जापान के कुमामोटो में आए भीषण भूकंप पर संवेदना व्यक्त की और हर जरूरी सहायता देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत जापान संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी सम्मान और पुराने सभ्यतागत संबंधों पर आधारित है। जापान के रक्षा मंत्री ने भूकंप पर भारत

संवेदना के लिए आभार जताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक चेन्नई के कोवलम में शुरू हुई। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि बैठक के दौरान सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और समय पर तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जनकल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। CISF ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें दो मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व और पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत तथा बचाव कार्य जारी है। घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 557 अंक बढ़कर 77,466 जबकि निफ्टी 141 अंक के वृद्धि के साथ 24,219 पर कारोबार कर रहा था। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टरडैम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिषा जौली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाका निशी को हराया। पीवी सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सकता है अगर हर शहरी की फीकस आमदनी बढ़े। उन्होंने मजीद कहा कि फीकस आमदनी में इजाफा किसी मुल्क में माली ताकत का बाइस बनता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के तामीर कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा का कल 3 रोजा दौरे पर अयोध्या पहुंचे। मिस्टर मिश्रा आज से शुरू होने वाली कमेटी की मीटिंग में शरीक होने के बाद अहाते में जारी तामीरात के बारे मालूमात फराहम करते हुए कहा कि
1: 30 सितंबर तक मंदिर परिसर में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा और 30 अक्टूबर में लार्सन एंड टूब्रो और टाटा के कर्मचारी अब यहां से चले जाएंगे। केवल ऑडिटोरियम का कार्य जो राजकीय निर्माण निगम कर रहे हैं और संग्रहालय का कार्य वह चलता रहेगा और ये सभी कार्य प्रत्येक जिससे मार्च 2027 में पूर्ण हो जाएंगे।
0: वहीं राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी से मुतालिक आज फैजाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से मॉनिटरिंग की दरखास्त दायर की गई है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शैलेंद्र जायसवाल ने यह दरखास्त पेश की। अर्जी में कहा गया है कि अकीदतमंदों के पैसे की चोरी से एसोसिएशन के जज्बात मजरूह हुए हैं। अर्जी में चंपत राय, अनिल मिश्र और गोपाल राव पर चोरी में मुलविस होने का इल्जाम है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट ने बड़ा बदलाव किया है। राम मंदिर के अहाते में तैनात मुलाजमीन की निगरानी अब मजीद सख्त कर दी गई है। मुलाजमीन की हाजिरी से लेकर ड्यूटी तक पर नजर रखी जाएगी। ड्यूटी पर पहुंचने के दौरान कैमरे के जरिए फेस रीडिंग होगी और ड्यूटी पूरी करने के बाद बाहर निकलते वक्त भी मुलाजमीन को फेस रीडिंग के अमल से गुजरना पड़ेगा। इसके साथ ही रजिस्टर मुलाजमीन के आने और जाने का वक्त भी दर्ज किया जाएगा। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कल हिंदुस्तान के दौरा करने वाले नाइजीरिया के वफद से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान उन्होंने नाइजीरिया के वजीर मुमलकत बराए ज़राअत और खुराक की हिफाजत डॉक्टर अलीउसाबी अब्दुल्लाही के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समेत रियासत के देही इलाकों में होने वाली मुस्बत और जमीनी तब्दीलियों के बारे में तफसील से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर जनाब मौर्य ने कहा कि हुकूमत ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग के शोबों में अच्छा काम कर रही है। झांसी में वाकई 140 साल पुराने परीक्षा डैम को अब बैनुल अक्वामी सतह पर पहचान मिल गई है। बैनुल अक्वामी कमीशन बराए आपाशी और निकासी आब ने इस तारीखी डैम को आलमी सकाफती विरसा आपाशी के ढांचे के तौर पर तस्लीम किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अनिल गर्ग ने बताया कि 14 अक्टूबर को फ्रांस के मार्सिले में आयोजित होने वाले 26वें ICID अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और 77वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक के दौरान परीक्षा बांध को WHIS पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। झांसी में बेतवा नदी स्थित परीक्षा बांध ने 140 वर्षों से बुंदेलखंड की सिंचाई प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बेतवा नहर प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है जो बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि के लिए पानी की आपूर्ति करती है। परीक्षा बांध लगभग 1174 मीटर लंबा और नदी तल से लगभग 16.8 मीटर ऊपर स्थित है। सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: जौनपुर मंगरा बादशाहपुर थाना इलाके के तहत धर्मपुर गांव में आज सुबह एक बस स्कूल वैन से टकरा गई। हादसे में कई मासूम बच्चों की हालत तश्वीशनाक है। गांव वालों की इतला के फौरन बाद पुलिस पहुंची और बचाव के काम शुरू किया। कई बच्चों को करीबी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दाखिल कराया गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर सड़क हादसे का नोटिस लिया है। वजीर आला की हिदायत के बाद जिला मजिस्ट्रेट जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने जख्मी बच्चों की हालत दरियाफ्त की और उन्हें बेहतर इलाज यकीनी बनाने की हिदायत की। रियासत के कई अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दरियासना बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से कई अजला सैलाब की जद में। वाराणसी के 84 घाटों को काट दिया गया है। हिफाजती वजूहात की बिना पर कश्तियों के ऑपरेशन को अगले नोटिस तक मुअत्तल कर दिया गया है। सेंट्रल वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक गंगा के पानी की सतह तकरीबन 67 मीटर रिकॉर्ड की गई है और ये मुसलसल 4 सेंटीमीटर की शरह से बढ़ रही है। चित्रकूट में बारिश के इम्कान की वजह से 12वीं जमात तक के स्कूल आज के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 956 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रखे गए, जिनके 1:15 हो रखे हैं।

नमस्कार श्रोता बहनों, महिला जगत के एक और अंक में आज मैं आपके साथ हूँ प्रियंका त्यागी। बहनों, महिला जगत जिसमें हम बात करते हैं महिलाओं से जुड़े हर उस विषय पर जो उनकी जिंदगी, स्वास्थ्य, अधिकारों और सपनों से जुड़ी होती है। और कार्यक्रम में आज खास रहेगा हमारा क्रम भूली बिसरी यादें, जिसमें हम अपने बुजुर्ग मेहमान की पुरानी यादें ताजा करेंगे। तो बहनों, बनी रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम महिला जगत। और अब अपनी बहनों से हम बात करते हैं कुछ खास। आज के समय में बहनों, जब छोटी छोटी बातों पर मतभेद और दूरियां बढ़ जाती हैं, तब आपस में प्रेम सद्भावना ही हमें फिर से एक करने की कड़ी होती है। बहनों, सहयोग, सहनशीलता, जरूरतमंद की मदद करना और समाज में किसी के साथ भेदभाव ना करना, ये सभी सद्भावना दिखाने के छोटे छोटे से महत्वपूर्ण कदम होते हैं। और बात अगर हम महिलाओं की और सामाजिक सद्भाव की करें, तो इसमें महिलाओं की भूमिका बहुत मायने रखती है। परिवार में बच्चों को शुरू से ही अच्छे संस्कार देने से लेकर समाज में जागरूकता फैलाने तक महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए समाज में शांति, एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत बनाने के लिए, सबको जागरूक करने के लिए आज हम सभी देशवासी सद्भावना दिवस मना रहे हैं, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, जिनके विचारों में आधुनिक भारत के निर्माण के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भावना का संदेश था। और हम सभी को इस विषय दिवस पर संकल्प भी लेना चाहिए बहनों, कि हम समाज में प्रेम और सहयोग की भावना को बढ़ावा देंगे। बहनों, अभी एक और खास विषय पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।

0: नीमा सांगल, हर पल चंदन का एहसास।
1: अभी हम सुन रहे थे ये संदेश। बहनों, देखते हैं कि हर वर्ष लाखों लोग मच्छर जनित बीमारियों से संक्रमित होते हैं। बरसात के मौसम में तो संक्रमण कुछ ज्यादा ही हो जाता है, जिसमें कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग आम हो जाते हैं, और इन सब के कारक होते हैं मच्छर। बहनों, मच्छरों से होने वाली बीमारियों और उनसे बचाव के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर वर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हम सभी को जागरूक करता है, याद दिलाता है कि मच्छरों से बचाव केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं बल्कि देश और समाज के हर नागरिक की है। खासतौर पर बरसात के मौसम में जगह जगह पानी जमा होने से, एक जगह कूड़ा कचरा इकट्ठा होने से मच्छरों की संख्या उस क्षेत्र में ज्यादा हो जाती है। घर की छत, गमले, कूलर या आसपास किसी भी बर्तन, घर के बाहर बनी नालियों में पानी इकट्ठा ना होने दे, जिससे कि संक्रमण से बचा सके। बहनों, बात करें इस विषय की, इस दिवस के शुरुआत की, तो मच्छरों से होने वाले संक्रमण के बारे में पहली खोज सर रोनाल्ड रॉस ने 20 अगस्त 1857 में की थी, जिसमें उन्होंने पता लगाया था कि इंसानों में मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छरों के माध्यम से फैलता है। और बहनों, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन द्वारा 1930 में पहली बार इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य मच्छर जनित बीमारियों के खतरों और उनसे बचाव के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। तो हम अपने सभी श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि सभी जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। और बहनों, कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्रम की ओर।

0: देखिए बहनों, कभी कभी उम्र छोटी होती है, लेकिन सपने बहुत बड़े। और जब उन सपनों को मेहनत, लगन और आत्मविश्वास का साथ मिल जाए, तो सफलता की कहानी बनते देर नहीं लगती। हमारे क्रम आधी आबादी में आज हम बात करेंगे भारत की युवा और प्रतिभाशाली स्क्वैश खिलाड़ी के बारे में, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी शानदार खेल से देश का नाम रोशन किया। बहनों, वो खिलाड़ी कौन है, जानते हैं हमारे क्रम आधी आबादी में।
1: मैं अनाहत सिंह हूँ, जो 3 बार की भारतीय राष्ट्रीय चैंपियन और भारतीय नंबर बन चुकी हूँ। मैंने वास्तव में जब 5 साल की थी तब बैडमिंटन खेलना शुरू किया, तो मैंने बहुत ही छोटी उम्र में अपनी शुरुआत की थी। और मैंने राष्ट्रीय स्तर पर खेला और मैंने काफी बड़े इवेंट्स में भी खेला, लेकिन निश्चित रूप से मैं काफी छोटी थी। लेकिन मैंने 8 साल की उम्र में शौकिया तौर पर स्क्वैश खेलना शुरू किया।
0: स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह, जिन्होंने कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में आयोजित वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। बहनों, अनाहत की यह जीत सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय स्क्वैश के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है। तो बहनों, अनाहत सिंह की जीवन यात्रा की शुरुआत करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन से। अनाहत सिंह का जन्म 13 मार्च 2008 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता गुरशरण सिंह वकील हैं और माँ तानी वडेरा इंटीरियर डिजाइनर हैं। बहनों, अनाहत ने अपने खेल की शुरुआत स्क्वैश से नहीं बल्कि बैडमिंटन से की थी। वह भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु से बहुत प्रभावित थी और उन्हें देखकर ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखती थी। बहनों, अनाहत सिंह की बहन अमीरा स्क्वैश खेलती थी। बहन के साथ स्क्वैश कोर्ट पर जाने के दौरान इन्होंने इस खेल में रुचि ली। जानते हैं बहनों,
1: मेरी बड़ी बहन खेलती थी और मैं बस उसके साथ कुछ प्रशिक्षण और अभ्यास सत्रों में शामिल हो गई, क्योंकि वह जगह घर से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर थी, तो मैं उसे छोड़ने और लेने जाती थी। और मैंने कुछ बार इसे आजमाया और मुझे यह वास्तव में पसंद आया। और कभी कभी मैं उसके साथ यात्रा करती थी और मेरे माता पिता मुझे टूर्नामेंट्स में दाखिल कर देते थे। और कुछ सालों तक मैंने बैडमिंटन और स्क्वैश दोनों खेली, तो मैं दोनों टूर्नामेंट्स में खेलती थी। मुझे पता था कि मैं एक खेल को पेशेवर रूप से खेलना चाहती हूँ, तो मुझे चुनना होगा समय के साथ। ऐसा नहीं था कि मैंने एक रात में निर्णय ले लिया कि मैं एक को चुनूंगी। ये लगभग 1 साल के दौर में था जब मैंने यह निर्णय लिया कि मैं थोड़ा अधिक स्क्वैश की ओर जाऊंगी और उन टूर्नामेंट्स में थोड़ा और खेलूंगी। और हाँ, ये काफी स्वाभाविक रूप से हुआ।
0: इसके बाद अनाहत आगे बढ़ती गई। उन्होंने केवल 11 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर 11 का खिताब जीता। बहनों, 2021 में अनाहत सिंह ने US जूनियर ओपन और फाइनल में मिस्र की जयदा मिराई को हराया। बहनों, प्रतियोगिता की तैयारी और खेलने के लिए जाहिर है घर से अपने परिवार से तो दूर जाना ही पड़ता है, और जब उम्र इतनी कम हो तो ध्यान और भी रखना पड़ता है। लेकिन बहनों, जब कुछ हासिल करना हो तो इतनी कम उम्र में भी किया जा सकता है। ऐसे में अनाहिता सिंह के क्या अनुभव रहे, सुनते हैं।
1: शुरुआत में हाँ, ये निश्चित रूप से भारी था। मैं वास्तव में सबका डरती थी और हाँ, मैं मुश्किल से अपने कमरे से बाहर आती थी। मैं प्रैक्टिस सत्रों, प्रशिक्षण और मैचों आदि के अलावा हमेशा वहीं रहती थी। लेकिन जाहिर तौर पर जैसे जैसे दिन बीतते गए और मैं सभी के साथ अधिक सहज हो गई, वे सभी सच में अद्भुत थे और उन्होंने हर तरह से मेरी मदद की। ये पहली बार था जब मैं अपने माता पिता से दूर थी। मैंने कभी उनके बिना यात्रा नहीं की थी, तो ये मेरे लिए बहुत अलग था। लेकिन मेरा मतलब है कि यह एक अविश्वसनीय अनुभव था। लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों में एक गांव में रहना, उन शीर्ष एथलीटों के बीच होना जिन्हें आप सिर्फ इंस्टाग्राम पर या उनके वीडियो में देखते हैं, तो उन लोगों से मिलना और उनके ही वातावरण में रहना मेरे लिए अद्भुत अनुभव था। और ये कुछ ऐसा है जिसे मैं आज भी याद करती हूँ।
0: आपने सुने अभी अनाहत सिंह के पर्सनल अनुभव। इसके बाद बहनों, इन्होंने 14 वर्ष की उम्र में 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया और सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हुई। यह उनके करियर का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। बहनों, 2025 में उनकी मेहनत का बड़ा पुरस्कार मिला उन्हें PSA अवार्ड्स में, जिसमें उन्हें यंग प्लेयर ऑफ द ईयर, चैलेंजर प्लेयर ऑफ द ईयर जैसे सम्मान मिले। बहनों, खेल के साथ साथ अपनी शिक्षा पर भी ध्यान देना जरूरी है। खेल और पढ़ाई के बीच अनाहत कैसे सामंजस्य करती है, बता रही है।
1: मेरे लिए अध्ययन कभी सच में समाप्त नहीं होता, लेकिन मेरा मतलब है, पिछले कुछ वर्षों में बेशक मैं इसके लिए अभ्यस्त हो गई हूँ और मैंने यह तरीका ढूंढ लिया है कि मैं अपने अध्ययन और स्क्वैश को प्रबंधित कर सकती हूँ। मेरे माता पिता हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं और मेरा स्कूल भी। जैसे

0: ऐतिहासिक उपलब्धि, जिसमें अनाहत सिंह ने मिस्र की रुकैया सलेम को हराकर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। और बहनों, यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि 16 साल से चले आ रहे खिताब पर मिस्र के अधिकार को तोड़कर पहली बार खिताब जीतना देश की इस बेटी का अविश्वसनीय प्रदर्शन रहा है। और बहनों, इतनी बड़ी जीत के बाद अब अनाहत सिंह का बड़ा लक्ष्य लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स है, जहां स्क्वैश पहली बार ओलंपिक खेल के रूप में शामिल होगा। गर्व है हम सभी भारतीयों को देश की बेटी अनाहत सिंह पर। आदिवादी क्रम में अनाहत सिंह की कहानी हमें यही संदेश देती है बहनों, कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती, अगर मेहनत सच्ची हो, हौसले बुलंद हो और लक्ष्य पर नजर हो। और इसके बाद बहनों, बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले क्रम की ओर। जैसे कि बहनों, हमारी कुछ यादें वक्त के साथ पुरानी तो जरूर हो जाती हैं, लेकिन दिल से कभी नहीं मिटती। और बात करें अगर हमारे बुजुर्गों की, तो उनके जीवन के अनगिनत अनुभव, उनकी पुरानी खट्टी मीठी यादें आज भी मन में कहीं ना कहीं वैसे ही बसी होते हैं। तो बहनों, हमारे क्रम भूली बिसरी यादों में आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ऐसे ही हमारी बुजुर्ग की भूली बिसरी यादें, जो है इंद्रु अग्रवाल। तो बहनों, सुनते हैं। पुरानी भूली बिसरी यादें हमारे जीवन का अभिन्न अंग होती हैं। कुछ खट्टी मीठी वो यादें जो हमें कभी तन्हाई में हंसाती हैं तो कभी रुलाती भी हैं। यादें ही होती हैं जो जीवन पर्यंत हमारे साथ रहती हैं। और हमारे बुजुर्गों के पास तो यादों का खजाना होता है, क्योंकि वो एक पूरा जीवन जी चुके होते हैं। तो बहनों, ऐसी ही कुछ पुरानी यादों का खजाना लेकर आज हमारे साथ एक प्यारी सी बुजुर्ग मेहमान है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद।
0: आपकी भूली बिसरी यादों का सिलसिला शुरू करेंगे सबसे पहले आपके परिचय के साथ।
1: मेरा नाम इंदु अग्रवाल है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ।
0: सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है।
1: मेरे परिवार में मेरे पति है
0: जी,
1: जो एक बड़े बिजनेसमैन है और व्यवहार कुशल है। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। मेरा बेटा इंजीनियर है और एक उच्च पद पर एक बहुत बड़ी कंपनी में कार्यरत है। उसकी पत्नी भी है और एक बेटी भी है, हमारी बहुरानी। उन्होंने भी हेल्थ का प्रोग्राम एक कोर्स किया था, वो वर्क फ्रॉम होम के जरिए उसको चलाती है
0: जी। बहुत अच्छा। और आपके नाती पोते भी होंगे?
1: हाँ जी बिल्कुल, मेरे एक पोती है, वो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है।
0: चलिए बहुत अच्छा है। तो अब जैसे आप उसकी दादी हैं, तो आप भी उसके साथ में लगी रहती होंगी?
1: बिल्कुल, मैं अपना समय, काफी समय उसके साथ व्यतीत करती रहती हूँ। वैसे तो हम लोग तो नजीबाद रहते हैं
0: जी,
1: क्योंकि हमारा बिजनेस और हमारी प्रॉपर्टी काफी कुछ हमारा नजीबाद में ही है, पर मेरे बच्चे तो बेंगलोर रहते हैं। परंतु यदा कदा हम जाते रहते हैं समय समय पर, और वो लोग भी आते रहते हैं, तभी उनके साथ हमारे बातचीत होती है, उठना बैठना होता
0: जी,
1: है।
0: बहुत अच्छा है। आज हम आपकी पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं, और हम सभी की जो जीवन की यात्रा होती है वो बचपन से ही शुरू होती है। तो इंदु जी, आज हम आपको आपके बचपन में लिए चलते हैं। कैसा था आपका बचपन?
1: देखिए, मैं अपना बचपन आज दोबारा से जी रही हूँ प्रियंका जी के साथ। उसे मैं चार लाइनों के साथ शुरू करना चाहती
0: जी। बिल्कुल स्वागत है।
1: ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सामान, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी।
0: वाह, बहुत खूब। हाँ। जी बिल्कुल, क्योंकि बचपन जैसा दिन तो कभी जिंदगी में शायद आते ही नहीं है।
1: मैं अपने बचपन में बहुत पढ़ने वाले बच्चों में से थी।
0: अच्छा।
1: मेरे को शैतानियां पसंद नहीं थी।
0: ओहो।
1: हाँ, मैं ज्यादा समय अपना किताबों के साथ गुजारती थी, परंतु अपने बहन भाइयों के साथ भी खेलती थी, मस्ती करते थे, शैतानियां भी करते थे
0: जी,
1: और
0: जी।
1: अपने मित्रों के साथ भी हम खेलते कूदते थे।
0: तो क्या अब आज भी आपका फ्रेंड सर्किल है पुराना वाला? कोई पुराने जैसे दोस्त होते हैं, तो आजकल जो खोए हुए साथी हैं पुराने, वो भी मिल जाते हैं सोशल मीडिया पर, तो क्या आपके पुराने साथी मिले आपको?
1: हाँ हाँ, मिले हैं। कुछ मेरे कॉलेज टाइम के भी मिले हुए हैं, मुझे मिलते हैं, हम उनसे आपस में बातचीत भी करते रहते हैं, क्योंकि मेरे को कॉन्टेक्ट रखने का बहुत शौक।
0: अच्छा, अच्छी आदत है।
1: मैं सबसे पहले उठते ही मॉर्निंग में
0: जी,
1: सबसे पहले अपने जितने मेरे नियर एंड डियर हैं सबको मैं गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजती हूँ।
0: ये बहुत अच्छी आदत है आपकी।
1: हाँ, मुझे उससे एक अलग ही खुशी महसूस होती है, क्योंकि एक पता चल जाता है, यदि वो जवाब भी नहीं देते, यदि देख लेते हैं तो उससे ही लगता है कि वो सुरक्षित हैं और अपने घर सही हैं।
0: जी बिल्कुल, एक अपनेपन का

0: एहसास
1: और
0: होता
1: अपने
0: है।
1: पन का मुझे बहुत एहसास होता है, और इस चीज को मेरे मिलने वाले बहुत लाइक करते हैं और मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं।
2: जी बिल्कुल इंदु जी, और आपको देखकर लग रहा है आप एनर्जी से फुल हैं और आपके अंदर एक जोश है, और भगवान करे ये ऐसा ही रहे। तो और अपने जीवन यात्रा में अपनी कुछ पुरानी खट्टी मीठी यादों के बारे में कुछ बताइए।
1: देखिए मैंने अपना बचपन बहुत अच्छा बिताया, परंतु मैंने अपने बचपन को तीन श्रेणियों में बिताया।
2: जी
1: पहला बचपन जो मेरा अपना था, अपने बहन भाइयों के, अपने माता पिता के साथ, अपने मित्रों के साथ खेलते कूदते थे, मस्ती करते थे
2: जी,
1: और अपने बहन भाइयों के साथ कभी कभी थोड़ा मोटा झगड़ा भी हो जाता था।
2: वो तो जी होता ही है।
1: हाँ, और सेकंड मैंने अपना बचपन बिताया अपने बच्चों के साथ, तो मैं उनके साथ बहुत घुल मिलकर रहती थी
2: जी,
1: उन्हें हर चीज सिखाने की कोशिश करती। मेरे पति बहुत व्यस्त एक बिजनेसमैन थे, वो कम समय दे पाते थे, परंतु वो मुझे साइड बाय साइड बहुत कोऑपरेट करते थे
2: जी जी।
1: तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाती भी थी, उस समय देखिए साधन बहुत कम थे, एक हाथ में पंखा होता था और एक हाथ में किताब होती
2: जी
1: थी।
2: जी
1: वो बच्चों को पढ़ाना होता था, तो बच्चों को पढ़ाती थी, उनको मैं समय समय पर उनके साथ खेलती भी थी।
2: कहते हैं ना कि बच्चे की प्रथम गुरु तो माँ ही होती है ना
1: जी। तीसरा बचपन मैंने अपने बच्चों के साथ बिताया
2: जी, जो कि अब चल रहा है आपका।
1: जो कि अब चल रहा है, अब तो जबकि वो काफी बड़े हो गए हैं
2: जी,
1: तो फिर भी मैं उनके साथ काफी समय रहती हूँ। जब भी मिलते हैं या जाती हूँ उनके पास या वो आते हैं, मैं उनके साथ बैडमिंटन भी खेलते हैं, कभी कभी क्रिकेट भी खेल लेती हूँ।
2: बहुत बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। और तो जैसे कि आपने अपने बचपन के बारे में हमें बताया, तो आपको ऐसा लगता है कि आज के समय में और पुराने समय में की जो पेरेंटिंग होती थी उसमें क्या आपको अंतर नजर आता है?
1: देखिए अब मैं अपने घर में भी देखती हूँ
2: जी,
1: जबकि तो बच्चे काफी कोशिश करते हैं कि हम समय दें बच्चों को, परंतु उनकी अपनी इतनी जिम्मेदारियां हैं क्योंकि वो जॉब में लगे हुए हैं
2: जी,
1: और जॉब का टाइम आजकल बहुत समय होता है। फिर भी काफी समय देते हैं अपने बच्चों को, परंतु वो समय नहीं दे पाते जो हमारे समय में
2: पहले
1: था।
2: समय में देते
1: ना, पहले मोबाइल था ना, नेट की सुविधा थी, सब कुछ अपने माँ के साथ घर में ही होता था।
2: वो होता था, दोस्तों की टोलियां होती थी,
1: दोस्तों की टोलियां होती थी, ज्यादा ज्यादा अपने आपस में छुपा छुपाई, छोटे मोटे गेम बच्चे खेलते रहते थे, कबड्डी खेलते थे लड़के, गिट्टी वगैरह खेलते थे
2: जी जी जी।
1: परंतु अब वो समय तो बदल गया है, मोबाइल पर ही बच्चे काफी कुछ देख लेते हैं और सीख लेते हैं, और बाकी जाने के लिए उनको स्पोर्ट्स के लिए उनके लिए इतनी सुविधाएं हैं हर जगह, कि क्रिकेट क्लब अलग बने हुए हैं, हर तरह का स्पोर्ट्स का क्लब अलग अलग बना हुआ है
2: जी। आपको क्या अपने पुराने दिनों की कुछ ऐसा कोई कहानी हो या कोई किस्सा हो, कुछ ऐसे पुराने दिनों का जो आपको आज भी याद आता हो और आपको लगता है कि मैं फिर से उन्हीं वादियों में वापस चली जाऊं? मैं
1: नहीं, मैं अपने माता पिता से बहुत जुड़ी हुई
2: जी,
1: क्योंकि मेरे माता पिता, हम पांच बहने थे, परंतु वो बहुत केयर करते थे हमारी और बहुत ध्यान रखते थे
2: जी।
1: जब स्कूलिंग से डिग्री कॉलेज में आई तो मुझे दूसरे शहर जाना पड़ता था
2: जी,
1: क्योंकि मेरा शहर छोटा था। तो मेरी मदर सुबह उठकर, मेरी माँ मेरे लिए ताजा नाश्ता बनाती, और आने तक मेरे पिता ध्यान रखते थे कि कब बस आएगी लौट कर, तो अपने सर्वेंट को भेज देते थे जब बारिश आती थी छाता लेकर, कि मेरे बच्ची स्कूल से लौट रही होगी तो वो जिससे वो भीग ना जाए। वो पल मैं भुला नहीं पाती अपनी जिंदगी।
2: जिंदगी के कितने वर्ष आपके निकल चुके हैं, माँ बाप भी शायद नहीं है आज।
1: नहीं, मेरे माता पिता दोनों अब नहीं है इस दुनिया में
2: जी,
1: परंतु उनकी यादें अभी भी मेरे मन में उसी तरह बनी हुई।
2: वही ना, कि कुछ यादें ऐसी होती हैं कि हमारे जीवन पर्यंत वो साथ रहती है और उनको हम कभी भी नहीं भूल पाते। पढ़ाई के साथ साथ आपके और क्या शौक है?
1: पढ़ाई के साथ मैं घर का हर काम करती हूँ, मुझे कुकिंग का, सिलाई का, कढ़ाई का, मैंने जो काम अपने शादी से पहले नहीं किए थे ना
2: जी,
1: वो मैंने शादी के बाद भी सीखे। अपनी लड़की को सिखाया मैंने सब काम।
2: बहुत अच्छा है।
1: हाँ, वो सब काम सिखाया, और उसका मैंने अपने जीवन में बहुत आनंद भी उठाया, और एक मेरे को तसल्ली थी कि मैं अपने ये सब काम कर सकती।
2: और इसके सिवा आपको क्या क्या पसंद है?
1: देखिए कुछ साल पहले मैंने, हमारे यहाँ संस्था है एक महिला सेवा संगठन
2: जी,
1: उसके 50 साल पूरे हो चुके हैं
2: जी,
1: तो मैं अभी 3-4 साल से उसकी मेंबर बनी हूँ।
2: बहुत,
1: तब से मुझे एक बोलने का अवसर प्राप्त हुआ वहाँ पर
2: जी,
1: क्योंकि वहाँ एक बहुत अपनापन है सबके अंदर, और वहाँ हर त्योहार हर प्रोग्राम बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है
2: जी।
1: मैंने उससे सीख ली, फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं हर फेस्टिवल पर
2: जी
1: अपना लिखती हूँ,

0: और फिर वहाँ सबके सामने बोलती भी हूँ। और मुझे भजन गाने का बहुत शौक है। सुंदरकांड की टी होती है हमारी, तो मैं वहाँ भजन भी बोलती हूँ।
1: तो क्या छोटा सा भजन आप हमें भी सुनाएंगी?
0: हाँ सुना तो सकती हूँ, दो लाइन सुना
1: हाँ
0: देती
1: बिल्कुल
0: हूँ आपको।
1: बिल्कुल सुनाइए।
0: उठ

0: बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और इस उम्र में आके जो जिस काम को करने से आपको खुशी मिलती है तो वो जरूर करना चाहिए, और वो खुशी हमें लग रहा है कि आपके चेहरे पे नजर आ भी रही है हमें। अच्छा इंदु जी, आपकी भूली बिसरी यादें आज हम ताजा कर रहे हैं, क्या कोई और भी ऐसी अनोखी सी याद है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगी?
1: हाँ जी, मैं पढ़ रही थी MA फर्स्ट ईयर, तो मेरे ससुराल के, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी सासू माँ किसी के साथ, हमारी मदर की मित्र के साथ हमारे घर आई अचानक। हम बैठे हुए थे, काम कर रहे थे अपना, तो उन्होंने दूर से ही मुझे देखा था। जो हमारी मदर की मित्र थी और उनकी रिश्तेदार थी, उन्होंने कहा ये लड़की है, यदि चाहो तो अपने बेटे के लिए पसंद कर लो। तो मेरी मदर इन लॉ ने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे पसंद किया। फोटो का भी उस समय इतना रिवाज नहीं था, और हमारे परिवार के बारे में, सबके बारे में बताया, और मेरी मदर से बात, क्या आप शादी करने में इंटरेस्टेड हैं?
0: जी
1: मेरी मदर कहने लगी हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए आप, लड़का कहाँ है, कैसे है। उस समय मेरे हस्बैंड मध्य प्रदेश में थे, भिलाई में जॉब करते थे,
0: जी
1: मैं एज ए मैनेजर। तो तब उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि इतने ये प्लेन सर्विस वगैरह इतनी कम थी, बाई ट्रेन ही सब लोग आते जाते थे। अब इत्तफाक देखिए आप, हंसी भी आती है, और
0: जी
1: मेरे हस्बैंड भी आज बहुत हंसते हैं इस बात को लेकर। मेरे अपने हस्बैंड से मुलाकात मेरी शादी में ही हुई थी,
0: अच्छा,
1: और
0: मतलब आप उनसे शादी से पहले कभी
1: उससे
0: नहीं
1: पहले
0: मिले?
1: मैं कभी नहीं मिली थी। और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए, ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और हमने आपस में सुख दुख बांटे और बहुत अच्छा जीवन बिताया भी और बिता भी रहे हैं।
0: बहुत खूबसूरत यादें हैं आपकी। आपकी जो यादों का ये खूबसूरत सिलसिला है, ये यूं ही चलता रहे। और इंदु जी, आप अपने यादों के खजाने में से क्या हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी?
1: देखिए अब तो उम्र का पड़ाव काफी आगे आ गया है, तो अब भी मैं जब भी आंगन में बैठती हूँ
0: जी
1: तो हवा में बचपन की हंसी सुनाई देती थी,
0: जी
1: क्योंकि उस पर कोई दबाव नहीं था,
0: जी
1: कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और रात के सन्नाटे में मुझे वो पुराने गीत भी सुनाई देते हैं जो हम रेडियो पर सुना करते। कभी कभी ऐसा लगता है पूरा जीवन एक कहानी बन गया है, यहाँ हर एक अध्याय एक मेरे लिए एक लेसन था, एक सबक था कि जिंदगी में कैसे कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, कैसे कैसे सुख दुख आते हैं, उनसे हमें कैसे दूर मतलब पार पाना चाहिए। यादें हमारी मिटती नहीं, बस समय के साथ उसका रूप बदल जाता है,
0: जी बिल्कुल
1: कभी तस्वीर बनकर, कभी गीत बनकर, और कभी कभी आंसू बनकर।
0: बहुत
1: और अब जिंदगी का सूरज ढलता है तो यही भूली बिसरी यादें हमारे दिल का सबसे बड़ा खजाना बन जाती है।
0: जी
1: इसलिए यादें बनाओ, यादें बांटो, क्योंकि अंत में संपत्ति नहीं, यादें ही विरासत बनाती।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूब कहा आपने। और बिल्कुल हम भी यही कहना चाहेंगे इंदु जी, जितना समेटो उतना ही बिखरती जाती हैं। ये ऐसी यादें हैं जो ना चाह कर भी हमेशा साथ निभा जाती हैं। तो इंदु जी, आज हमने आपकी भूली बिसरी यादों को फिर से तरोताजा किया। तो आप अपनी ही हम उम्र साथियों के लिए क्या कोई प्यारा सा संदेश देना चाहेंगी?
1: हाँ बिल्कुल, मैं देना चाहूंगी कि देखिए, अब शादी से पहले तो माँ बाप के साए में रहकर हमें कोई इतनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता, परंतु शादी के बाद हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां आती हैं नए नए रूप में, नए नए रिश्तों में, उसे हमें हंसकर स्वागत करना चाहिए और उसका स्वागत करते हुए उन जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए।
0: बहुत खूब कहा आपने। और इंदु जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमारे साथ पुरानी नई बहुत सारी अपनी यादें ताजा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों, भूली बिसरी यादें क्रम में अभी हम इंदु अग्रवाल से उनकी पुरानी यादें ताजा कर रहे थे, जिन्हें सुनकर हमें भी आनंद मिला। और तो बहनों, अपने इसी आनंद को दुगना करने के लिए हम मिलकर सुनते हैं ये गीत।
2: Five, four, three, two, one, let's start the fun.

आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा। लोकधारा के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भजन दास के स्वर में जौनसारी लोकगीत।

0: भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित है। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
1: हमारी मेरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है। इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
0: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो

0: की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण का रास्ता अपना रही है।
2: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति, मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में ही विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
3: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलकर दिल्ली के अंदर 70,00,000 पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके

0: बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
1: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
2: एक पेड़ माँ के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है, हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
1: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और 1 सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतर

0: शर्मा।
1: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की सातवीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनेदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
0: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577, जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम एक ही संगीतकार। एक ही संगीत कार्यक्रम में आज हमारे संगीतकार हैं नदीम श्रवण। नमस्कार साथियों। साथियों, 90 का वो दशक भी क्या खूबसूरत दौर था जब टेप रिकॉर्डर की रीलों में रोमांटिक मेलोडी के नगमे घूमा करते थे। जब भी हम वो दौर याद करते हैं तो याद करते हैं हर दिल अजीज संगीतकारों की जोड़ियों में से एक नदीम श्रवण जी की जोड़ी को। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी सखी निधि भारद्वाज, और आज हम उन्हीं के कुछ गीत सुनेंगे। तो आप पूछना चाहते होंगे कि वो कौन कौन से गीत आप सुनवाएंगे, तो बस हम यही कहेंगे कि पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है। जी हाँ, एक इसी तरह के शब्द जब हम कुछ पूछने के लिए कहते हैं तो इसी तरह का गीत भी संगीत से सजा दिया था नदीम श्रवण ने, लिखा था समीर ने और कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए इस फिल्म में। संगीत था नदीम श्रवण का और फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी। तो कुछ भी आप हमसे न पूछिए न भी हम आपको कुछ बताते हैं, क्योंकि इस गीत के बाद फिर पूछने और बताने की सिलसिले को फिर से शुरू करेंगे।
3: मुझे क्या हुआ है

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: मेहमान आएंगे हो सकता है, इंडिया मैच जीतेगा ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
3: श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम एक ही संगीतकार में, और एक ही संगीत कार्यक्रम में आज हम एक उस मशहूर जोड़े की बात कर रहे हैं जिसे नदीम श्रवण के नाम से हम सब जानते हैं। साथियों, नदीम श्रवण बॉलीवुड के 90 के दशक के सबसे मशहूर और सफल संगीतकार थे। ये जोड़ी नदीम अख्तर सैफी और श्रवण कुमार राठौर से मिलकर बन गई थी। इन्होंने अपनी मेलोडी और क्लासिकल धुनों से ही हिंदी सिनेमा में संगीत का स्वर्णिम दौर लिखा।

नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में आई फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया का ये गीत अब हम आपको सुनवा रखे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाज़ में।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: आकाशवाणी नजीबाबाद से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही संगीतकार, और एक ही संगीतकार कार्यक्रम में आज हमारी छोटी है संगीतकार नदीम श्रवण की। श्रोताओं, नदीम अख्तर सैफी का जन्म 6 अगस्त 1954 को मुंबई में हुआ था, और बचपन से ही अलग अलग वाद्य यंत्रों को बजाने का इनको बहुत शौक था। वहीं संगीत के बेताज बादशाहों में से इन दोनों में से एक श्रवण कुमार राठौर का जन्म 13 नवंबर 1954 को ही राजस्थानी परिवार में हुआ था। दोनों की मुलाकात साल 1973 में हुई। जिस तरह से उम्र में ये साथ साथ एक

दूसरे के थे, उसी तरह से संगीत में कदम से कदम मिलाकर इन्होंने कई तरह से संगीत के रिकॉर्ड बनाए। आइए एक और प्यारा सा गीत इन्हीं के संगीत निर्देशन में हम सुनते हैं, फिल्म सैनिक से आवाज़ कुमार सानू और साधना सरगम की है।

श्रोताओं, 90 के दशक में रिलीज हुई फिल्म आशिकी इनकी करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके गानों ने रिकॉर्ड के रूप में संगीत प्रेमियों का प्यार पाया। कहते हैं आशिकी का वर्ल्ड रिकॉर्ड फिल्म आशिकी का एल्बम बॉलीवुड इतिहास का सबसे ज़्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम माना गया है। लगातार उन्होंने हेड रिकॉर्ड जीत ली, जैसे उन्होंने 1991, 92 और 93 लगातार 3 साल फिल्म फेयर पुरस्कार जीत कर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। और उसके बाद स्टार स्क्रीन अवार्ड्स फिल्म राजा हिंदुस्तानी के लिए भी सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता। यानी नदीम श्रवण ने अपने करियर में 4 बार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उनकी प्रसिद्ध फिल्में आशिकी, राजा हिंदुस्तानी, साजन, सैनिक, हाँ मैंने भी प्यार किया, राज, परदेस, रंग, सलामी,

राजन का घर, कसूर, कयामत, मेरे जीवन साथी, दिल का रिश्ता, बहुत सारी फिल्में हैं। उन्हीं में से एक का गीत आज हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है राज, आवाज है अलका याग्निक की।

श्रोताओं, नदीम श्रवण की जोड़ी साल 2021 में हमेशा के लिए खत्म हो गई, क्योंकि 22 अप्रैल 2021 को कोविड संक्रमण के कारण श्रवण कुमार राठौर का मुंबई में निधन हो गया, जिससे इस महान संगीतकार जोड़ी के पुनर्मिलन की उम्मीदें हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन उनका ये गीत आज भी सबके दिलों को जोड़ता है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का यह अंतिम गीत कुमार सानू के स्वर में, फिल्म परदेश से।

श्रोताओं, संगीतकार नदीम श्रवण केसकेत के साथ ही कार्यक्रम एक ही संगीतकार संपन्न करने की अपनी सखी निधि भारद्वाज को अनुमति दीजिए। नमस्कार, आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही संगीतकार। इस कार्यक्रम में आज हमारे संगीतकार थे नदीम श्रवण। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:10 हो रखे हैं। हमारी सभा के प्रसारण अब संपन्न होते हैं। अपनी संध्याकालीन प्रसारण सभा में शाम 4 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजने को हैं। हमारी दूसरी सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, पेश है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान की रक्षा मंत्री शिंजीरो कोई जूमी के बीच आज नई दिल्ली में बैठक हुई। दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के प्रारूप के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। वे आज पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। दिल्ली के उप राज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने राजधानी में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी मोर्चों पर निर्बाध बहु एजेंसी समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में निर्मित 2,35,000 मकानों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रूपये से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की। सड़क और परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने

0: ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 अन्य घायल हो गए। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड का सामना करेगी। मैच भारतीय नियमानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार और अब हम आपको लिए चलते हैं अपने अगले कार्यक्रम की ओर, जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: नंदन वंदन अभिनंदन आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के इस अंक में हार्दिक अभिनंदन है। मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूं और आपसे वादा करती हूं कि हर बार की तरह आज का हमारा ये कार्यक्रम आपके दिलों में एक नई उम्मीद जगाने वाला है, क्योंकि हमारे लिए कोई कहीं मुस्तैद है, कार्यरत है, जो अपनी जान को अपनी हथेलियों में लेकर चलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देश की सेवा में सर्वत्र अपना सर्वत्र न्योछावर किए आगे बढ़ रहा है, हर दिन हर रात। आपसे साझा करना चाहेंगे कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं शिव शंकर कुमार जी, जो इंस्पेक्टर हैं जनरल ड्यूटी सहस्त्र सीमा बल में, आजकल गैंगटॉक में कार्यरत हैं और इन्हें गैलेंट्री मेडल से भी सम्मानित किया गया है। और सबसे प्यारी और खूबसूरत बात आज के अंक की ये है कि सीधा गैंगटॉक से यहाँ पहुंचे हैं आकाशवाणी की स्टूडियोज में आपको अपनी यात्रा से अवगत कराने के लिए, रूबरू कराने के लिए। हर सिपाही हर ऑफिसर की अपनी यात्रा होती है, लेकिन उस यात्रा का गंतव्य सिर्फ देश सेवा होती है। तो देश सेवा को समर्पित हमारे आज के मेहमान शिव शंकर कुमार जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। शिव शंकर कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार SSB की ओर से आप सभी श्रोताओं को जय हिंद कहना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं ऑल इंडिया रेडियो टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। SSB का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुरक्षा को बनाए रखना है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारे SSB के सभी कार्मिक दिन रात पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपना काम कर रहे हैं। SSB हमारी इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडो भूटान बॉर्डर के साथ साथ इलेक्शन ड्यूटी, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी को भी बखूबी अंजाम दे रही है। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी टीम का।
0: जी इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी, आपने जिस तरह से व्याख्या की यहाँ पर SSB की, इससे ये साबित होता है कि आप देश के साथ साथ अपनी सेवाओं से, सेनाओं से कितना प्रेम करते हैं। और आज आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सहस्त्र सीमा बल का, उन तमाम सैनिकों का, उन तमाम अधिकारियों का जो कहीं ना कहीं अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी, आप कहते हैं ना कि अपने आत्म मनोबल या आत्मबल तो हमें हमारी सेवाएं सेनाएं देती हैं, पर हम किस तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं वो भी सेनाओं के माध्यम से काबिल-ए-तारीफ है। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो

0: नन्ना मन
1: जी,
0: लंबी उड़ान, छोटे छोटे पंख, आपका जो जीवन है खासतौर पर आपके बचपन की बात की जाए तो किस तरह के बच्चे थे आप? क्या शैतान थे और पढ़ाई में कितना मन लगता था? कैसा माहौल था घर में?
1: बचपन तो मेरा बिहार में सीतामढ़ी, जो एक बाजपट्टी पड़दौरा गांव है, वहाँ बीता है मेरा। परिवार का माहौल बहुत खुशनुमा माहौल था और हमेशा इनकरेजिंग मिलता था काम करने के लिए। शरारती बच्चे तो थे ही, लेकिन हमारे परिवार से हमें मेहनत और अनुशासन के प्रति हमेशा सजग रहने को सिखाया गया है
0: जी।
1: और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने का भी एक हमारे पिताजी सिखाते थे कि पूरी ईमानदारी से कोई भी काम को करना है तो पूरी ईमानदारी से करना है, लगन के साथ करना है। तो वो हमारे अंदर हमेशा के लिए रह गया और आगे चल के हमारे जब भी हमारे प्रोफेशन लाइफ में भी वो काम किया है
0: जी। कहते हैं कि हमारा जो परिवेश है, हमारा जो परिवार है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे विकास में। आज हम जो कुछ भी हैं अपने परिवार की वजह से और जो भी संस्कार आपको प्राप्त हुए वो देश सेवा में निहित है, नजर आ रहे हैं। और आज जब आप अपनी वर्दी पहने यहाँ FM रेनबो के स्टूडियोज, आकाशवाणी के स्टूडियोज में बैठे हैं, तो आपके माता पिता जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे, घर परिवार वाले सुन रहे होंगे, वो इस बात की मिसाल दे रहे होंगे कि हाँ, हमारे बच्चे ने अपने लिए नहीं अपने देश के लिए जो बेड़ा उठाया है काबिले तारीफ है। तो शिव कुमार जी, आप शिव शंकर कुमार जी, आप हमें ये बताइए कि कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको देश सेवा में इस पथ पर चलना है और SSB ज्वाइन करने का फैसला कैसे लिया?
1: मेरे लिए वर्दी हमेशा सम्मान और जिम्मेदारी की प्रतीक रहा है। मन में हमेशा ऐसी इच्छा थी कि फौज के प्रति, देश के प्रति कुछ करना है, ऐसा काम करे जो देश और समाज में अपना योगदान भी दे सके। इसी सोच को जब हमने ग्रेजुएशन पास किया तो सुरक्षा बल में जाने का फैसला किया। उसके बाद SSC की फॉर्म आई, उसमें मैंने पास करके और फिर SSB को ज्वाइन किया है। एक SSB एक ऐसा माध्यम रहा, एक ऐसा अवसर रहा जिसके देश सेवा के साथ साथ देश सेवा करने का पूर्ण मौका मिला
0: जी। और ये मौका आपके जीवन में एक सुखद अनुभूति लेकर आया, वर्दी पहनना, फिर देश सेवा में जितने भी ऑपरेशंस में आप कार्यरत रहे उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये अनुभूति जरूर हुई होगी कि अगर मैं सेना ना ज्वाइन करता तो ये मौका मुझे कहाँ मिलता, कहाँ मैं अपने देश का परचम लहरा पाता। तो ये सौभाग्य की बात है कि सेनाओं ने आपको चुना और सशस्त्र सीमा बल आपको बल दे रहा है आज, और आप इस बल से देश सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के उपरांत आपने एग्जाम क्लियर किया, क्या प्रक्रिया रही, कैसे पहुंचे और कितने अटेम्प्ट्स किए, कितने अटेम्प्ट्स में आपको यह हासिल हुआ, क्या कुछ और भी करने की सोच रहे थे साथ साथ, या सिर्फ ये था कि फौज में ही जाना है?
1: ये मेरी पहली अटेम्प्ट ही थी और मैंने 2012 में ये SSB को ज्वाइन किया था और इसकी जो फॉर्म थी SSC के थ्रू आई और 2010 में इसका प्रोसेस शुरू हो गया था। पूरी भर्ती जो होती है वो फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, रिटेन होता है, इंटरव्यू होता है, सारी प्रक्रिया को चयन करने के बाद, पास करने के बाद मेरा चयन हुआ था। इसमें फिजिकल टफनेस के साथ साथ मेंटल टफनेस की भी परीक्षा होती है इसमें। अगर वो सारा चीज़ आप पास कर जा रहे हैं तो फिर आपका चयन हो जाता है। उस समय एक ही बात मन में था कि अगर मौका मिले तो मैं भी अपने इस काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ ये करूँगा
0: जी। तो वो कौन सा वर्ष था जब आपका चयन हुआ और चयन होने के बाद जब ये खबर आप अपने परिवार तक ले गए तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी?
1: ये 2012 में हुआ है। 2012 में हमें SSB ज्वाइन करने का मौका मिल गया था। परिवार के लिए तो ये बहुत खुशी और गर्व का विषय था, लेकिन एक छोटा सा वो भी था कि फौज में जा रहा है तो फौज में घर से दूर रहेगा। उनके मन में एक था कि घर से दूर रहेगा, लेकिन उनका हमेशा सपोर्ट रहा है कि हाँ चलो जो भी करना है अपने मन से ईमानदारी से करते रहना है, मुश्किल परिस्थितियों में भी ड्यूटी करना है तो उसके लिए भी परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। उन्होंने हमेशा साथ किया है, दिया है
0: और उसी साथ के चलते आप आज यहाँ तक पहुँच गए। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तक का सफर आपने पूरा किया, इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। ये भी बताएं कि जब आप घर परिवार के साथ साथ जब जिस जगह से आप संबंध रखते हैं, आपके नाते रिश्तेदार दोस्त, उन तक जब ये बात पहुंची कि हमारा दोस्त या हमारा परिवारजन अब SSB ज्वाइन करने वाला है, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? क्या कभी किसी ने ऐसा कहा कि

0: आप जैसा बनना चाहते हैं, हम भी SSB ज्वाइन करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं देश की।
1: सभी के लिए ये, हमारे गांव वालों के लिए भी ये गर्व की बात था कि हमारे बीच का एक लड़का कोई जाकर फौज में भर्ती हो रहा है, वो सबके लिए गर्व की बात था। और एक तो आइडल बन ही जाता है गांव समाज के लिए कि हाँ कोई भी जाए तो वो उसके जैसा बनना है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरे जैसा ही बनना है, सब अपने अपने क्षेत्र में काम करे वो ज़्यादा जरूरी है
0: जी। पर ऐसा तो ज़रूर होता होगा कि जब आप अपने घर जाते होंगे तो आपके अपने आपके दोस्त, आपके परिवारजन एक जमावड़ा सा लग जाता होगा और कहते होंगे सुनाओ ना कुछ किस्से कहानियां, क्या कुछ होता है SSB में, जहां जिस बटालियन के साथ जाते हो क्या कुछ खास हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बहुत उत्सुकता रहती है कि हमारे जो देश के जो वीर हैं ना कैसी जिंदगी जीते हैं। हम आम जनमानस बस आपके किस्सों को दोहराते हैं, लेकिन जब आपकी जुबानी इनको सुनते हैं ना तो गर्व से सीना फूल जाता है। आज जिस कार्यक्रम के माध्यम से भी जितने लोग हमें सुन रहे हैं, संदेश आने हम तक पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मन में जिज्ञासा रहती है कि कैसा जीवन जीते हैं। ये तो जानते हैं कि मुस्तैद रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोई जिंदगी ऐसी होती होगी जो हम नहीं जी पाते। और यही कारण है कि आज देश के युवा भावी पीढ़ी फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ऐसा होता होगा आपके साथ?
1: ये होता है, फौज ऐसी संस्था है जो एक जॉब नहीं देती, एक लाइफ देती है
0: जी,
1: ये पूरा जीवन देती है हमको। आप अगर आप इसमें जीना चाहते हैं तो पूरी लाइफ जो है वो देती है। और किस्से कहानियां तो चलते रहते हैं, घर पे जाते हैं तो जो भी किस्से कहानियां वो चलते रहते हैं, सभी उत्सुक रहते हैं कि कुछ तो बताए फौज में कैसे चलता है, क्या होता है नहीं होता है, ये सब तो चलते रहता है। और ड्यूटी के टाइम में ड्यूटी, और ड्यूटी जब नहीं रहती है तो हम लोग भी रिलैक्स होके रहते हैं और काम करते हैं
0: जी। लेकिन लक्ष्य, जिस लक्ष्य के लिए, जिसकी प्राप्ति के लिए आपने मेहनत की, वो लक्ष्य आपको प्राप्त हुआ। और लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ जैसे ही आप अपना एग्जाम क्लियर किया, हर चरण में आप उत्तीर्ण हुए, पास हुए, उसके उपरांत तो ट्रेनिंग जो एक अहम हिस्सा रही, तो ट्रेनिंग का सफर कैसा रहा, कहाँ ट्रेनिंग हुई, और क्या आप ये मानते हैं कि इस ट्रेनिंग ने आपको पूर्ण रूप से तैयार कर दिया था सेवाएं देने के लिए?
1: मेरी पोस्टिंग सबसे पहले 2012 में हुई, जब मैं बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए CTC सलोनीबारी असम में है वहाँ गया। वहाँ से एक सिविलियन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक फौज में आने के लिए, फौजी बनने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया 13 महीने का जो बेसिक ट्रेनिंग था उसमें। इससे ये होता है कि हमारा सिविल लाइफ और फौज के लाइफ थोड़ा डिफरेंस होता है। मतलब फौज में कैसे किससे बात करना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, सारा चीज़ को वो 13 महीने के अंदर में हमें हमारे इंस्ट्रक्टर लोग ने, हमारे जो भी अधिकारी लोग हैं उन्होंने हमें सिखाया, उसको पूरी तरह से मजबूत बनाया। फिजिकल टफनेस से लेकर मेंटल टफनेस तक सभी चीज़ को हमने सिखाया गया उसके उसी दौरान। उसके बाद हमारी पोस्टिंग आगे होती चली गई। उसके बाद मेरी पोस्टिंग सबसे पहले 53 बटालियन फालाकाटा में हुई, जो इंडो भूटान बॉर्डर को मैन करती है, वहाँ पर ड्यूटी करती है। उसके बाद 2018 में मेरी पोस्टिंग सीतामढ़ी 51वीं बहनी है, वहाँ पे जो इंडो नेपाल बॉर्डर को ड्यूटी करती है, मैन करती है, वहाँ पे हमारी ड्यूटी हो गई। वहाँ से होने के बाद हमें 2021 में ANO जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस है वो 16वीं बहनी जमुई बिहार में हमारी पोस्टिंग हो गई, वहाँ पे हमने दी। और फिलहाल मैं SSK गैंगटोक में अपनी सेवाएँ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक ऑफिस ड्यूटी के रूप में दे रहा हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम यही कहेंगे कि ये सफ़र, ये कारवां यूं ही जारी है और जारी रहेगा। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने हमारे शिव शंकर कुमार जी, और आज इंस्पेक्टर के रूप में हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो इनके सफ़र के बारे में और चर्चा करेंगे। और आप सभी श्रोता जो संदेश भेजना चाहते हैं 9868107070 इस नंबर के माध्यम से आप संदेश भेजिए और अपनी भागीदारी निभाइए। इस बात का प्रतीक चिन्ह बनिए कि हम देशवासी अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। सेवाओं के माध्यम से हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो नित्य प्रति कार्यरत रहते हैं और जिनके लिए सिर्फ देश सेवा ही सर्वोपरि है, उनको सलाम करते हैं संदेश के माध्यम से।

लक्ष्य प्राप्ति किसे कहते हैं, ये तो हम अपने फौजियों से ही सीखते हैं। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति प्रेम ने हमेशा इन्हें लक्ष्य प्राप्त करना ही तो सिखाया है। और इस लक्ष्य प्राप्ति की वजह से हमारे देश भारत ने हमेशा परचम लहराया है, अपने फौजियों की वजह से और इनके देश प्रेम की वजह से। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार सहस्त्र सीमा बल से। और जैसा कि मैं साझा कर चुकी हूं कि आजकल ये गैंगटॉक में कार्यरत हैं और सीधे गैंगटॉक से यहाँ आकाशवाणी के स्टूडियो आए हैं, यही इनकी कर्तव्य निष्ठा है, यही देश प्रेम है। और सहस्त्र सीमा बल ने जैसे ही इन्हें कहा कि आपको जाना है और पहुंचना है, देखिए ये तुरंत कल चले और आज यहाँ पहुंच गए। आपसे ये जानना चाहते हैं हम शिव शंकर कुमार जी, एक लंबा सफर तय करता है एक फौजी, 2012 में आपकी नियुक्ति हुई, आप सब इंस्पेक्टर बने, फिर 2018 में इंस्पेक्टर बने,

0: ये सफर कितना चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। पदोन्नति अपने आप में हमें सुखद अनुभूति कराती है, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां और जिम्मेदारी लेकर आती है।
1: ये सफर मेरे लिए बहुत सीखने वाला रहा है। 2012 में मैं सब इंस्पेक्टर नियुक्त हुआ था, उसके बाद एक प्रक्रिया है, अगर वैकेंसीज हो और आपका सर्विस रिकॉर्ड ठीक हो तो आपको एक डिपार्टमेंट आपको प्रमोशन देती ही देती है
0: जी।
1: उसके साथ जब 2018 में मुझे इंस्पेक्टर बनाया गया था, रैंक बढ़ने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ती है
0: जी।
1: इस दौरान मैंने अपने जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखा, और जो हमारे सहपाठी है, कार्मिक है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि एक सिविलियन होकर आकर फौज में ट्रेनिंग के बाद अगर ऑन ग्राउंड जो ड्यूटी करता है उसको सीखने के लिए, जो पहले से जो भी काम कर रहे हैं उनसे सीखने को मिलता है, वो हमारे दिनचर्या में शामिल हो जाता है
0: जी। जी, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और आपको जिंदगी को जीने लगते हैं, लगने लगता है हम इसी के लिए बने थे और जिसके लिए बने थे आज उसके लिए कार्यरत है, आपकी रग रग में शामिल हो जाता है। शायद सेनाएं आपको इस तरह से तैयार करती हैं कि बस आपके रगों में, आपके खून में सिर्फ सेना है और देश प्रेम रह जाता है जी। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि जब आप सेनाएं ज्वाइन करते हैं, जब आपने SSB ज्वाइन की, तो निश्चित परीक्षण के अंतर्गत आपको फिर आगे पोस्टिंग्स मिली, लेकिन प्रशिक्षण का सिलसिला फौज में जाने के बाद कभी खत्म नहीं होता, वो तो बरकरार रहता है ना। तो क्या आपको लगता है कि जो भी ट्रेनिंग्स आपने बीच बीच में की या करते आ रहे हैं, इसने आपका निर्माण किया है, इसने आपको पूर्ण रूप से एक फौजी होना भी सिखाया है और कैसे चुनौतियों से लड़ा जाए ये भी बताया है?
1: प्रशिक्षण ही किसी को बेटर बनाती है। पहले हमने बेसिक ट्रेनिंग किया, उसके बाद समय समय पे ऑर्गेनाइजेशन हमको कोर्सेज कराती रहती है, इन प्रोफेशनल कोर्सेज हो और ट्रेनिंग भी हो वो कराती रहती है। जैसे आपको प्रमोशन भी मिलता है तब भी आपको कोर्सेज करने पड़ते, कोर्सेज क्वालिफाई करने पड़ते, तब आपको प्रमोट किया जाता है। उसी तरह से हर कोर्स के लिए, हर ड्यूटी के लिए अलग अलग कोर्सेज है जो आपको प्रोफेशनली साउंड बनाने के लिए कराए जाते हैं। जिस प्रकार से कोई भी कोर्सेज हो, जंगल वारफेयर का कोर्सेज हो, जंगल में कैसे रहना है उसकी ट्रेनिंग कराना हो, जैसे बॉर्डर पे ड्यूटी करना है, इंडो नेपाल बॉर्डर को कैसे मैन करना, इंडो भूटान बॉर्डर को कैसे मैन करना, उसकी भी ट्रेनिंग, ये अनवरत जारी रहता है। और फौज, मैंने पहले भी बताया, एक लाइफ है, तो इसमें अनवरत जारी रहेगा कोर्सेज कराना, जिससे कि आप और टफ हो सके और अपने काम को अच्छे तरह से कर सके, इसीलिए ट्रेनिंग हमेशा जरूरी है
0: जी। और ना शब्द तो कभी होता ही नहीं आपकी डिक्शनरी में, क्योंकि सेनाएं आपको हमेशा यही सिखाती हैं,
1: ना तो है ही नहीं,
0: इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। बस जैसा कि हमने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति ही आपका अल्टीमेट गोल है, जिस काम को आपको दिया गया उसको आपको पूर्ण करना है, यही आपकी जिम्मेदारी है।
1: और हम लोग उस जिम्मेदारी को पूरी तरह बखूबी निभाते भी है
0: जी, निभाते हैं। और एक बात व्यक्तिगत पूछना चाहूंगी, एक फौजी होने के नाते घर भी है, परिवार है, तमाम रिश्ते हैं और एक तरफ देश प्रेम है, तो इस कहते हैं कि एक फौजी के मन में कभी कोई जंग नहीं होती, उसके वक्त उस मतलब परिवार और देश को लेकर उसके मन में सिर्फ देश प्रेम होता है कि बस अब देश के लिए समर्पित है, माना कि घर है, परिवार है, भावनाएं हैं, तो इस चीज को आप किस तरह से अपने जीवन में समाहित करते हैं?
1: थोड़ा मुश्किल है, लेकिन परिवार का अगर सहयोग मिलते रहे तो ये सब आसान हो जाता है। परिवार और नौकरी के बीच में ये सामंजस्य बैठाना, अगर परिवार से साथ मिलता है तो ये एकदम आसान हो जाता है। सुरक्षा बल की नौकरी में कई बार परिवार के जो महत्वपूर्ण अवसर होते हैं उसमें भी हम लोग नहीं आ पाते हैं, तब भी एक परिवार का जो सहयोग होता है अगर वो मिलते रहता है तो सारा आसान हो जाता है
0: जी। सब कुछ आसान हो जाता है घर परिवार से आपको ये कहा जाए कि जाओ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करो और जाओ अपने कर्तव्यों को पूर्ण करो, क्योंकि हमारा सम्मान तुम्हारे सम्मान में है, क्योंकि जब जब तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओगे तब तब हम गर्व से कहेंगे कि हमारा बेटा जो है देश प्रेम में है और देश के लिए कार्यरत है। तो यही तो जज्बा है जो हमें हर वक्त अपनी ओर आकर्षित करता है, और कितने ही युवा ये चाहते हैं कि हम फोर्सेस ज्वाइन करें और देश का नाम ऊंचा करें। तो मिट्टी के रखवालों को हमारी ओर से सलाम है।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। सशस्त्र सीमा बल से इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इनकी यात्रा इन्हीं की जुबानी सुनने में जो सुखद आनंद प्राप्त हो रहा है ना जाने कितनों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन रहा है। बहुत सारे संदेश हम तक पहुँच रहे हैं, आप सभी के नाम हम जरूर लेंगे लेकिन इससे पहले इनकी यात्रा जिसको हम सुनने के लिए इतने ललायत हैं कहीं भी छूट न जाए, दिल चाहता है इनसे बार बार बहुत सारे प्रश्न किए जाएं। जितना हमें आपके बारे में पता लगा है कि आपको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई बार तैनात किया गया है, आपको तैयार किया गया है, कभी महसूस होता है कि अगर आपको ये कार्यभार ना सौंपे गए होते तो आप जो आज हैं वो आज ना होते।
1: जी, ऐसे क्षेत्रों में सबसे जरूरी होता है हमेशा सतर्क रहना। हमारी अपनी ट्रेनिंग और जो हमारे ऑफिसर्स के निर्देशों के अनुसार हम लोग काम करते हैं, ड्यूटी के लिए हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। टीम के साथ साथ एक टीम के भावना के रूप में काम करते हैं, टीम का कम्युनिकेशन एक दूसरे के प्रति ठीक रहना चाहिए और एरिया के बारे में जानकारी होना चाहिए जहाँ पर हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, तो कोई भी काम आसान हो जाता है।
0: जी, कोई भी काम आसान हो जाता है लेकिन आसानी से पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार करना होता है और आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, आपकी कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्यों का पालन करने की जो आप में गुण निहित हैं इसकी वजह से ही आपको शायद ऑपरेशन जोश के लिए भी चयनित किया गया, जहां पर आपने अपनी टीम के साथ मिलकर दमखम स्थापित किया और उस कहते हैं कि उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया।
1: जी, ये 8 जून की घटना है, 8 जून 2022 की घटना है। ये मेरे टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। ये बिहार राज्य के जमुई ज़िले की घटना है जिसमें हम एक ऐसे सफल ऑपरेशन के बारे में आज बात करेंगे जिसमें हमारी टीम ने एक हार्डकोर नक्सल को न्यूट्रलाइज किया था और उसमें भारी मात्रा में गोला बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद किया गया था।
0: जी,
1: ये सफलता

0: मेरी नहीं पूरी टीम की सफलता है, जिसमें आपसी तालमेल हो, सही समय पे जो मिली सूचना को परिणाम था कि हमने ये ऑपरेशन सफल किया। उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन, उसके बाद पूरी तैयारी के साथ टीम ने कार्रवाई की और नक्सल को न्यूट्रलाइज किया था। इस तरह के ऑपरेशन किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती है, एक पूरी टीम होती है, पूरी टीम का योगदान होता है इसमें। आसूचना मिलने प्राप्त करने से लेके ऑपरेशन को अंजाम देने तक एक सभी कार्मिकों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है और वो अपनी पूरी ईमानदारी और साहस के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया था। SSB इस ऑपरेशन के बाद जमुई ज़िले में बहुत सारे नक्सलियों ने अपने आप इस ऑपरेशन के बाद खुद ब खुद सरेंडर किया सुरक्षा बलों के सामने आकर।
1: उनके मन में इतना डर
0: इनके मन में डर भर बन गया था और जस्ट एक सप्ताह के अंदर ही जो ये ऑपरेशन होने के बाद बहुत सारे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों और पुलिस के सामने आके खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि SSB के महत्वपूर्ण योगदान के कारण जम्मू जिला आज पूर्णतः नक्सल फ्री घोषित हो चुका है। इसमें SSB का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर अपनी टीम को भी, सभी साथी कार्मिकों को, उनके साहस और मेहनत एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए बधाई देना चाहूँगा। सही समय पे सही कार्रवाई करना एक ऑपरेशन के लिए सबसे जरूरी होता है, जो हमारी टीम ने उसको किया।
1: जी, एक बात और पूछना चाहूंगी, जब इस तरह के ऑपरेशंस का आप हिस्सा बनते हैं, एक टीम का हिस्सा बनते हैं, तो निश्चित रूप से अपने सहकर्मियों से भी आप बहुत कुछ सीखते होंगे।
0: काफी कुछ सीखने को मिलता है। मैंने पहले भी बताया कि ये टीम को लेकर काम करने की पूरी टीम काम करती है, जिसमें हम लोग हमेशा कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो एक टीम के साथ काम करते हैं। इसमें किसी एक की जिम्मेवारी नहीं होती, सभी की अलग अलग जिम्मेवारियाँ बांटी हुई होती है और वो सभी मिलके इस काम को अंजाम देते हैं। एक सूचना मिलने से लेके ऑपरेशन करने तक सारी की जिम्मेदारियाँ अलग अलग होती है और जब ये ऑपरेशन सफल होता है तो वो सभी के लिए उतना ही गर्व का बात है जितना अगर मैं क्या कहूँ इसको, सभी के लिए गर्व की बात,
1: हर मेंबर के लिए, जितने भी मेंबर्स हैं। अच्छा, हर मेंबर को उसका कार्यभार सौंप दिया जाता होगा और ये कहा जाता होगा कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करने पर जिस तरह से कमांड दिया जाएगा आपको उसी वक्त डिसीजन लेकर कि आपको उसको सुचारू करना है, आप उसी वक्त अपनी बुद्धि से, अपनी कहते हैं कि हमारी बुद्धि जो है हमें निर्णय लेने में मदद करती है, कमांडर आपका आपको निर्देश देता है, उसके बाद आप तैयार हो जाते हैं उस काम को करने।
0: ग्राउंड में आने के बाद सभी को ऑन ग्राउंड के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, लेकिन पहले जो भी प्रशिक्षण मिला हुआ है उसको अपने निहित करते हुए और काम को आगे किया जाता है। हमेशा जो भी ऑपरेशन होता है तो सबसे पहले सभी का काम को बता दिया जाता है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, और सभी अपने अपने काम को बखूबी करते हैं और उसके कारण हमें सफलता मिलती है।
1: बहुत खूब। अच्छा, यहाँ पर आकर आपको लगता होगा जब आप ऑपरेशंस का हिस्सा बनते हैं और जैसा कि हमने कहा कि आप बहुत से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आपने कार्य भी किया है, तो जो प्रशिक्षण आपने हासिल किए हैं, जो आपको प्रशिक्षण दिए हैं सशस्त्र सीमा बल ने, वो आपको लगता होगा कि वो आपके साथ बहुत अच्छा हुआ कि आपको वो ट्रेनिंग मिली, नतीजतन आप आज इतने सारे ऑपरेशंस का हिस्सा बन रहे हैं।
0: ट्रेनिंग सबसे जरूरी है, जितना टफ ट्रेनिंग होगा उतना फायदा मिलेगा ग्राउंड में काम करने के लिए और कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा काम करेगा। ट्रेनिंग सबसे जरूरी चीज़ है, टफ जितना ट्रेनिंग होगा उतना फायदा हमको ग्राउंड में काम करने के लिए मिलेगा।
1: जी, और कहते हैं कि कुछ विपत्ति जो है ना बताकर आती है लेकिन कुछ अनदेखी होती है, उसके लिए आपको सशस्त्र सीमा बल किस तरह से तैयार करता है?
0: हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करके रखता है। फौज ऐसा ही है कि जो कठिन परिस्थिति जब भी आए तब भी एक फौजी खड़ा रहता है वहाँ पे, उसी के लिए फौज रहती ही है।
1: जी, जैसा कि हम ने सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आपको आपके ऑपरेशन जोश के लिए, जिसमें आपने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर उस नक्सली प्रभावित क्षेत्र को नेस्तनाबूद किया, और अगर हम गलत नहीं है तो जितने भी आर्म्स और एम्यूनेशन थे उनको भी आपने जब्त किया आखिर में, और आपको 2024 में गैलेंट्री पदक से भी नवाजा गया, वो अनुभूति किस तरह की थी? सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनना अपने आप में एक अलग

0: होती है, लेकिन सम्मान मिलना आपके कार्य के लिए वो उससे भी बड़ी बात। उस वक्त कैसा महसूस हुआ?
1: ये पल तो मेरे लिए गर्व और इमोशनल इमोशनल भी था। जब देश की सेवा करते हुए कोई सम्मान मिलता है तो बहुत खुशी भी होती है। इस सम्मान को केवल अपना सम्मान नहीं मानता हूँ, ये पूरी टीम का सम्मान है। और मेडल आगे आगे अपनी जिम्मेदारी को और बेहतर तरीक़ों से करने की
0: जी
1: प्रेरणा देता है, और आगे हम लोग भी और मेहनत से और लगन के साथ कार्य करते रहेंगे।
0: जी बिल्कुल आपने सही बात की कि जब मेडल प्राप्त होता है सुखद अनुभूति होती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आप अपने ऊपर और लेते हैं, और ये कहते हैं अपने आप से स्वयं से बात करते हैं और कहते हैं कि अगली बार इससे भी बेहतर कर दिखाएंगे, है ना, और जितनी भी जिम्मेदारियां मिलेंगी उनका भी निर्वाह करते हुए चलेंगे। मन में बात जरूर आती होगी।
1: हमेशा कोई भी ऑपरेशंस होता है तो उसकी बाद में उसकी समीक्षा होती है कि इस ऑपरेशन को और कितने बेहतर किया जा सके, तो आगे आगे नेक्स्ट ऑपरेशन में उसको और उससे बेहतर किया जा सकता है, और करते हैं हम लोग।
0: जी बहुत बढ़िया। अच्छा, गैलेंट्री पदक के अलावा भी आपको और कई सम्मान दिए हैं SSB ने, उनके बारे में भी हमें बताएं।
1: तो उनके अलावा बहुत सारे सम्मान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन मिलता है, जिसे हमारे डीजी महोदय के द्वारा भी डीजी सिल्वर डिश से नवाजा गया है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस में अगर ड्यूटी कर रहे थे वहाँ भी रिवॉर्ड्स मिले हैं, कमेंडेशन भी मिले हैं। हर सम्मान एक खुशी देता है और साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है कि और इससे बेहतर करना है कुछ।
0: जी इससे बेहतर करना है, और देश की, चाहे फौज की बात की जाए तो चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात हो चाहे वो बाहम सुरक्षा की बात हो, और हर फोर्स अपना अपना कार्य करता है। जो आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्यरत है वो आंतरिक करते हैं, जो बाहम के लिए जिम्मेदार है वो बाहम सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, देश, है ना। सिर्फ देश ही याद आता है और बस देश ही समझ में आता है, उसके अलावा कुछ और नहीं।
1: सबसे पहले देश है, देश के लिए कुछ भी करने के हो तैयार रहते हैं हम लोग।
0: जी बिल्कुल आपने ठीक बात कही, देश के लिए तो मर मिटने तक के लिए तैयार रहते हैं। जब अपने घरों से निकलते हैं और फौज ज्वाइन करते हैं, और फौज ज्वाइन करने के बाद तो जिस भी ऑपरेशन का हिस्सा बनते हैं तो कभी ये नहीं सोचते कि घर भी लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, और शायद यही आपकी जो कर्तव्य निष्ठा है, यही जो आपका प्रेम है देश के प्रति, हम देशवासियों को हमेशा ये प्रेरित करता है कि आप हमें जहां भी मिले हम आपको सलाम करें और कहें आप हैं तो हम हैं और आप नहीं तो हम नहीं।

0: और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ हैं सशस्त्र सीमा बल से इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार, जिनकी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं दिल में खूक उठ रही होगी आपकी, और आप भी ये सोच रहे होंगे कि हम भी फोर्सेस ज्वाइन करें और देश के प्रति अपने सम्मान को, हर कोई व्यक्ति ना यही चाहता है कि देश के लिए काश हम कुछ कर पाएं, और सेना ज्वाइन करना हर किसी के दिल में हुक जरूर मारता है। आज हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी से, इनकी यात्रा हमने इनकी जुबानी सुनी। शिव शंकर कुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं कि अलग अलग बटालियंस में आप तैनात रहे, आप अलग अलग बटालियंस का हिस्सा रहे, क्या कुछ कार्यभार आपको सौंपे गए और वो कार्यभार आपको कितने अच्छे लगे, वो तो आपकी मुस्कान से पता लग रहा है कि आपके लिए हर बटालियन दिल के करीब रही है और बहुत सारी यादें देखी गई है हर बटालियन, तो कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे अपनी बटालियन के बारे में?
1: मेरे लिए हर वाहिनी अपने अलग अलग यादें हैं, हर वाहिनी की अलग अलग यादें हैं, वहाँ पे काम करने वाले साथी जो भी रहते हैं वो एक फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, हम अपना सारा सुख दुख जो भी है उस के इर्द गिर्द ही बुनते हैं, हम एक टीम की तरह एक टीम भावना के साथ काम करते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी जो भी कार्य किए गए हैं वो साथियों के साथ बिताए हुए

0: छोटे छोटे पल हमेशा याद रहते रहते हैं। मैंने पहले ही बताया कि हमने सभी बॉर्डर पे काम किया है। इंडो भूटान बॉर्डर सबसे पहले हमने किया, इंडो भूटान बॉर्डर का सीनेरियो अलग, फिर इंडो नेपाल बॉर्डर पे आया, इंडो नेपाल बॉर्डर का भी अलग ड्यूटी। उसके बाद हमने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में काम किया है 16 बटालियन में, जिससे हमें बहुत बड़ी सफलता भी मिली थी वहाँ पे। इसके बाद अभी हम पूरी तरह से ऑफिस ड्यूटी में है, गैंगटोक में पोस्टेड है, तो सारा काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसी ड्यूटी के दौरान।
1: जी, ये बहुत प्यारी बात होती है कि जब आपको अलग अलग ऑपरेशन, साथ ही साथ अलग अलग तरह के कार्यभार संभालने का मौका मिलता है अपने कार्यकाल में, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। आप फोर्सेस को उतने अच्छी तरह से जान पाते हैं कि हमारी जो फोर्सेस है क्या कुछ करती हैं, कैसे करती हैं, और यही शायद बहुत खूबसूरत बात होती है। अच्छा, ये बताइए कि हर बटालियन या हर जब जिस बटालियन में आप रहे हैं, 3-3 साल के अंतराल के बाद आपकी पोस्टिंग बदली होगी, एक बटालियन छोड़ने के बाद, एक पोस्टिंग छोड़ने के बाद कितना दुख होता है?
0: ये काफ़ी दुख होता है, कभी लगता ही नहीं कि वहाँ से निकल के दूसरे जगह चले जाए। एक फैमिली बन जाती है, लगता है कि यहीं पे अपनी पूरी नौकरी कर ले, यहीं पे अपनी ड्यूटी कर ले, लेकिन एक प्रोसेस है और उसको हमको मानना पड़ता है। जब ऊपर से आदेश आ गया कि आपकी पोस्टिंग दूसरे जगह कर दी गई है, वो बिना हिचक के हम लोग अपना बैग पैक करते हैं और चल देते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए।
1: बात है, जिस तरह जो भी निर्देश दिया जाता है उसी के तहत आप अपने आप को मुस्तैद करते हैं, फिर नई जगह में पहुंचते हैं और फिर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब किसी टीम में रहते हैं तो आपसी प्रेम तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से आप जब उस यूनिट को, उस पोस्टिंग को छोड़ते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन वो 3 साल का समय कहते हैं कि बहुत आत्मीयता लेकर आता है, सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने यूनिट के सहकर्मियों के साथ आप साझा करते हैं। पार्टी वार्टी करते हैं?
0: पार्टियां होते रहती है।
1: अच्छा,
0: ऐसा कुछ नहीं, मैंने पहले भी बताया कि फौज एक लाइफ देती है, आप उस लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। ड्यूटी है और वो लाइफ भी देती है जो जिसके लिए हम लोग भर्ती होते हैं।
1: जी, अच्छा, आप कुछ देर पहले मुझसे कह रहे थे कि अगर आप यूनिट में ना भी हों, अपने घर गए हों और आपके घर में कोई खुशी का माहौल हो तो वो खुशी आपकी यूनिट में भी मना ली जाती है?
0: फौज में ये परंपरा भी है कि अगर घर में खुशी है तो फोन कर दो और यहाँ पे पार्टी पहले हो जाती
1: अरे
0: है।
1: अरे वाह, क्या बात है। मतलब आपके जितने भी दोस्त है वहां पर अपने हिस्से की पार्टी वहां कर लेते हैं, आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। जब आपके साथ है, यूनिट में है, तब भी एंजॉय कर रही हैं, तब भी मना रही हैं, एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रही हैं, और अगर दूर भी हैं बस बताने भर से वो आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं।
0: फौज की ड्यूटी 24 घंटे की ड्यूटी है, हमेशा सुख दुख उन्हीं के साथ बांट के रहना है, तो उनके लिए ही सारा चीज समर्पित रहता है, हम अपनी टीम के लिए ही हमेशा समर्पित रहता है।
1: अच्छा, ये बताइए कि जब घर आप जाते हैं तो घर से वापस जब अपने यूनिट जाते होंगे तो माँ, घर परिवार वाले कुछ डब्बे खाने पीने का सामान देते होंगे, आपके साथ बंद कर जरूर जाता होगा?
0: वो सबके लिए होता है,
1: वो सबके लिए होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक महीने का सामान है तो एक महीने में खत्म होना है, या वो उससे पहले खत्म हो जाता है?
0: नहीं, वो सबके लिए होता है, जो टीम है हमारी उस सबके लिए होता है।
1: हाँ, तो मुझे लगता है कि जाते साथ ही सब डब्बे खाली हो जाते होंगे।
0: जरूर जरूर,
1: और बड़ी चाह होती है, अरे घर से आयो ये बताओ क्या लेकर आये हो,
0: हमेशा रहती है चाहत रहती है कि कुछ तो लेकर आया होगा।
1: अच्छा, बताइए, वैसे तो आप बहुत ज्यादा अपने काम में व्यस्त रहते होंगे, लेकिन आपके साथ ऐसा कौन है जो साथ चलता है, जिसको आप ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कोई जिंदगी में है, जिससे बात कर रहे हैं, जो चल रहा है साथ, कोई है ऐसा?
0: एक टीम रहता है, वो हमेशा हमारे साथ चलती है।
1: और रेडियो?
0: रेडियो भी है, वो रेडियो एक लाइफ का हिस्सा है, वो हमेशा आपको चलते रहता है, साथ साथ चलते रहता है, दिन दिनचर्या में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो आपको बताते रहती है। हाँ, हमेशा
1: ऐसा महसूस होता है किसी की आवाज कानों तक पहुंच रही है, लेकिन आप व्यस्त हैं, अपने काम में मग्न हैं, लेकिन अपना साथी, वो साथी तो है ही, सहकर्मी तो है ही, लेकिन रेडियो भी साथ साथ है। अच्छी, बताइए कि त्योहार कैसे मनाते हैं आप, सारे त्योहार मनाते हैं वहाँ?
0: अगर हम यूनिट में मौजूद है तो त्योहार हमेशा मनता है और एकदम धूमधाम से सेलिब्रेट के साथ सभी चीज होते के साथ मनता है। अगर अगर घर पे नहीं है, अगर यूनिट में है तो यूनिट में बहुत धूमधाम से त्योहार मनता है, जिससे किसी को ये मलाल ना रहे कि मैं इस बार घर नहीं गया हूँ। हाँ। और बहुत धूमधाम से

0: बनता है
1: जी। और खेलने का शौक कितना है आपको?
0: हम लोग उतने बड़े खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन खेलते हैं, सभी गेम खेलते हैं, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, सभी खेल में रुचि है और सब समय मिलता है, खेलते रहते हैं हम लोग।
1: और खेल कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति और आपके विकास, आपके शारीरिक विकास में एक अहम भूमिका निभाता है, जो हमेशा आपको सजीव रखता है।
0: फौज की नौकरी करने के लिए सबसे जरूरी है फिटनेस, और अगर आप खेल अपने नियमित हिस्सा रखते हैं तो आपकी फिटनेस भी बनी रहती है।
1: जी बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और आपको इतने सारे दोस्तों ने सलाम भेजा है, जय हिंद सर लिखकर भेजा है यहाँ पर, दोस्त ने अपना नाम नहीं लिखा, माफी चाहूंगी दोस्त, नाम लिखते तो शायद आसान हो जाता मेरे लिए पढ़ना। संदेश टू सोल्जर्स का नियमित श्रोता हूँ। तिरुचिरापल्ली विजय कुमार ने आपको नमस्कार भेजा है, और सेना नायक इंस्पेक्टर शिव शंकर जी को जय हिंद वंदे मातरम इन्होंने कहा है, इनकी राष्ट्र सेवा के लिए हमारा हृदय पूर्ण नमस्कार आप स्वीकार करें। आप
0: सभी को जय हिंद मेरा।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों संदेश भेजने के लिए। अच्छा यहाँ पर एक संदेश आया है, नाम इन्होंने नहीं लिखा पर ये कहा है कि अगर हम फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे, हम जब डिग्निटी की बात होती है, साहस की बात होती है, समर्पण की बात होती है, ये आम जनमानस को भी हम कैसे प्रेरित करें कि वो भी अपने जीवन में आत्मसात करें, कैसे उस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को अपनी जिंदगियों में शामिल करें।
0: डिसिप्लिन अपने अंदर से आता है, डिसिप्लिन के लिए कहीं से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को अनुशासित रखिए, अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगी।
1: और वैसे भी हमारे फौजी अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, जब भी हम इनकी गाथा सुनते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से जब आप घर घर तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन, डिसिप्लिन सब हमें मिल जाता है। संदेश हमारे पास आया है यहाँ पे यश शिंदे का, और इनको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, जय भारत वंदे मातरम इन्होंने लिख भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। जय हिंद लिख भेजा है मोनू सेठ ने, और इन्होंने लिखा है, मत देख लेना निगाह उठाकर मेरे वतन की तरफ, वरना वक्त भी तुम्हारा होगा, जगह भी तुम्हारी होगी, बस तिरंगा हमारा होगा। बहुत खूब। अगला संदेश हम तक पहुंचा है यहाँ पर शबनम का, बीके कॉलोनी से, और बीके दत्त कॉलोनी से, और ये कह रही है कि जब आपको प्रथम ड्यूटी मिली और ये इन्हीं का गांव है जहां आपको मिली, और ये बहुत ज्यादा खुश हैं, और बहुत ज्यादा खुश हैं कि आप गैंगटॉक से सीधा यहाँ आकाशवाणी स्टूडियोज पहुंचे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर अदा कर रहे हैं सभी दोस्त। मंसूर का यहाँ पर संदेश आया, जय हिंद। यहाँ पर पीयूष ने संदेश भेजा है, चेतन पटेरिया ने ग्वालियर से संदेश भेजा है, यहाँ पर समय कम है, संदेश पूरे नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन हम शिवशंकर कुमार जी को आपके संदेशों से जरूर अवगत कराएंगे। संदेश भेजने वालों में हमारे पास बिजनौर से संदेश है, और ये है चरण कुमार का, और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त संदेश भेजने का। शिव शंकर कुमार जी संदेश भेजा है इन्होंने, शिव पांडे लखनऊ से संदेश भेज रहे हैं, मोनिश इद्रिस ने बिलासपुर से संदेश भेजा है। संदेश भेजने वालों में बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, हम शुक्रिया देना चाहते हैं आपका। नितिश कुमार ने हमें संदेश भेजा है, देखिए आपसे प्रेम करने वालों की फहरिस्त बहुत बड़ी है, और हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं इस बात को जानकर कि हमारे फौजियों से कितना प्रेम किया जाता है। अनिल कुमार का चंपावत उत्तराखंड से संदेश आया है, संदेश भेजने वालों में पंडित स्वार्षद संदेश भेज रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। संदेश भेजने वालों में से एक क्लास 12 के स्टूडेंट भी हैं जो एनडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अजय अहिरवार ने संदेश हमें भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आप सभी का संदेश भेजने के लिए। और इंस्पेक्टर शिवशंकर कुमार जी जो SSP में कार्यरत हैं, आजकल गैंगटॉक में हैं, आपने जिस तरह से व्याख्या की और आप SSB का नाम ऊंचा कर रहे हैं, आप देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। संदेश भेजने वालों में और भी कई दोस्त हैं, KKS रायपुर छत्तीसगढ़ से संदेश आया है यहाँ पर, दोस्त आपका नाम है KKS रायपुर CG इन्होंने लिखा है, क्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महोदय, आप आम जनमानस में सैनिक जैसी कर्तव्य निष्ठा और श्रेष्ठ नागरिक बनने की प्रेरणा कैसे दी जा सकती है, इस पर हमने भी बात की है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अगर किसी का नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पाई हूँ तो आप सभी से माफी चाहूंगी। अवधेश कुमार का औरंगाबाद बिहार से संदेश है, सुमन कर्माकर का सोनितपुर आसम से संदेश है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश हम तक पहुंचे इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं, और धन्यवाद देना चाहते हैं इंस्पेक्टर शिव कुमार जी का जो कार्यरत हैं गैंगटॉक में, और सशस्त्र सीमा बल

0: में कार्यरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज में आने के लिए और हमें SSB से जुड़ी हुई इतनी सारी बातों से अवगत कराने के लिए।
1: धन्यवाद सभी को, सभी को जय हिंद। मैं देश के युवाओं से भी इतना कहना चाहूँगा, अपने सपनों पर भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सभी जो भी देश के युवा है, देश के सेवा और सुरक्षा बल में आना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपने फिटनेस को और अनुशासन को बनाए रखिए, आप जरूर चयनित होइएगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सबके लिए कि अपनी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी के साथ काम करते रहिए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान की बात है। सभी को जय हिंद।
0: जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी SSB से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होने के लिए और इतनी सारी बातें साझा करने के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में अल्पसंख्यक कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत नई रोशनी और सीखो और कमाओ योजना पर चर्चा। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे 2006 में पुनर्गठित किया गया था। 15 सूत्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र द्वारा अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदाय के वंचित और कमजोर वर्गों को समान अवसर प्राप्त हो। इस कार्यक्रम के व्यापक उद्देश्य शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना है, मौजूदा और नई योजनाओं, स्वरोजगार के लिए बेहतर ऋण सहायता और राज्य एवं केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के माध्यम से आर्थिक गतिविधियां और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। अवसंरचना विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करके उनके जीवन स्तर में सुधार करना है और सांप्रदायिक असमंजस्य और हिंसा की रोकथाम एवं नियंत्रण करना है। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा पूरे देश में अधिसूचित अल्पसंख्यकों जैसे कि ईसाई, सिख, जैन, मुस्लिम, बौद्ध और पारसी लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत नई रोशनी योजना और सीखो और कमाओ योजना पर चर्चा। नई रोशनी योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को नेतृत्व क्षमता और सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण देना है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और जागरूकता बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के प्रशिक्षण में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, वित्तीय साक्षरता, महिला अधिकार, डिजिटल साक्षरता जैसे विषय शामिल किए जाते हैं। इसका व्यापक उद्देश्य महिलाओं को अपने परिवार और समुदाय में निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाना है। सीखो और कमाओ योजना में हम चर्चा करते हैं कि यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की कौशल विकास योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार के योग्य बनाना है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने का इसमें प्रयास किया जाता है और प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट है। हालिया नीतिगत बदलावों के तहत सी

रखो और कमाओ योजना को अब प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना के एक मुख्य घटक के रूप में एकीकृत कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में लक्षित समूह मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय के युवा हैं। आयु सीमा 14 से 45 वर्ष के युवा हैं। इस योजना के पात्र वही होते हैं जिनकी उम्र 14 से 45 वर्ष होती है। प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को 3,000 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड डायरेक्ट बेसिफिक ट्रांसफर यानी कि DBT सुनिश्चित करा जाता है। इस प्रशिक्षण में देने वाली एजेंसियों के लिए न्यूनतम 75% प्लेसमेंट सुनिश्चित होता है। महिला सशक्तिकरण योजना में कुल लक्ष्यों का 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होता है और वास्तविक स्तर पर महिला भागीदारी 55% से भी अधिक रहती है।

अभी आप सुन रहे थे मेरा सपना उन्नत भारत, क्रम में अल्पसंख्यक कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत नई रोशनी और सीखो और कमाओ योजना पर चर्चा। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5:10 हो रहे हैं। आइए अब डालते हैं एक नज़र आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम पर। पहले एक नज़र आज के शेष कार्यक्रम पर। आज रात्रि 9:30 पर कंट्री वाइड और कंट्री साइट्स का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 6:50 पर प्रस्तुत करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी, जिसका प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 5:15 पर कार्यक्रम युववाणी में युवा श्रोताओं को सुनवाएंगे कुछ खास है आज में सद्भावना दिवस पर चर्चा। शाम 6:05 पर किसान भाइयों को सुनवाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत में पशु दूते समय सावधानी पर चर्चा, और साथ ही सुनवाएंगे डॉक्टर यशपाल सिंह से नरेश पाल सिंह की बातचीत। विषय रहेगा मूली, गाजर, सलजम की अगेती खेती। 7:32 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में सुनवाएंगे साकिब अक्कासी और साथियों की आवाज में कव्वाली। रात्रि 10:00 आपको सुनवाएंगे नाटक स्वयं साक्षी। लेखक रहेंगे डॉक्टर विनय, निर्देशक रहेंगे विश्व प्रकाश दीक्षित यानी कि बटुक। प्रस्तुति सहायक रहेंगे सुदर्शन कुमार, कृष्ण कुमार रलूरा और प्रतिभागी कलाकार रहेंगे अरुणा कपूर, विष्णु नारायण शर्मा, नीरज शर्मा, राजकुमारी प्रसाद, नरेश कौशिक और वीणा गौड़। रात्रि 10:30 पर समय रहेगा व्हाट्सएप मैसेज और पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम की। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम पर। कल प्रातः 6:40 पर समय रहेगा चिंतन का। प्रातः 7:05 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में जानकारी का विषय रहेगा खुश रहिए स्वस्थ रहिए। 7:10 पर खेती की बातें कार्यक्रम में देंगे जानकारी इस समय मौनवंशों की देखभाल पर। 7:31 पर समय रहेगा सूरज के साथ साथ का। 9:25 पर धरती गाती है कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे योगेश कुमारी और शालू सक्सेना की आवाज में रुहेलखंडी लोकगीत। 10:30 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता। विषय रहेगा अंतरिक्ष विज्ञान की मानव जीवन में उपयोगिता। 11:30 पर प्रस्तुत करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 12:00 समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया का। 12:15 पर शास्त्रीय संगीत में सुनवाएंगे श्याम गोपी राम चौधरी का सरोद वादन, राग रहेगा मधुवंती। 1:15 पर घर संसार का

कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। 1:45 पर कार्यक्रम लोकधारा में सुनवाएंगे भागीरथी देवी की आवाज में गढ़वाली लोकगीत। 2:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम में फिल्मी कव्वालियां। शाम 5 बजे मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में आप सुनेंगे उड़ान योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना पर चर्चा। 5:15 पर कार्यक्रम युववाणी में युवा श्रोता सुनेंगे कुछ खास है आज में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर चर्चा, और साथ ही सुनेंगे आपका सितारा क्रम में अलीना की जोरे से बातचीत। 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में आपको सुनवाएंगे गन्ना किसान भाइयों की गन्ना संबंधी समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो गन्ना किसान। 6:45 पर कार्यक्रम कानूनी सलाह में सुनवाएंगे भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय रहेगा मृत्यु भोज निषेध अधिनियम। ये थी जानकारी आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: विश यू अ वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त उज्मा।
1: हेलो दोस्तों, उज्मा और आप सभी के साथ प्रोग्राम में हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी साथी शिवानी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना फेवरेट प्रोग्राम युववाणी भी सुन रहे होंगे।
0: शिवानी, सुनना तो बनता है ना भाई, आज हमारे दोस्तों का पसंदीदा सेगमेंट जो है, यानी कि सेगमेंट नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर।
1: बिल्कुल, और इसमें दोस्तों आप सुनेंगे एक से बढ़कर एक नॉन फिल्मी सॉन्ग।
0: और इसी के साथ साथ आज हमारे दोस्तों को हम सुनवाएंगे लव स्टोरी का चौथा भाग, जिसमें वो जानेंगे कि आखिर इस प्रेम कहानी में अब कौन सा मोड़ आने वाला है।
1: लेकिन उससे पहले उज्मा, हमारे दोस्तों को करना होगा एक छोटा सा काम।
0: काम? कैसा काम?
1: अरे उज्मा, मेरा मतलब है कि पहले हम अपने दोस्तों से आज का बूझो तो जाने का सवाल उनसे पूछेंगे और वो उसका जवाब देंगे हमें।
0: बिल्कुल, और हमारा दोस्तों आपसे आज का बूझो तो जाने का सवाल है, हाल ही में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का शुभारंभ कहाँ हुआ था?
1: तो उसे उम्मीद है आप सभी ने एक क्वेश्चन सुन लिया होगा, और अब इसका सही जवाब आपको देना है हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर।
0: और सही जवाब देने वालों के नामों को हम करेंगे प्रोग्राम में शामिल।
1: तो जब तक आप हमें भेजते हैं अपना सही जवाब,
0: तब तक हम आपको ले चलते हैं नॉन फिल्मी चार्टबस्टर के इस पहले और खूबसूरत से गीत की ओर।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
3: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
2: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
4: और डोज में क्या है?
3: डोज में है मजा।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
4: यार सुरेश, एक बात ना मुझे बड़ी परेशान कर रही है।
5: क्या बात परेशान कर गई भाई तुझे?
4: यार देख, जब पापा पीटते हैं ना, पिटता है ना, तू भी देख।
5: हाँ हाँ भाई।
4: तो तूने मम्मी को सुना है वो क्या कहती है? अरे रहने दीजिए, लड़का बड़ा हो गया है।
5: हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है तू। और पता है तुझे, और जब मम्मी खुद पीटती है तो बोलती है, कब बड़ा होगा रे तू।
4: बिल्कुल
2: जी हाँ, मजा आ गया।
4: वेलकम बैक दोस्तों, चलते हैं अपने अगले एक और सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है कुछ खास है आज।
5: दोस्तों आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ये दिन एक दूसरे के करीब लाने का संदेश भी देता है। दोस्तों हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारी सोच और परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जब बात इंसानियत की आती है तो हम सब एक हैं।
4: जी हाँ दोस्तों, और इसी खूबसूरत सोच को समर्पित है आज का दिन, सद्भावना दिवस।

0: सद्भावना दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है।
1: दोस्तों, सद्भावनाओं का मतलब है मन में किसी के लिए भी भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और अपनापन। जी हाँ दोस्तों, दूसरों के प्रति प्रेम, सम्मान, सहयोग और भाईचारे की भावना रखना।
0: दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती ही उसकी विविधता है, यानी डाइवर्सिटी है। यहाँ अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, फिर भी हम सब एक ही देश के हिस्सा हैं।
1: दोस्तों, कभी सोचा है किसी को दिया हुआ एक छोटा सा सम्मान, एक मुस्कान या मदद का एक हाथ किसी की पूरी जिंदगी में उम्मीद जगा सकता है। जैसे किसी अनजान व्यक्ति को सड़क पार कराने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना, या किसी परेशान इंसान से सिर्फ इतना कहना कि चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ।
0: बिल्कुल, जैसे किसी से नाराज होने के बावजूद भी उसके सम्मान को बनाए रखना, यही तो है दोस्तों सद्भावना। और दोस्तों, यही छोटी छोटी कोशिशें बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
1: तो दोस्तों, जरूरतमंदों की मदद कीजिए और सभी का सम्मान कीजिए। और हाँ दोस्तों, सद्भावना सिर्फ एक दिन मनाने की चीज नहीं है, ये तो हर दिन जीने की एक सोच है।
0: तो दोस्तों, ये तो बात की हमने कुछ खास है आज में सद्भावना दिवस के बारे में। अब आइए आपको लेकर चलते हैं आप ही की ओर।
1: मतलब कि दोस्तों, हमने अभी आपसे पूछा था एक
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: सवाल,
0: अभी अभी
1: हाँ, और उसमें हमें उन दोस्तों के जवाब भी आने लगे हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो देख लेते हैं कि किन किन दोस्तों के हमें जवाब आए हैं। तो ये हमें मिला है, सवाल देख लेते हैं सबसे पहले।
0: बिल्कुल, हमारा सवाल था कि दोस्तों,
1: जगन्नाथपुरी की
0: बिल्कुल
1: यात्रा कहाँ से शुरू होती है? तो इसका सही जवाब देने वालों के नाम है नानक खन्ना, सुदर्शन शाह, सुरेश खुराना और जॉन डी क्रेस्टो, नानक कुमार ठाकुर, हीरावणी वर्मा, नदीम बाकी, वीरेंद्र, राष्ट्रपाल गजभिये, आकाश, मोहम्मद रफीक पवार, दुर्गाराम साहू, बीआई धाकड़ और परवीन चौहान।
0: तो चलिए दोस्तों, अब हमारे दोस्तों ने सवाल का सही जवाब दिया भी है, तो अब हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके नामों को प्रोग्राम में शामिल करें, तो हमारे सवाल का सही जवाब हमारे फेसबुक अकाउंट आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। और दोस्तों ने दिए हैं सही जवाब, तो उनके लिए बनता है एक प्यारा सा गीत। तो चलिए चलते हैं अपने अगले गीत की ओर।

0: ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा। सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना।
4: RBI कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
7: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
8: हो जाओगे हंस-हंस कर लोट कोट,
7: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
9: और डोज में क्या है?
8: डोज में है मजा।
7: जी हाँ मजा आ गया।
9: यार राजू मैं एक उलझन में हूँ। यार
10: उलझन में? और तू अबे कैसी बात कर रहा है, चल अच्छा बता क्या उलझन है।
9: यार तुझे पता है मैंने अपनी वाइफ को ना 12th पास करवा दी।
10: बहुत अच्छी बात है।
9: और देख अब BA भी करवा दिया और उसके बाद MA भी करवा दिया।
10: अरे वाह तू तो बड़ा महान है।
9: और तो और भाई अब तो उसकी सरकारी जॉब भी लगवा दी मैंने।
10: अरे भाई तू बहुत ही महान आत्मा है, तेरे तो क्या ही कहने। लेकिन ये तो बता इसमें उलझन कौन सी है।
9: यार अब समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूँ मैं।
10: अब क्या करूँ भाई, तूने एक काम कर, एक अच्छा सा लड़का और देख ले और उसकी शादी भी करा दे।
7: हाँ मजा आ गया।
11: तो दोस्तों अब वक्त है लव स्टोरी का। बिल्कुल
9: हाँ जी हाँ, प्रेम कहानी का।
11: तो चलिए चलते हैं लव स्टोरी की ओर। और आज आप सुनेंगे लव स्टोरी, एक मुलाकात जो जिंदगी बन गई, जिसका आज आप सुनेंगे एपिसोड नंबर 4।
12: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे कि
13: धड़कने लगे,
12: है अजब सी चाहत का असर, दिल तड़पने लगे,
13: हाँ तड़पने लगे।
12: आप सुन

0: है सेगमेंट लव स्टोरीज।
1: दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कुणाल को एक अनजान कॉल आता है जो उसे हॉस्पिटल पहुंचने को कहता है। हॉस्पिटल पहुंचकर कुणाल को पता चलता है कि जानवी किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि एक सीरियस इलनेस से लड़ रही है। डॉक्टर कुणाल को बताते हैं कि जानवी को हार्ट डिजीज है और उसके दिल का ऑपरेशन होना है। शुरू में उसने सोचा था कि दवाइयों से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब एक बड़ा मेडिकल प्रोसीजर जरूरी है। इसलिए जानवी ने किसी को अपने करीब नहीं आने दिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसके जाने का दर्द किसी और को ना झेलना पड़े। ये सच जानने के बाद कुणाल फैसला करता है कि वो जानवी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसे जानवी की कही बातें याद आने लगती हैं। मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कुणाल को अब हर बात का मतलब समझ आने लगा था। वो हॉस्पिटल के मंदिर के सामने जाता है और जानवी के ठीक होने की दुआ करता है। जब वो उठकर जा रहा होता है तभी उसकी नजर जानवी के बैग पर पड़ती है। बैग के अंदर एक डायरी थी। कुणाल ने कांपते हाथों से उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, कुणाल, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हें सब कुछ बता नहीं पाई। मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं भागी क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। मैं दूर इसलिए रही क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी थी। कुणाल अभी ये पढ़ ही रहा होता है कि उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। कुणाल दौड़कर उनके पास जाता है और पूछता है, डॉक्टर, जानवी अब ठीक तो है ना? दोस्तों, क्या कुणाल जानवी को हमेशा के लिए खो देगा या दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे? ये जानने के लिए सुनना ना भूलें इस कहानी का आखिरी एपिसोड।

0: तो दोस्तों हमारे और भी दोस्त हैं जो मैसेजेस देने में हम जिनके नाम शामिल करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने हमें भी बिल्कुल सही आंसर दिया है ना शिवानी? और दोस्तों हमारा सवाल था, हाल ही में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का शुभारंभ कहाँ हुआ था? और जिसका सही जवाब है पुरी जगन्नाथ उड़ीसा।
1: जी हाँ दोस्तों, हर साल ये भव्य रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में आयोजित होती है। वर्ष 2026 में रथ यात्रा का शुभारंभ 16 जुलाई को हुआ। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ भव्य रथों पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। इस यात्रा की सबसे खास बात दोस्तों ये है कि भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकल कर भक्तों के बीच आते हैं। रथ यात्रा पुरी की श्री जगन्नाथ मंदिर से निकल कर गुंडीचा मंदिर तक जाती है।
0: बिल्कुल। और अब हम दोस्तों अपने उन दोस्तों का नाम बताते हैं जिन्होंने हमें दिया है सवाल का बिल्कुल सही जवाब। और सही जवाब देने वालों के नाम हैं रतनदीप आर्या, प्रवीण चौहान, कमल सिंह, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, ताज अंसारी, मोहम्मद जाहिद अली, मीरा सिंह, और हमारे अगले दोस्त हैं मसरूर हसन, शेख अहमद इदरीसी, अनिल विनोचा, निसार सलमानी, बबलेश पवार, जगदीश धाकड़ और उमेश कुमार। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमारे और भी दोस्त हमें बहुत जल्दी अपना बिल्कुल सही जवाब देंगे। तो जब तक हमारे और दोस्त हमें देते हैं सवाल का सही जवाब, तब तक हम आपको ले चलते हैं सेगमेंट के अगले एक और खूबसूरत और प्यारे से गीत की ओर।

दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें कभी नहीं जाती। वो अपनी मौजूदगी के कुछ ऐसे निशा छोड़ जाते हैं जो वक्त के साथ भी दिल से मिटते नहीं। कभी कोई धुन उन यादों को फिर से जिंदा कर देती है, और कभी लगता है जैसे बीता हुआ कोई खूबसूरत पल फिर हमारे सामने आकर ठहर गया हो। तो आइए ले चलते हैं आपको ऐसे ही एक प्यारे और खूबसूरत से गीत की ओर।

0: दोस्तों, हमारे जो दोस्त हैं वो हमें लगातार सवाल का सही जवाब दे रहे हैं, तो चलिए उनका नाम भी शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। तो हमारे जो दोस्त हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है, उनमें नाम शामिल है हिमकेश्वर साहू, तुलसी मुकेश, धर्मेंद्र छीपा, सुरेश गंगनेजा, दीपेश वर्मा, सुभाष, और हमारे अगले साथी हैं जाकिर मंसूरी, आफ्ताब अंसारी, राजेश वर्मा, हिमांशु गुप्ता, गजानन येले, इरशाद अहमद, सदाशिव थोरात, मुजफ्फर अली खान, सत्येंद्र, और हमारे अगले साथी हैं मिसबा शमसी, शाहरुन नूर अंसारी, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, शकील अहमद इदरीसी, गुरमीत सिंह मीता, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, मुकेश कश्यप।
1: जी हाँ दोस्तों, ये तो थे हमारे सही जवाब देने वाले साथियों के नाम। दोस्तों, कुछ नज़रें मिलती हैं और वक्त वहीं ठहर जाता है। कुछ एहसास कहे नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। और जब वही एहसास किसी खूबसूरत धुन में ढल जाए तो बन जाता है एक बहुत प्यारा सा गाना जो सीधे दिल तक पहुँचता है। जी हाँ, मोहब्बत की शुरुआत अक्सर शब्दों से नहीं, नज़रों से होती है। एक नज़र, एक मुस्कान और दिल में हजार

0: हजारों सवाल, तो आज उन्हीं खूबसूरत एहसासों के नाम है ये प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल, कभी कभी किसी की आंखों में ऐसा जादू होता है कि दिल को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस नजरें मिलती हैं और कहानी शुरू हो जाती है। तो चलिए अपनी शाम के इस आखिरी गीत को बनाते हैं और भी खूबसूरत, और शामिल करते हैं, और ये जो गीत है करते हैं आपके नाम।

0: दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें जरूर बताइएगा खत के जरिए, और खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युवाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 2467 63,
1: और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए, हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानियाँ, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर आप सुन सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है कि आपको और क्या करना है, आप सभी को करना है लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो और सब्सक्राइब। और अब अपनी साथी उज्मा

0: अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति का गठन किया है। ये समिति दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच करेगी। समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शरिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें नहीं हटाया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 15 सितम्बर को होगी। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्र की प्रगति, विकास और हितों से जुड़े साझा मुद्दों तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोष, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में सहकारी संघवाद पर बल दिया गया। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, मेक इन इंडिया के अंतर्गत रक्षा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और आपसी विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
2: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित है। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा प्रदान करता है। 2037 तक

0: विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को लोगों के लिए विश्व स्तरीय समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को आज देश का 23वां राष्ट्रपति चुन लिया गया। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाति संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया है। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व कप चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिन एवानागा और की नाकाशिकी को लगातार गेम में 21-16 21-12 से हराया। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को चीन की गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से 16-21 5-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया नरेश फैल सिंह की राम राम। और किसान भाइयों कैसे हैं आप लोग? भैया देखिए आप राजी खुशी होंगे, और आपका जो सिंचाई का काम है ना वो बहुत अच्छा चल रहा है आजकल, क्योंकि ऊपर वाला मेहरबान है और भाई हमारे किसान भाइयों की सिंचाई बड़ी भली भांति हो रही है। और जैसा कह रहे थे कि भाई इस बार सूखा पड़ेगा, वैसा हमारे क्षेत्र में कोई स्थिति नज़र नहीं आती। तो भाई हमारी मुंजी की और जो हमारी फसल है गन्ने की, उसे फ़ायदा भी है। गन्ने की फसल में जैसे पोका बोइंग रोग आता है तो वर्षा से वो रोग भी दूर हो जाता है और हमारी फसल इस रोग से उबर जाती है। और भैया कहीं कहीं जब ज़्यादा जलाक्रांति आती है और बहुत से खेत ऐसे हैं कि उनका पानी बाहर नहीं निकलता, तो वहाँ पर हमारी फसल पर कुप्रभाव पड़ता है, यानी कि हमारी फसल की बढ़वा रुक जाती है। और यहाँ तक कि हमारी गन्ने की फसल यदि ज़्यादा दिन तक पानी भरा रहे तो भैया उन खेतों में गन्ने की फसल पीली भी पड़ सकती है और ख़राब भी हो सकती है। खैर भाई ये तो जो है ऊपर वाले की मर्जी है, और जो प्रकृति हमें जिस हाल में रखेगी उस हाल में रहना पड़ेगा। लेकिन भाई अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पशु के बारे में, क्योंकि हमारी खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी बहुत ज़रूरी होता है, और पशुपालन खेती बाड़ी के बिना अधूरा है, यानी कि खेती बाड़ी ही पशुपालन के बिना अधूरी है, और ये एक दूसरे के पूरक व्यवसाय माने जाते हैं। तो भैया यदि पशुपालन में हमारे किसान भाई दूध दूहने वाले पशु रखते हैं, यानी कि जिनका हम दूध बेचते हैं, डेयरी उद्योग करते हैं, तो भाई इसके साथ साथ हमारे जो रोज़गार है, हमें आमदनी का स्रोत जो होता है, उसके साथ साथ हमारे जो खेतों में कार्बनिक खाद की मात्रा की आवश्यकता होती है, कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है, उसके लिए हमारे पशु गोबर कर देते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे पशु जो है हमारे खेती के कर्णधार माने जाते हैं। अब बात करते हैं हम जो हमारे पशु हैं भैया, उनको हम दोहते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो चर्चा इस बात पर करने से पहले हम ये बता दें कि भाई जो हमारे किसान भाई दुधारू पशु रखते हैं, तो दुधारू पशु ऐसे होने चाहिए जो अच्छी नस्ल के हों, और अच्छी नस्ल के पशु यदि हमारे पास दुधारू नहीं हैं तो भाई हमारे इस व्यवसाय से हमें आमदनी नहीं मिलेगी। कुछ किसान भाई दूध के पशु तो रखते हैं लेकिन वो भाई अच्छी नस्ल के न होने के कारण दुधारू नहीं होते, यानी कि अच्छा दूध नहीं देते। और भाई पशु दूहते समय कुछ सावधानी भी रखनी पड़ती हैं, तो पशु

0: उठते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, अब इस बात पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो भाई जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, और बरसात के मौसम में मक्खी मच्छर, परजीवी कीट और सूक्ष्म जीव अधिक सक्रिय रहते हैं, तो इसलिए हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यदि हम पशुओं की पशुशाला और उनके शारीरिक स्वच्छता की बात करें, तो जिन पशुओं का हम दूध निकालते हैं उन पशुओं की स्वच्छता अवश्य बनती है, क्योंकि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन ही हमारे असली दूध उत्पादन का आधार है। और इसके लिए पशु का और दूध दुहने वाले व्यक्ति का, किसान का या ग्वाले का भी साफ सुथरा रहना बहुत जरूरी है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि दूध निकालने का जो समय होता है, उस निकालते समय वहां का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए शांत वातावरण होना चाहिए। ये आप हम अच्छी तरह जानते हैं कि पशु किसी शोर से या किसी कारण से चौंक न जाए, और दूध देने वाली जो गाय या भैंस है वो अन्य पशुओं से हम अलग बांध कर ही दूध निकालें तो बेहतर रहता है, क्योंकि पशु भी एक दूसरे के साथ कभी कभी शरारत कर देते हैं, सिर मार देते हैं, सींग मार देते हैं, तो इस प्रकार से हमें अलग बांध कर ही दूध निकालना चाहिए। और हमारे हाथ स्वच्छ होने चाहिए, और दूध दुहने के जो बर्तन है ना भैया, वो भी पूरी तरह स्वच्छ और निर्जमीकृत होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल हम जो है कृमि मुक्त अपने बर्तन रखें, तभी हमारा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन होगा। साथियों, इसके बाद बात आती है दूध निकालने की विधि की। तो भैया, दूध निकालने की मुख्यतः तीन विधि होती हैं, या लोग तरह तरह के ढंग से जो दूध निकालते हैं। कुछ भाई तो अंगूठा मोड़कर दूध निकालते हैं, जो कि एकदम गलत विधि है और वैज्ञानिक विधि नहीं है। और भैया कुछ उंगली और अंगूठे के चुटकी बनाकर दूध निकालने हैं, तो भैया वो भी दूध निकालना ठीक नहीं होता, और ये अक्सर भेड़ बकरी में दूध निकालने की प्रक्रिया में ये वाली विधि अपनाई जाती है, हाथ से चुटकी से दूध निकालना। और कुछ जागरूक भाई पूर्ण हस्त दोहन विधि से दूध निकालते हैं, जो एक वैज्ञानिक विधि है, जिसमें दूध दुहने वाला पशुपालक भाई पूरे थन को मुट्ठी में दबाकर और अंगूठा सीधा ऊपर करके दबाव डालकर दूध निकाल जाता है। और भैया जब इस प्रकार से दूध निकालता है, तो इस पूर्ण हस्त दोहन विधि में पशु भी सहजता महसूस करता है, और थन या अयन को भी कोई नुकसान नहीं होता। अन्यथा जब हम अंगूठा मोड़कर दूध निकालते हैं ना, तो उस वाली विधि में भैया थन में गांठ पड़ने की आशंका हो जाती है, और पशु असहजता महसूस करके कूद भी सकता है। साथ में भैया ये भी ध्यान रखें कि दूध पीने वाला जो छोटा पशु है ना, उसको सही करके अपनी माँ के पास ही बांधें, नहीं तो उसकी माँ रंभा कर या बोल कर या अपने जो है अपने बच्चे की ओर देख कर इधर उधर चल सकती है। तो दुधारू पशु जो है एक जगह आसानी से इसलिए खड़ा रहेगा कि आप उसका बच्चा उसके पास बांध देंगे। तो किसान भाइयों, ये थी थोड़ी सी चर्चा पशु को दूहते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए इस विषय पर। और चर्चा को अब यहां पर एक लेते हैं अल्प विराम, और सुन लेते हैं ये जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: किसान भाइयों ने सुने जरूरी संदेश, और संदेश के बाद कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, देखिए हम बात कर रहे थे पशुओं की। तो भैया जो ये पशुधन है, इसके विकास के लिए हमारे सरकार ने कुछ योजनाएं चला रखी हैं, और उनमें से एक योजना का नाम है राष्ट्रीय पशुधन मिशन। तो भाइयों, राष्ट्रीय पशुधन मिशन एक भारत सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण और दूरगामी योजना है, जिसकी शुरुआत 2014-15 में की गई थी, और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार

0: सृजन, उद्यमिता विकास और पशुओं की नस्ल सुधारने और प्रति पशु जो उत्पादकता है भैया उसको बढ़ाना था। और इस राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में पशुओं के लिए चारे की कमी को भी दूर करने की व्यवस्था है और प्रमाणित बीज जो चारे के होते हैं उनकी आपूर्ति भी इस योजना के अंतर्गत आती है। पशु के बीमे और अप्रत्याशित नुकसान से सुरक्षा का ध्यान भी इस योजना में रखा गया है। किसान भाइयों, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के कुछ उपमिशन भी थे जिसमें मुख्य रूप से रखे गए जो तीन मिशन हैं, तो भैया उसमें पहला मिशन है पशुधन और कुक्कुट की नस्ल सुधार विकास पर, यानी कि इसके जो छोटे मिशन हैं उपमिशन हैं उसमें पहला मिशन है कि हमारा जो पशुधन है उसके साथ साथ हमारे किसान भाई मुर्गी बाड़े का निर्माण करके उसमें मुर्गियां भी पालें और उन पर ध्यान दें, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो चूजे होते हैं और अंडे होते हैं उनका उत्पादन के लिए हैचरी बनाना और साथ में भैया भेड़ बकरी फार्म भी विकसित करने के उद्देश्य हैं। तो बहुत अच्छा उद्देश्य है। और भैया इसका दूसरा जो उपमिशन है वो आहार और चारा विकास पर केंद्रित है। साथ में तीसरा उपमिशन है कि भैया जो पशु है उनका बीमा और नवाचार। तो किसान भाइयों, पशु पालकों के लिए इस योजना को अपनाने पर वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान होती है। तो इस योजना में जो पात्र व्यक्ति है उसके पास भाई पंजीकृत भूमि अपनी होनी चाहिए या कोई व्यक्तिगत हो सकता है भाई ऐसा पात्र व्यक्ति, या कोई संगठन हो सकते हैं जैसे कुछ स्वयं सहायता समूह होते हैं या FPO हो सकते हैं, यानी कि जो कुछ किसान संगठन होते हैं, और कोई अन्य संगठन भी होता है। साथ में भैया इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि वित्तीय व्यवस्था के लिए बैंक गारंटी भी होनी चाहिए। तो भाई ये तो थी थोड़ी सी जानकारी राष्ट्रीय पशुधन विकास मिशन की। और भाई अब चलते हैं देखिए पशुपालन से दूसरी ओर अपनी खेती किसानी में। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम में आपको रोज कोई ना कोई नई जानकारी देते हैं ताकि हमारे किसान भाई लाभ कमा सकें, और हमारी जानकारी समसामयिक होती है, यानी कि आगे आने वाले समय में हमारे किसान भाई खेती से कैसे लाभ उठाएंगे। तो भैया आगे आने वाली जो हमारा अगस्त का ये आखिरी जो पखवाड़ा है वो चल रहा है, दूसरा पखवाड़ा चल रहा है, तो किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि जो आने वाले महीने में सितंबर में या इस महीने के अगस्त के लास्ट में भी आप कुछ ऐसी फसल होती हैं जो उन्हें बोकर आगे उनसे अच्छा लाभ कमाया जा सकता है, तो ऐसी ही फसल आपने देखिए अच्छी तरह अवगत हैं मूली, गाजर और शलजम से। तीनों ही जड़ वाली फसलें हैं और भूमिगत जड़ इनको हम कहते हैं जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है। तो ऐसी जड़ वाली जो फसलें होती हैं मूली, गाजर, शलजम, तो आज भैया हम इसी के संदर्भ में आपको एक जानकारी सुनवा रहे हैं जिसका विषय है मूली, गाजर, शलजम की अगेती बुवाई। तो इस विषय पर आज हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर यशपाल सिंह, जो कि प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़ा, जिला मुजफ्फरनगर में। तो भैया आइए सुनते हैं उनसे ये बातचीत और करते हैं हम बातचीत। किसान भाइयों, आज हमारे कार्यक्रम के बीच हैं डॉक्टर यशपाल सिंह, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़ा, जिला मुजफ्फरनगर में प्रभारी के पद पर कार्यरत हैं, और आज आपसे बातचीत का विषय है गाजर, मूली और शलजम की खेती। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद ना, सभी किसान भाइयों का, सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में।
0: डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा जी कि जिस प्रकार से हम जानते हैं कि किसी भी फसल की पैदावार लेने के लिए सबसे पहले उन्नतशील प्रजातियों का हम चयन करते हैं
1: जी, जी बिल्कुल,
0: तो गाजर, मूली और शलजम की आप उन्नतशील प्रजातियों पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल ना, मैं बताता हूँ भी, उससे भी पहले मैं थोड़ा सा बता दूं सब्जियों के ना इम्पोर्टेंस के बारे में। हम यदि संतुलित आहार की बात करते हैं तो उसमें पांच अवयव होते हैं मुख्य रूप से, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर दो पे प्रोटीन, नंबर तीन पे वसा, नंबर चार और पांच पे मिनरल्स और विटामिन। तो ये जो नंबर चार और पांच वाले जो कंपोनेंट हैं, ये हमको केवल और केवल सब्जियों और फल से ही उपलब्ध होते हैं
0: जी।
1: तो ये कितना महत्वपूर्ण भूमिका है सब्जियों की हमारी संतुलित आहार में।

0: इस बात से आप समझ सकते हैं, क्योंकि सारे मिनरल्स और विटामिन हमारे केवल और केवल सब्जियों और फलों से ही प्राप्त होते हैं।
1: जी
0: उसमें भी अब हम बात कर रहे हैं जो जड़ वाली फसलें हैं जिनकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, जिसमें गाजर, मूली और शलजम ये जड़ वाली हैं। सब्जियों में भी जो जड़ वाली सब्जियां हैं हमारी, उनका एक अलग महत्वपूर्ण योगदान है उसमें ना। और
1: जी
0: चूंकि जो सब्जी की रिक्वायरमेंट है हमारे देश में, हम कहते हैं कि ना प्रति व्यक्ति 300 ग्राम सब्जी प्रतिदिन उसकी उपलब्धता
1: होनी
0: होनी
1: चाहिए
0: चाहिए ना,
1: जी
0: और उसमें से लगभग 50-60 ग्राम आपकी जो जड़ वाली फसलें हैं, जड़ वाली सब्जी वाली फसल, वो होनी चाहिए। तो इसलिए ये तो बात हुई कि हम लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से सब्जियों का जो महत्व है ना।
1: जी। तो
0: दूसरी,
1: डॉक्टर डॉक्टर साहब, जैसे
0: अब आप बात कर रहे थे जी
1: आने वाला
0: वैरायटीज।
1: सीजन, हाँ रबी का सीजन है, और रबी में जो है ये गाजर, मूली और शलजम विशेष तौर से हमारे किसान भाई इसका खाने में प्रयोग करते हैं और बोने में प्रयोग करते हैं, और हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़े।
0: जी जी
1: तो
0: बिल्कुल,
1: हाँ, तो डॉक्टर साहब इसके बारे में थोड़ी सी इनकी प्रजातियों के बारे में बताइए।
0: हाँ बिल्कुल ना, चूंकि प्रजाति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है किसी भी खेती के उत्पादन में।
1: जी
0: तो हम बात करें यदि प्रजातियों की, जो गाजर की बात करते हैं तो पूसा रुधिरा है, पूसा केसर है, हिसार गैरिक है ना,
1: जी
0: मेंटेस है, ये हमारी एसिडिक वैरायटीज हैं, जो हमारी एशिया वाली वैरायटीज हैं। ठीक
1: जी जी
0: है, तो ये वैरायटीज हम मूली में बात करें तो पूसा चेतकी है, पूसा हिमानी है, जापानी वाइट है। तो इस
1: जी
0: ऐसे ही सलजम में पूसा स्वर्णिमा, पूसा चंद्रिमा और स्नोबाल,
1: जी जी
0: ये हमारी वैरायटीज हैं। और इसका एक पूरा विंडो है आपका, ये यदि गाजर की बात करते हैं तो अगस्त से लेके और नवंबर तक हम लोग इसकी बुआई करते हैं,
1: जी
0: और मूली भी और सितंबर से लेके नवंबर दिसंबर तक हम लोग ना 15-20, इसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि वैरायटीज हम लोग, चूंकि ये रेगुलर सप्लाई इसकी बनती रहे, तो
1: जी
0: हम लोग समय अंतराल पे ना 15-20 दिन के समय अंतराल पर हम लोग इसकी बुआई करते हैं।
1: जी
0: ऐसे ऐसे ही हम लोग से। तो सलजम की बात करें प्रजातियों की, तो पूसा स्वर्णिमा है, पूसा चंद्रिमा है ना, ये सारी अच्छी प्रजातियां हैं जिनको किसान भाई उगा सकते हैं ना।
1: तो डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं कि 1 हेक्टर खेत के लिए कितने
0: जी
1: बीज की आवश्यकता होती है इन फसलों की।
0: हाँ, यदि बीज की बात करते हैं तो इसमें बीज हम लोग सबका बीज दर अलग अलग होता है। यदि गाजर की बात करें तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर,
1: जी
0: मूली 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और शलजम का 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है।
1: डॉक्टर साहब,
0: इसमें
1: इसके
0: भी
1: बोने की विधि क्या है? अच्छा
0: हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, इनको पंक्ति से पंक्ति पंक्तियों में इनकी बुआई करते हैं, और बेटर तो ये रहता है यदि हम उस पर रेस बेड पे लगा देते हैं तो और भी, क्योंकि रूट टॉप से इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है मिट्टी का। यदि हमारी बलुई दोमट मिट्टी है, जो पोली
1: जी
0: मिट्टी होती है, अच्छे से हमने तैयार की है, तो उसमें उसकी रूट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है ना। तो इसमें हम लोग पंक्तियों में करते हैं, और पंक्ति की जो दूरी होती है लगभग 1 फीट, मानो अपना 1 फीट पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और
1: अच्छा
0: पौधे से पौधे की दूरी लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर सभी में ऑलमोस्ट यही रखी जाती है, जो जो भी आपकी तीनों ये सब्जियां हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, ये अच्छी पैदावार तभी देंगी जब इनको मेड़ पे हम बोए करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल ना, उसमें दो दो फायदे होते हैं। एक तो ना, आजकल आप देख रहे हैं कि मौसम का बिना बरसात, बिना मौसम के बरसात हो जाती है, जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते तब उस समय ज्यादा बरसात हो जाती है। इन केस ऐसा हो जाता है
1: जी
0: तो जो एक्सेस वाटर है, यदि वो समतल खेत में बुआई की हुई है तो सारी खराब हो जाती है फसल। यदि आपने मेड़ पे लगाई हुई है तो सारा वो एक्सेस वाटर है सब वो निकल जाता है, उसका निकास हो जाता है, हम लोग उस तरह से उसको लगाते हैं। और दूसरा, जैसे हम बात कर रहे थे कि यदि मेड़ पे लगाएंगे तो उसको पर्याप्त डेप्थ गहराई मिल जाती है,
1: जी
0: जिससे उसका साइज और आकार में वृद्धि होती है और वो पर्याप्त उपज देती है। जी
1: हाँ, तो डॉक्टर साहब, इसकी जो हम जब बीज की बुआई करेंगे तो उसकी
0: जी
1: गहराई क्या रखेंगे?
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए दोनों, जो हमारा गाजर है या मूली और शलजम थोड़ा बोन मोटा होता है, आप ये मान के चलो लगभग 1 से लेके और 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर तक हम कर सकते हैं,
1: अच्छा
0: ज्यादा से ज्यादा आप ना 1 इंच उसको मान लो, 1 इंच का मतलब 2.5 सेंटीमीटर
1: जी
0: है ना। इससे यदि गहरा हम बोते हैं तो फिर उसमें अंकुरण में थोड़ी सी समस्या होती है ना। तो हम
1: अच्छा
0: लोग 1 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तक उसकी हम ना गहराई रखते हैं बीज की।
1: जी जी अच्छा डॉक्टर साहब, बुआई के बाद यदि वर्षा हो जाए तो क्या हमारा बीज जमेगा नहीं?
0: हाँ, ये डिपेंड करता है यदि मिट्टी कैसी है। यदि आपकी सैंडी सोयल है
1: जी
0: ना, हल्की मिट्टी है, उसमें वो लेयर नहीं बनेगी तो वो आसानी से उग जाएगा। गाजर में थोड़ा सा हो सकता है, बाकी जैसे मूली और ये शलजम है इसका बीज थोड़ा सा बोल्ड होता है, अंकुरण आ जाता है, तो
1: जी
0: उसमें हो सकता है। यदि आपकी हार्ड मिट्टी है, थोड़ी सी काली
1: मटियार
0: मिट्टी
1: है
0: यदि है ना,
1: जी
0: तो उसमें परत यदि बन गई मजबूत तो थोड़ा सा प्रभावित हो सकती है, बाकी
1: अच्छा
0: जो बलुई दोमट मिट्टी है उसमें आसानी से निकल आती है ना।
1: जी। तो डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं खाद और उर्वरक की।
0: जी

0: तो खाद और उर्वरक की क्या आवश्यकता होती है हमारी इन तीनों फसलों के लिए?
1: तीनों फसलों के लिए ऑलमोस्ट, क्योंकि ये सारी मैंने बताया तीनों जड़ वाली फसलें हैं, तो
0: जी
1: उसमें जड़ वाली जो फसलें हैं अधिकतर उनमें पोटास की ज्यादा आवश्यकता होती है ना।
0: अच्छा
1: हम यदि हम सामान्य तौर से बात करें तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की इसकी आवश्यकता होती है।
0: जी
1: इसमें नाइट्रोजन जो है हम लोग तीन अलग अलग किस्तों में देते हैं और
0: जी जी
1: बाकी फास्फोरस और पोटास पूरी बुआई के समय पर देते हैं। ये
0: अच्छा
1: ध्यान रखते हैं कि ये जो उर्वरक हैं ये बीज के नीचे, इनका प्लेसमेंट ऐसा हो कि बीज के नीचे ही रहे ना वो। कई
0: जी
1: बार तो क्या करते हैं लोग बुआई करके ऊपर से डाल देते हैं, तो ये सुनिश्चित कर लें कि जो आपका विशेष रूप से जो फास्फोरस वाला उर्वरक है
0: जी
1: वो बीज के नीचे ही हो। तो वो तभी संभव है कि जब आपने या तो मशीन से बुआई की है या
0: जी
1: आपने बुआई करने के बाद फिर आपने आपने पहले खेत की तैयारी के समय आपने उर्वरक डाल दिया और उसके बाद फिर आपने पंक्ति में बुआई की है ना।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई हमारी बुआई की और आपने खाद और उर्वरक के बारे में बताया। अब हमारी फसल कितने दिनों में जो है जम के तैयार हो जाएगी और पहली सिंचाई की आवश्यकता इसे कब होगी?
1: देखिए जो अंकुरण है इसका लगभग 1 सप्ताह में ये पूरा सारी निकल के आ जाती है बाहर ना,
0: जी
1: सारी ही आपकी तीनों जो है हमारी तीनों सब्जियां हैं। एक अंकुरण गाजर में 8 दिन से ज्यादा भी लग जाता है कई बार ना, और जो मूली और सलजम तो बहुत जल्दी अंकुरित होते हैं, विद इन वीक वो सारे निकल के आ जाते हैं।
0: अच्छा
1: इसमें एक बात छूट गई थोड़ी सी कि
0: जी
1: हम लोगों ने जब बुआई कर ली उसके बाद यदि हम ना उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए एक रसायन है पेंडीमिथिलीन ना,
0: जी जी जी बहुत प्रचलित दवाई है जी
1: बहुत प्रचलित है और बहुत आवश्यक भी है, और वो आपका हम लोग कहते हैं प्री इमरजेंस वीडिसाइड होता है कि
0: जी
1: खरपतवार के निकलने से पहले ही हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। तो
0: जी
1: बुआई के विदिन 3 दिन, 3 दिन के अंदर अंदर हम लोग इस खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करते हैं और इसकी 3.25 लीटर, 3 से 3.25 लीटर मात्रा 600 लीटर पानी में घोल बना के प्रति हेक्टेयर इसका छिड़काव करते हैं। तो
0: जी
1: इससे जो भी खरपतवार निकलने वाले खरपतवार हैं वो सब रुक जाते हैं ना,
0: जी
1: शुरुआती अवस्था में इस खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। उसके
0: जी
1: बाद ये आपके मान के चलो लगभग 30 दिन का इससे काम हो जाता है। उसके बाद यदि खरपतवार फिर बाद में आते हैं तो एक
0: जी
1: हल्की सी निराई गुड़ाई करके खरपतवार हम प्रबंधन कर लेते हैं। खरपतवार प्रबंधन भी बहुत आवश्यक है क्योंकि यदि खरपतवार उसमें शुरू से ही ज्यादा हो जाते हैं तो पौधे की ग्रोथ नहीं होती है और अल्टीमेटली हमारी पैदावार प्रभावित होती है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने पेंडीमेथिलीन नामक खरपतवार नाशी का जिक्र किया, तो
1: जी
0: इसकी जगह जैसे हम सिंचाई की नाली पे वो खरपतवार मारने के लिए करते हैं ग्लाइपोसेट, उसमें रसायन होता है, तो क्या ग्लाइपोसेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं?
1: बिल्कुल नहीं, ग्लाइफोसेट तो एक तरह से मानिएगा कि ग्लाइफोसेट जो खरपतवार नाशी है वो हमारी किसी भी फसल में अनुशंसित है ही नहीं।
0: नहीं
1: ग्लाइफोसेट का हम लोग इस्तेमाल केवल ऐसी जगह जो आपकी जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पे खेती नहीं होती है, जो
0: अच्छा
1: बारानी लैंड है उस पे ही हम लोग केवल उसको वो अनुशंसित है।
0: जी
1: हमारी किसी भी फसल में खरपतवार की अनुशंसा नहीं है ग्लाइफोसेट का, क्योंकि वो सिस्टमिक वीडिसाइड है और
0: जी
1: उसके कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है, मतलब उससे कैंसर भी होता है ना।
0: अच्छा
1: कई स्टेट्स ने तो बहुत पहले से प्रतिबंधित कर दिया है, फिर
0: जी
1: भी जहाँ पर भी वो लोग किसान भाई यूज कर रहे हैं ना, वो केवल खेती को छोड़ के, खेती मतलब फसलों किसी भी फसल में उसकी वैज्ञानिक अनुशंसा नहीं है, हम लोग किसी भी
0: जी
1: फसल में उसको रिकमेंड नहीं करते हैं।
0: हाँ, तो अक्सर किसान भाई उसका जिक्र करते हैं और उसका इस्तेमाल भी कहीं कहीं किसान भाई करते हैं, तो इसलिए हमने किसान भाइयों को आपके माध्यम से सचेत कर दिया है कि
1: जी
0: ग्लाइफोसेट अपने खेतों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो
1: बिल्कुल नहीं करना।
0: डॉक्टर साहब, अब बात आती है निराई गुड़ाई की। निराई गुड़ाई और सिंचाई किस किस समय हमारी इन गाजर मूली
1: हाँ
0: और
1: निराई गुड़ाई
0: शलजम?
1: मैंने बता दिया आपको कि 1 महीने के बाद ना, जैसे ही 1 महीने के बाद इसमें हम लोग ना कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से मान लें आप ना,
0: जी
1: किसान भाई यदि बीघा में समझेंगे, और
0: जी जी
1: यदि हेक्टेयर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ छोटा बीघा है, 15 बीघे का होता है, 15×75 कैल्शियम नाइट्रेट इस दर से हम लोग उसमें अप्लाई करवा के और एक
0: अच्छा
1: खुरपी से निराई करवा देते हैं ना, तो दोनों
0: जी
1: काम हो जाते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट भी प्रॉपरली मिट्टी में मिल जाता है और हमारा जो खरपतवार है उस समय जब तक होते हैं वो 30 से 35 दिन के बाद आसपास में वो भी हम लोग निकाल लेते हैं ना, इस तरह से हम लोग खरपतवार प्रबंधन कर लेते हैं इसमें।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, अब बात आती है कीट और बीमारी की। तो
1: जी
0: जैसे हमारी नई फसल उगाई है, तैयार हो गई है, तो कीट और बीमारी इसमें कौन कौन से लगते हैं और किस?
1: देखिए इसमें
0: हाँ
1: हम लोग पहले तो ना जो भी हमारा बीज होता है हम लोग कहते हैं उसको हम उपचारित करके ना, उपचारित
0: जी
1: करने के लिए थायोफेनेट मिथाइल एक ना सिस्टमिक फंजीसाइड होता है।
0: जी
1: वैसे तो जो किसान भाई बीज लेके आते हैं वो उपचारित होता है, कई
0: जी
1: बार किसान भाई अपना बीज

0: है कि जड़ थोड़ा सा गलना शुरू हो जाती है ना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो हमारा ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है कार्बेंडा जिम्ना
1: जी
0: और मैंकोजेब, इसका दोनों का मिक्सर आता है ना, तो
1: जी
0: वो कॉन्टेक्ट प्लस सिस्टमिक का आता है, उसका 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के हम छिड़काव कर देते हैं तो उससे राहत मिल जाती है। जो मूली और शलजम की बात है, इसमें एक आता है व्हाइट रस ऑफ क्रूसिफर,
1: अच्छा
0: सफेद सफेद पत्तियां बन जाती हैं, फफूंदी जनित एक रोग है। तो
1: जी
0: इसमें आप सिंपली जो हमारा कार्बेंडाजिम है रसायन, सॉरी कार्बेंडाजिम मैंकोजेब, मैंकोजेब का 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के उसका छिड़काव कर देते हैं तो आसानी से उसको नियंत्रित हम लोग कर लेते हैं ना। विशेष रूप से इसमें ऐसी कोई ज्यादा बीमारियां नहीं आती है। जहां तक कीट की बात है तो इसमें एक बीटल आता है शलजम और मूली में,
1: जी
0: जो नुकसान करता है। विशेष रूप से तब ज्यादा प्रकोप होता है जब थोड़ा गर्मी का प्रकोप होता है। कई बार किसान भाई ना बाद में ऑफ सीजन मूली लगाते हैं जिससे
1: जी
0: उसको सप्लाई मिलती रहे, तो उस समय उसका ज्यादा प्रकोप होता है। तो उसके लिए आप सामान्य जो कीटनाशी है हमारे ना, चाहे तो आप क्विनोलफॉस ले ले है ना,
1: जी
0: और उसका क्लोरीपाइरीफॉस
1: क्लोरोपायरीफास
0: भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल 1 से 1.5 ml, थोड़ी मात्रा, ज्यादा नहीं लेनी, 1 से 1.5 ml मात्रा प्रति लीटर घोल कर लेते हैं, आसानी से नियंत्रित हो जाता है। इसके
1: जी
0: अलावा हम लोग ना, क्योंकि सब्जियों में हम चाहते हैं कि कम से कम जो रसायन है इनका इस्तेमाल हो, विशेष रूप से कीटनाशी, नीम ऑयल यदि हम 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसका छिड़काव कर देते हैं, उससे भी आसानी से नियंत्रित हो जाता है।
1: जी जी तो अब डॉक्टर साहब, ये हमारी फसल कितने दिनों में काटने लायक या उखाड़ने लायक हो जाती है? क्योंकि ये गाजर, मूली और शलजम है, ये तो हम सीधे उखाड़ते हैं, तो
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: कितनी अवधि की फसल होती है ये?
0: अब ये देखो, आपकी जो मूली और शलजम है ये आमतौर पे 1.5 से 2 महीना, मान लो आप 45 से 60 दिन में तैयार
1: जी
0: हो जाती है ना। जो
1: अच्छा
0: गाजर की फसल है वो थोड़ी सी अवधि उसकी ज्यादा होती है, वो 90 से 120 दिन ले लेती है ना, तो ये अवधि रहती है। मूली और शलजम आपकी 1.5 से 2 महीना
1: अच्छा
0: और गाजर 3 से 4 महीना, ऐसे मान के चले आप ना। ये
1: जी
0: लगभग वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो कुछ थोड़ी सी शॉर्ट अवधि की होती है, आमतौर पे ये ड्यूरेशन रहती है।
1: तो डॉक्टर साहब, और कोई विशेष बात इन तीनों फसलों में जो हमारे किसान भाइयों को बताने से रह गई हूँ, या आप हमारे किसान भाइयों को कोई अच्छी सलाह देना चाहें?
0: इसमें किसान भाइयों को यही सलाह है कि हम लोग इन जो सब्जियों को उगा रहे हैं उसमें समय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो भी हम उसमें कीटनाशी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम
1: जी
0: लोग उसमें वीडिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम उसमें सिंचाई और उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं,
1: अच्छा
0: समय यदि सही समय पे नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फिर हमारा आधा वेस्ट हो जाता है। तो जो भी हमारी क्रियाएं हैं उनको समय से और सही मात्रा में, जो भी हम लोग चाहे वो फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं, और चाहे वो हमारे रसायन हैं,
1: जी
0: उनकी अनुशंसित मात्रा में ही इस्तेमाल करें। यदि किसान भाई को नहीं कुछ समझ में है तो हर जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, कृषि विभाग है ना, टोल फ्री नंबर भी है। आप
1: जी
0: लोग पूरी जानकारी लेने के किसान लेने के बाद ही किसान भाई ये फसल करें है ना। विशेष रूप से मैं बार बार इस बात पे ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ किसान भाइयों का, कि रसायनों का विशेष रूप से, चूंकि बहुत छोटी अवधि की फसलें होती हैं,
1: जी
0: अभी हम लोग इनमें रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, इनके अवशेष जरूर जाते हैं। तो जब हम लोग इसको सब्जी को, और ये तो कच्ची खाने वाली ज्यादा है ना,
1: जी सलाद
0: ये
1: के
0: जो
1: रूप में
0: तीनों फसलें सलाद के रूप में खाई जाती हैं, तो
1: जी
0: ऐसी फसलों में विशेष रूप से हम लोग रसायनों का बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल करें, और यदि हम जो हमारे नेचुरल सोर्स है उनका इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र से, कृषि विभाग से संपर्क करके इसमें रसायनों का इस्तेमाल, अपने मस्तर से या दुकानदार के पास जाके रसायनों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें।
1: जी
0: कई बार ऐसी स्थिति होती है कि उसमें आवश्यकता होती नहीं है, किसान थोड़ा बहुत इंसेक्ट लगा हुआ है और वो जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है वो तक नहीं है, तो हमें उसमें किसी रसायन की आवश्यकता होती ही नहीं। कई
1: जी
0: बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लाभकारी कीट है, जैसे आपका ये मूली और शलजम है, इसमें एक आता है एपिलेचना बीटल, जो माहू को खाने वाला कीट होता है, किसान भाई समझता है तो ये आ गया मेरा, वो आया उसका मित्र कीट है, तो कई
1: जी
0: बार उसको भी अनभिज्ञता में हम लोग उसको भी मार देते हैं, तो हमारा नुकसान दोहरा होता है।
1: जी एक तो
0: हम
1: हमारे पर्यावरण का नुकसान होता है, और हमारी जो है जो मित्र कीट हैं
0: वो
1: उनका
0: भी,
1: वो भी नष्ट हो
0: और
1: जाते
0: दूसरा
1: हैं।
0: हमने हमने सब्जी की गुणवत्ता भी खराब कर दी।
1: जी हाँ, सब्जी की
0: तो हम
1: गुणवत्ता
0: लोग
1: खराब हो
0: जो भी
1: जाएगी।
0: रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग जान के उसकी जानकारी करके तभी उसका इस्तेमाल कर
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम इन फसलों की खुदाई करते हैं,
0: जी।
1: यानी कि कटाई या खुदाई जो भी आप मानते हैं वो करते हैं, तो उस समय हमारे खेत में नमी कितनी होनी चाहिए या हमें सिंचाई करनी चाहिए, ये तो, और किस चीज से हम इसकी खुदाई करें?
0: हाँ देखिए, ये तो

0: किसान भाई सब लोग जानते हैं,
1: जी
0: क्योंकि यदि बहुत वो नमी होगी उसमें तो खुदाई हो नहीं पाएगी।
1: जी
0: उसमें हम सिंचाई से लगभग सप्ताह भर पहले पानी दें, जिससे वो इतनी आसानी से ही निकल सके ना। वो
1: जी जी
0: आजकल आजकल जो व्यवसायिक स्तर पे होते हैं, तो वो आजकल उसके प्लांटर भी खोदने वाली मशीनें भी हैं, और बाकी तो मैनुअली तो होती है। मैंने तो ऐसे उखाड़ते हैं ना वो लेबर से, जो कृषि सर्वे के उनके हाथ माध्यम से उखाड़ा जाता है, लेकिन
1: जी
0: आजकल यांत्रिक मशीनें भी उपलब्ध हैं। तो नमी लगभग खुदाई से लगभग एक सप्ताह पहले हम उसमें वो हालांकि मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है,
1: जी जी
0: यदि आपकी हल्की मिट्टी है तो 3-4 दिन पहले करेंगे तभी भी चल जाएगा, और भारी मिट्टी है तो कई बार 8-10 दिन पहले उसको करना पड़ता है।
1: जी यानी कि
0: ज्यादा
1: सिंचाई
0: सूखी हो जाएगी तो दिक्कत है खुदाई करने में ना। हाँ, ज्यादा
1: टूट
0: गीला
1: जाए,
0: होगा जी,
1: हाँ वो टूट जाएगी अगर सूखी होगी तो।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: डॉक्टर यशपाल सिंह जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे किसान भाइयों को गाजर, मूली और शलजम के बारे में आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद।
2: मूली, गाजर, शलजम की अगेती बुआई। अभी आपने इस विषय पर डॉक्टर यशपाल सिंह से ये हमारी बातचीत सुनी और हमें उम्मीद है कि भैया आप इस बातचीत का भरपूर लाभ उठाएंगे और आने वाला जो सीजन है गाजर, मूली, शलजम का, तो भैया आप इसकी अच्छी प्रकार खेती करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और भैया इस प्रकार से जब हमारे किसान भाई लाभ उठाएंगे तो लाभ एक और चीज़ से होता है जिसका नाम है मनोरंजन। और भैया देखिए, मनोरंजन के साथ साथ हम जो है अपने देश में जो सद्भावना है, अपने देश की जो भारत देश हमारा ये एक ऐसा देश है, यहाँ अनेक विशेषताएं हैं लेकिन फिर भी ये एक देश है। तो भाई आज वैसे भी जो है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस है और ये दिवस जो है हम मनाते हैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और श्री राजीव गांधी जी का जन्मदिन आज ही के दिन यानी कि 20 अगस्त सन 1944 में मुंबई में हुआ था। तो भैया आइए सुनते हैं अपने इसी सद्भावना दिवस के ऊपर एक प्यारी सी रागनी जिसे स्वर दिया है मैनपाल सिंह उनके साथियों ने।

भारत देश हमारे में, अभी आपने मैनपाल सिंह उनके साथियों की आवाज में रागनी सुनी, और रागनी आपको कैसी लगी ये आप हमें बताएंगे खत के माध्यम से या अपने व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जो है आपको कृषि मौसम सलाह बता दें, जो कि कृषि विश्वविद्यालय मोदीपुर मेरठ से हमें प्राप्त हुई है। उसके अनुसार आने वाले 3 दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, तो उसी के अनुसार किसान भाई अपने कृषि कार्यों का संपादन करें। और भाई देखिए, अब घड़ी हमें ज्यादा बातें करने की अनुमति नहीं देती, तो भैया जाते जाते आप हमारा व्हाट्सएप संदेश के लिए आप हमारा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर नोट कर लिए, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457072888। और भैया यदि आप हमें पत्र लिखना चाहें तो हमारे पत्र का पता वही है, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद PIN 2467633। तो भैया इस पते पर हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी। और अब अगले कार्यक्रम तक किसान भाई अपने भाई नरेश पाल सिंह को अनुमति दें। किसान भाइयों, राम राम।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हो रहे हैं। आइए अब डालते हैं एक नज़र आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम पर। आज रात्रि 9:30 पर कंट्री वाइड कंट्री साइड्स का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। अब से कुछ देर में यानी कि 6:50 पर पेश करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाड़ी, जिसका प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। 7:32 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में आपको सुनवाएंगे साकिब अक्कासी और साथियों की आवाज में कव्वाली। रात्रि 10:00 आपको सुनवाएंगे नाटक स्वयं साक्षी, लेखक रहेंगे डॉक्टर विनय, निर्देशक रहेंगे विश्व प्रकाश दीक्षित यानी कि बटुक, प्रस्तुति सहायक रहेंगे सुदर्शन कुमार, कृष्ण कुमार नरूला, प्रतिभागी कलाकार रहेंगे अरुणा कपूर, विष्णु नारायण शर्मा, नीरज शर्मा, राजकुमारी प्रसाद, नरेश कौशिक और वीणा गौड। रात्रि 10:30 पर समय रहेगा व्हाट्सएप मैसेज और पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रम की। आइए अब डालते हैं एक नज़र कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम पर। कल प्रातः 6:40 पर समय रहेगा चिंतन का। 7:05 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में जानकारी का विषय रहेगा खुश रहिए स्वस्थ रहिए। 7:10 पर खेती की बातें कार्यक्रम में देंगे जानकारी। इस समय मौन वंशों की देखभाल पर। 7:31 पर समय रहेगा सूरज के साथ साथ का। 9:25 पर धरती गाती है कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे योगेश कुमारी और शालू सक्सेना की आवाज में चंद रुहेलखंडी लोक गीत। 10:30 पर आपको सुनवाएंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता, विषय रहेगा अंतरिक्ष विज्ञान की मानव जीवन में उपयोगिता। 11:30 पर प्रस्तुत करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 12:12 समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया का। 12:15 पर शास्त्रीय संगीत में आपको सुनवाएंगे श्याम गोपी राम चौधरी का सरोद वादन, राग रहेगा मधुवंती। 1:15 पर घर संसार कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। 1:45 पर कार्यक्रम लोकधारा में आपको सुनवाएंगे भागीरथी देवी की आवाज में चंद गढ़वाली लोकगीत। 2:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम फिल्में कव्वालियां। शाम 5:00 मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में आपको सुनवाएंगे उड़ान योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना पर चर्चा। 5:15 पर कार्यक्रम युववाणी में युवा श्रोताओं को सुनवाएंगे कुछ खास है आज में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर चर्चा, और साथ ही सुनवाएंगे आपका सितारा क्रम में अलीना की जौरे से बातचीत। 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में सुनवाएंगे गन्ना किसान भाइयों की गन्ना संबंधी समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो गन्ना किसान। 6:45 पर कार्यक्रम कानूनी सलाह में सुनवाएंगे

भेंटवार्ता, विषय रहेगा मृत्यु भोज निषेध अधिनियम। ये थी जानकारी आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। 6:50 होने को हैं, हमारा अगला कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: उनका पूरा प्यार। ये समय
1: पंचो जय हिंद।
2: रामजीत भैया।
1: हाँ रेनु बहनी।
2: भैया देखो मौसम कितना बढ़िया है, चारी कहती सब हरे हरे दिखाई पड़ रहा है, और जैसी देखो वैसे मन खुश हो जाते हैं भैया।
1: बिल्कुल, आपन प्रकृति ऐसा चीज है कि जहिका देख मन अपने आप खिलखिलाएगा, हंसे लागत।
2: बिल्कुल भैया, और ई हरेरी भरेरी ऐसा बनी रहे इके खातिर हमका हमेशा प्रकृति के नजदीक रहे पड़ी।
1: बिल्कुल बहनी, और एक जरूरी है कि हम पंच प्रकृति के नुकसान न करी, बल्कि जौन चीजें प्राकृतिक है वन है अधिक से अधिक बढ़ावा दी।
2: बिल्कुल भैया, प्राकृतिक खेती के मतलब ही यह है कि जो है हम पंचे प्रकृति से मिली भई चीजें उमा इस्तेमाल करी, कोनू तिना के रसायन के इस्तेमाल नहीं करी, बल्कि प्रकृति से मिली भई जैसे गोबर की खाद है, केचुआ केरी खाद है, ई तिना की खादन के उपयोग करे है। इससे सबसे बढ़िया बात भैया ये है कि हमारी माटी का भी स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहा है।
1: बिल्कुल, यही साथे साथे बहनी अपनी खेती पाती में जौन आस पास चीजें हो रही है हम पंचन का वहू को जाने चाहिए, और यही बदे हम पंच सुनित है आज की खबरें।
3: उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश और युवाओं और महिलाओं उद्यमियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन से किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार सृजन करने और कृषि आधारित उद्योगों को नई गति मिल रही है। 19 अगस्त तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त 16 नए प्रस्तावों पर मूल्यांकन समिति ने विचार कर पात्र प्रस्तावों को SLEC के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति की। इनमें आटा दलिया, मैक्रोनी पास्ता, कुटू प्रोसेसिंग, रेडी टू ईट, डेयरी मिल्क प्रोसेसिंग, पेठा, हींग, आलू फ्लेक्स और कैटल पोल्ट्री फील्ड जैसी इकाइयां शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं का आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की ओर बढ़ता रुझान और महिला उद्यमियों की बढ़ती भागीदारी प्रदेश में उद्यमिता और रोजगार के लिए सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा कि कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार से किसानों की आय, रोजगार और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।
1: रेनु बहनी।
2: हाँ रामजीत भैया।
1: देखो अपने खेती पाती में बहुत पंच ऐसे हैं जो सब्जियों के उत्पादन करते हैं, मूल कऊ दाए का होता है कि सब्जी में वतना जो उत्पादन हो चाहिए वतना ना हो पावत, कौनो न कौनो कमी बनी रहा था।
2: बिल्कुल भैया, तो यही बदे आज की बात में हम लेके आए हैं विषय सब्जियों में पोटेशियम, जिंक और बोरान कमी के लक्षण और उपचार, इसके बारे में बता रहे हैं डॉक्टर काशीनाथ तिवारी भैया।
4: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय जो सब्जियां आपके खेत में हैं उनमें कई पोषक तत्वों की कमी के लक्षण फसल पर दिखाई देते हैं। इन पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर केएन तिवारी साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो सब्जियां खेत में हैं उनमें कई विकार दिख रहे हैं, इनके पीछे क्या कारण हो सकता है?
5: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज सब्जी में जो पोषक तत्वों की कमी की समस्या आ रही है, किसान आम तौर पर सब्जियों में भी यूरिया और DAP का प्रयोग करता है, और जिन तत्वों का नाम लिया, पोटाश है, बोरान है, जिंक है, इनका प्रयोग जब कमी के लक्षण दिखाई दें या कोई समस्या होती है तो उसको बीमारी वो समझ करके लोगों की सलाह लेता है, और उसका सही उपचार न होने की वजह से वो नुकसान उठाता है और फसल भी ठीक नहीं हो पाती है। रही बात पोटाश की, तो आम तौर पर किसान यूरिया और DAP इसका प्रयोग करता है। पोटाश का प्रयोग न करने से पोटाश की कमी के

0: लक्षण जो है बहुतायत सब्जियों में देखे जा रहे हैं। अगर पोटाश की कमी है तो जो पुरानी पत्तियां हैं नीचे की, उनके किनारे पीले पड़ने शुरू होते हैं और इसके बाद में वो पीलापन झुलस जैसा जाता है।
1: और नई पत्तियां सही हैं?
0: नई पत्तियां बिल्कुल सही हैं। ये जो है हमेशा पोटाश का कमी का लक्षण जो है पुरानी पत्तियों पर आता है
1: जी।
0: अब इसके उपचार के लिए क्या करें? पोटाश का बखूबी जो है खड़ी फसल में यूरिया के साथ टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसा आपने पोटाश की कमी के लक्षण बताया, तो किसान भाई इसके लिए क्या करें?
0: हाँ, नेचुरल पोटाश जो आया है, जो गन्ने के सीरे से बनाया जा रहा है, उसमें 14% जो है पोटाश होता है। अगर उसका प्रयोग किसान भाई करें तो निश्चित रूप से उससे भी पोटाश की कमी दूर हो सकती है। लेकिन इसमें जब 14% पोटाश है और म्यूरेट ऑफ पोटाश में 60% है, तो इसका मतलब कि जितना म्यूरेट ऑफ पोटाश से पोटाश देते थे उसकी 4 गुनी मात्रा डालनी पड़ेगी, तब तो इसका काम दिखाई देगा।
1: तो ये जो नेचुरल पोटाश है, इसका बेसल डोज दिया जाए?
0: इसका बेसल डोज दिया जाए
1: खड़ी फसल में।
0: हाँ, नहीं तो अगर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं और बेसल डोज नहीं दे पाए हैं
1: जी,
0: तो यूरिया के साथ मिलाकर इसकी टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। सल्फर की भी कमी है
1: जी
0: सब्जियों में, तो पोटेशियम सल्फेट जो है, जिसको 0050 कहते हैं,
1: यानी जल विलेय उर्वरक,
0: जल विलेय उर्वरक है, इसमें पोटाश भी है, गंधक भी है, तो इसका पानी छिड़काव घोल बना करके कर दें।
1: 0050 NPK।
0: हाँ, इसकी मात्रा ये होगी कि 1 लीटर पानी में 10 ग्राम,
1: यानी एक टंकी में 150 ग्राम।
0: हाँ, 15 लीटर की जो टंकी है उसमें 150 ग्राम मिला करके पानी में छिड़काव कर दें। 1 एकड़ में 6 टंकी लगती है, तो उसी हिसाब से इसकी मात्रा हो जाएगी, 1 किलो में हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ सब्जियों का व्यवसायिक उत्पादन कर रहे हैं किसान भाई बहन, तो वहाँ वो कैसे जाने, कैसे पहचाने कि बोरान पोषक तत्व की कमी के लक्षण है?
0: देखिए, बोरान की कमी आम तौर पर सब्जी और फल वाले फसलों में देखी जा रही है। अगर बोरान की कमी है तो ऊपर की पत्तियों पर ये लक्षण दिखाई देंगे,
1: नई पत्तियों पर।
0: नई पत्तियां जो है वो कटोरी नुमा बन जाती हैं
1: जी,
0: और फल जो है, सारी फसलों में फल जो है टेढ़े होने लगते हैं,
1: सब्जियां फल जो भी है।
0: अब इस समय आप मंडी में सब्जी खरीदने जाइए तो भिंडी भी टेढ़ी हो गई, खीरा भी टेढ़ा हो गया, तो ये सारे फल जो तरोई टेढ़ी हो जा रही है हंसिया की तरह, लौकी टेढ़ी हो रही है, तो ये बोरान की कमी की वजह से ऊपर की पत्तियां कटोरी नुमा हो जाती हैं, फूल भी जो बनते हैं कम बनते हैं, फल नहीं टिकते हैं, और जो टिकते हैं तो इस तरह की समस्या, फलों का आकार जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है।
1: तो जहां बोरान पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखते हैं या नहीं भी दिखते हैं, सब्जियों का व्यवसायिक उत्पादन कर रहे हैं किसान भाई बहन, तो शुरू से क्या करें?
0: शुरू में देखिए, बोरान, अगर बोरेक्स जो है मिट्टी में अगर प्रयोग करना है तो 14.5% वाला है
1: जी,
0: उसका 5 किलो अगर डाल दें 1 एकड़ में,
1: प्रति एकड़ 5 किलो,
0: 5 किलो, तो बोरान की कमी की समस्या कुछ हद तक खत्म हो सकती है।
1: डॉक्टर साहब, क्या इन पोषक तत्वों की अधिकता भी नुकसानदेह है?
0: बिल्कुल नुकसानदेह है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनकी उपयुक्त मात्रा, अधिक मात्रा और विषाक्त मात्रा, इनकी जो लाइन है बहुत बारीक है
1: जी,
0: अगर आवश्यकता से अधिक पड़ेगा तो निश्चित रूप से फसल को नुकसान होगा, और जब बहुत अधिक पड़ जाता है किसान इतना उत्साही हो जाता है कि इसको डाल दें और जरा सा सुधार हुआ तो दूसरे छिड़काव में वो मात्रा दूनी करना चाहता है,
1: ऐसी गलती ना,
0: ऐसी स्थिति में बिल्कुल विषाक्तता की समस्या उत्पन्न हो सकती है, फायदे के बजाय रुपए का नुकसान होगा, दूसरा उसकी फसल भी खराब हो जाएगी।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ सब्जियां हैं वहाँ जिंक पोषक तत्व तो भी महत्वपूर्ण है?
0: हाँ, देखिए, जिंक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कमी तो मुख्य रूप से इस समय बोरान की दिखाई दे रही है
1: जी।
0: उसका कारण क्या है? जिंक के महत्व के बारे में किसान समझ गया है, तो जो अन्य फसलों में भी वो जिंक डालता रहता है,
1: धान गेहूं में लगातार
0: डाल रहा, आलू में डाल रहा है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे सब्जियों में पोटेशियम, बोरान और जिंक प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 7505103059, 750-510-3059, 750-510-3059।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना

0: चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का सब्जियों में पोटेशियम, बोरान और जिंक प्रबंधन के बारे में, डॉक्टर साहब?
1: जो किसान भाई यूरिया और डीएपी आधारित खेती आम तौर पर कर रहे हैं तो केवल दो पोषक तत्व दे रहे हैं और मिट्टी से अन्य पोषक तत्वों का भी दोहन हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। तो हमारा तो ये कहना है कि संतुलित फसल पोषण सुनिश्चित करें, उसके लिए यूरिया डीएपी के साथ पोटेशियम, बोरान, जिंक और गंधक की भी समस्या हो रही है, तो इन सारे पोषक तत्वों का एक संतुलन बना करके प्रयोग करें तो निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ेगी और प्रति रुपए खर्च पर किसान को ज्यादा आर्थिक लाभ होगा।
0: यानी किसान भाई बहन जहां भी सब्जियों का व्यवसायिक उत्पादन कर रहे हैं वहां इन पोषक तत्वों पर विशेष ध्यान दें, पोटेशियम, बोरान और जिंक, साथ में सल्फर की भी कमी के लक्षण न दिखें और उनका सही प्रबंधन करें। डॉक्टर के एन तिवारी साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और आपने किसान भाइयों बहनों को ढेर सारे सुझाव दिए सब्जी उत्पादन में फसल पोषण के बारे में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: रेनु बहनी।
4: हाँ रामजीत भैया।
3: देखो जानकारी के बाद तो बहुत हो गए, अब कुछ गीत गवनाई की बात हो जाए।
4: बिल्कुल भैया हो जाए, तो और सुन लीन जाए एक नक्टा। और देखो इका स्वर दीन है अनुराधा बहनी और बोल है इके दिन का कीहो कर।

0: रेनु बहनी।
1: हाँ रामजी भैया।
0: देखो अपने आसपास चीजें धीरे धीरे कितना बदल गई हैं, कहो कितना हाईटेक हो गए हैं।
1: अब भैया देखो हाईटेक के जमाने हैं। हाँ? अगर हाईटेक न हुई हो तो पाछे रह जाइयो।
0: बिल्कुल।
1: तो देखो अगर हमका सबका अच्छी जानकारी और कम समय में मिल रही है। हाँ? तो हमका सबका भी इस समय के फायदा उठावे चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत पंच यही के फायदा उठावा थे और अपने खेती पाती में इस्तेमाल करे थे और आपन खेती बढ़िया तना आगे बढ़ावत है और वही का हम पंच जानित है आज के किसान मा।
1: तो भैया आज के किसान मैया है देखो हाईटेक नर्सरी और सब्जी उत्पादन पर बतावे के लिए अनुष्का जायसवाल बहनी, तो आओ इनका सुना जाए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज ब्लॉक के हरिखेड़ा गांव की महिला किसान अनुष्का जायसवाल बहन स्वागत है कार्यक्रम में। अनुष्का जायसवाल बहन ये बताएं हाईटेक खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
3: धन्यवाद। 3.5 साल पहले करीबन मैंने अपना सबसे पहला सेटअप एक लगाया पॉली हाउस का। इसमें मेरे परिवार ने काफी मुझे सपोर्ट किया। मुझे ये था कि मुझे ट्रेडिशनल खेती नहीं करनी थी, मुझे जो करना था कुछ टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करते हुए करना था। फिर मैंने इसमें एक बेसिक ट्रेनिंग ली खेती की, नोएडा में एक इंस्टीट्यूट है, वहां से मैंने हाइड्रोपोनिक्स और प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन इसमें मैंने अपना एक ट्रेनिंग लिया, तो मुझे गवर्नमेंट से भी सब्सिडी मिली इसमें। मेरा पहला सेटअप जो था वो थी खीरे। उसके बाद मैंने उसमें लाल पीला शिमला मिर्च भी कई बार किया है। तो अब 3.5 साल होते होते हाँ हम लोग ने अपना पहले शुरुआत 1 एकड़ से की थी, बट हम 6 एकड़ में काम कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए लाल पीली शिमला मिर्च हो गई, इंग्लिश क्यूकम्बर जो हमारा बिना बीज का सीडलेस क्यूकम्बर जिसको हम बोलते हैं वो मैंने किया हुआ है,
2: बीज रहित खीरा
3: बेमौसम जितना भी है ये हम बेमौसमी करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम मार्केट से पहले इसको निकाले या ऐसे टाइम पे निकाले जहाँ पे हमें रेट का फायदा मिल सके। सिंस संरक्षित खेती है तो उससे हमें ये फायदा रहता है कि अंदर का मौसम हमारे लिए थोड़ा कंट्रोल में रहता है, बारिश नहीं पड़ सकती, तो इससे हम अपना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उसको कंट्रोल कर लेते हैं, हमारी क्रॉप और अच्छे से चल जाती है। जहाँ ठंड में लोगों की फसलें रुक जाती हैं है ना, वहाँ हमारी क्रॉप में उस टाइम प्रोडक्शन निकल रहा होता है, हम उसको मार्केट में दे सकते हैं।
2: अच्छा।
3: ओपन में भी मैंने ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल मेथड से किया कि फ्लड इरिगेशन या एकदम से हम लोग ट्यूबवेल से पानी देते जाते हैं एंड ऐसे कर रहे हैं, हम लोग ने उसमें भी गवर्नमेंट की सहायता से हमने ड्रिप इरिगेशन लगवाया, मल्चिंग करते हैं, बेड बनाते हैं, क्रॉप कवर भी देते हैं विंटर्स में, ऐसा नहीं कि खुले में पड़ी रहती है हमारी क्रॉप।
2: यानी क्या
3: लो टनल लो टनल में हम लोग अपनी और क्रॉपे करते हैं जिससे उस पे पाला नहीं पड़ता। हमने 1.5 एकड़ पॉली हाउस लगाया है और बाकी हमने आधे से थोड़ा सा कम एकड़ हमने उसमें हाइड्रोपोनिक्स का भी एक सेटअप लिया है। उसके बाद एक हमने हाईटेक नर्सरी का एक सेटअप बनाया है। तो हमारे 3 सेटअप हो चुके हैं ये और हमारा एक ओपन में भी सेटअप चलता है जो हमारा 3 एकड़ का है।
2: तो खुले में कितनी खेती आप कर रही हैं?
3: हमारा 3.5 एकड़ खुले में है, जो हमारा प्रोटेक्टेड में होता है जैसे पॉली हाउस में वो हमारा 2 एकड़ तक है पूरा।
2: खुले में कौन कौन सी सब्जियां उगा रही हैं?
3: खुले में हम लोग ग्रीन कैप्सिकम, हरी शिमला मिर्च कहते हैं, हरी शिमला मिर्च हम लोग कर रहे हैं, जुकिनी करा है मैंने, जुकिनी मैं करती हूँ पीली और हरी दोनों। तो उसके बाद हम लोगों ने जितने भी सलाद पत्ती हो गया, चाइनीज कैबेज, रेड कैबेज, फिर उसके बाद हमारा पॉक चॉय करके एक एक वो होता है सलाद पत्ती होता है, एक हमारा ग्रीन लेटस हो गया, रेड लेटस हो गया,
2: जो भी
3: जितना भी विदेशी सब्जियां हैं हम लोग ने सब की हुई है।
2: तो इसकी शुरुआत कब करती हैं, कैसे करती हैं?
3: इसकी शुरुआत अब हम लोग की अगस्त से शुरू हो जाती है। तो जैसे हम इसकी पहले पौध रेडी करेंगे, पौध रेडी करके फिर हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं।
2: तो

0: पौध आप पाली हाउस में तैयार कर रही होंगी?
1: जी, मैंने वही बताया, मेरा अब नर्सरी का भी सेटअप है, तो मैं अपनी नर्सरी खुद ही रेडी कर लेती हूँ, और मैं कमर्शियली भी कर रही हूँ नर्सरी का सेटअप, तो लोगों की भी नर्सरी रेडी करती हूँ प्लांट की।
0: यानी हाईटेक नर्सरी भी चल रही है आपकी?
1: जी जी, साथ में ना हाईटेक नर्सरी भी चल रही है।
0: और हाइड्रोपोनिक्स में क्या कर रही हैं आप?
1: हाइड्रोपोनिक्स में भी हम लोग लीफी वेजिटेबल करते हैं, जैसे कि ये
0: पत्तेदार
1: सब्जी। पत्तेदार में हम लोग जितना भी ऑफ सीजन करते हैं, तो आप ये मान के चलिए इस टाइम कभी भी आप देखेंगे कि पॉक चॉय हो गया, या फिर लेटस हो गया, या जो भी है आपका, ये सब केल हो गया, केल है हमारा, रॉकेट है,
0: ये सब
1: पार्सले
0: खुले में
1: है,
0: नहीं हो
1: बेजल,
0: सकता?
1: ये सब खुले में नहीं हो सकता, ये
0: और
1: सिर्फ
0: पॉली
1: और
0: हाउस
1: सिर्फ
0: में आप कर रही हैं?
1: जी पॉली हाउसेस में हम लोग कर रहे हैं, और ये भी
0: हाइड्रोपोनिक्स में?
1: पानी में ग्रो करते हैं हम लोग।
0: जी
1: तो हाइड्रोपोनिक्स का
0: हाइड्रोपोनिक्स,
1: मतलब ही है कि हम बिना सॉइल के कल्टीवेशन कर रहे हैं उसमें। उससे क्या होता है कि हमारे सॉइल बॉर्न जितनी भी डिजीजेज है वो कभी आती नहीं है, वो हमारा बिल्कुल पेस्टिसाइड फ्री है ना, फंगिसाइड फ्री हमारा क्रॉप बनता है।
0: तो हाइड्रोपोनिक्स में भूख और प्यास कैसे मिटाती हैं?
1: उसकी भूख और प्यास हमारा जितना भी ग्रोइंग होता है वो पानी में होता है, वो भी आरओ वाटर में। तो हम लोग आरओ वाटर में न्यूट्रिशन देते हैं, उसी में ही वो प्लांट की जड़ें बढ़ती जाती हैं और वो ग्रो होता जाता है लीफी।
0: तो कितना दिन समय लगता है जो सब्जियां आप तैयार कर रही हैं पत्तेदार?
1: हम लोग को बस 45 से 50 दिन लगता है, और हमारी एक एक रेडी हो जाती है, मतलब कि साइकिल रेडी हो जाती है।
0: और शिमला मिर्च, आपने कहा कि रंगीन शिमला मिर्च आप पॉली हाउस में पैदा करती हैं,
1: जी,
0: लाल, पीली और हरी, और खुले में हरी शिमला मिर्च पैदा करती हैं,
1: जी,
0: तो उसकी तैयारी हो चुकी है?
1: जी जी जी, लाल पीला शिमला मिर्च हमारा लग चुका है, अब हरा हमारा पहले हफ्ते सितंबर में लगता है।
0: कौन कौन सी बारीकी करती हैं आप पॉली हाउस में और खुले में?
1: मेन चीज तो हमारी ये है कि हम सबसे ज्यादा अपनी क्रॉप पे ध्यान देते हैं, कि कभी भी कोई दिक्कत अगर हमें लगती है कि कहीं कुछ आ रही है, तो हमें शुरू में ही एक दो पौधों में ही पता चल जाए। हर दिन अगर हमारे अंदर पॉली हाउस में लग रहे हैं 10,500-11,000 पौधे, तो हम लोग हर दिन मेंटेन करते हैं कि हम हर दिन उन सारे के सारे पौधों को चेक करें कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है उसमें, उसका न्यूट्रिशन सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डेली जो हमें न्यूट्रिशन उसमें देना है, जो हमें फर्टिलाइजर देना है, वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमारा अगर जैसे इस टाइम ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है मौसम में, तो हम लोग को ये कोशिश रहता है कि हम उसको फैन वैंस चला के उसकी ह्यूमिडिटी कम कर पाए।
0: तो जो पैदा करती हैं आप उसको बेचती कहाँ हैं?
1: जी मेरा मार्केट में ही जाता है, जितना भी मेरा दिन का 1,000 किलो भी प्रोडक्शन रहता है, तो हम लोग होलसेल में भी हम लोग देते हैं ना, तो रिटेल एंड होलसेल दोनों करते हैं।
0: यानी भाव अच्छा मिल जाता है?
1: हाँ जी सर, भाव अच्छा मिल जाता है, मार्केट से अच्छा निकल जाता है मेरा।
0: 6 एकड़ की खेती, लगभग 2 एकड़ में पॉली हाउस और बेमौसम सब्जियों का उत्पादन, पूरे साल में कितनी लागत गिरती है, कितना उत्पादन ले लेती हैं, और आपका मुनाफा होता कितना है?
1: सर लगभग ये मान के चलिए कि लागत तो लग जाती है, अगर 1 एकड़ की बात करें पॉली हाउस में, तो करीबन 8 से 10 लाख रुपए की लागत लग जाती है, क्योंकि इसके बीज बहुत महंगे होते हैं लाल पीले शिमला मिर्च के। वही ओपन में इतनी नहीं लगती, ओपन में बीज सस्ते होते हैं।
0: जो 3.5 साल का आपका हाईटेक खेती का तजुर्बा है, हाईटेक नर्सरी का है, हाइड्रोपोनिक्स का है, संरक्षित खेती का है, खुले में सब्जी उत्पादन का है बेमौसम, तो उसके आधार पर जो और किसान भाई बहन हैं, जो युवा हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी अपने अनुभव से?
1: जिस भी चीज की खेती कर रहे हैं उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तो आपको मुनाफा जरूर होगा। मुझे तो ये भी लगता है कि अगर आप पढ़ लिख के जा रहे हैं एंड युवा लोग जा रहे हैं, अगर हम खेती में कहें, तो उससे भी बहुत चेंज आ सकता है खेती में। किसान को एक बेचारा सा मत बना के, एक गरीब किसान या मिट्टी में हमेशा वो काम ही करते रहता है, या उसको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, हमेशा नुकसान में है, कर्ज में है, ऐसा नहीं है। अगर सही नॉलेज दे पाए हम किसान को, सिर्फ धान गेहूं में करके किसान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, आपको थोड़ा सा आगे सब्जियों में भी ले जाना पड़ेगा, फ्रूट्स में भी ले जाना पड़ेगा, फल में भी ले जाना पड़ेगा। काफी सारी ऐसी नई नई चीजों की खेतियां हो रही हैं जिसमें हमें मुनाफा अच्छा मिलता है, तो हम उसमें अगर उनको थोड़ा सा एजुकेट करेंगे, उनको थोड़ा नॉलेज देंगे, तो जरूर आगे बढ़ सकते हैं इसमें।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: जी मेरा मोबाइल नंबर होगा 9717913902, 9717913902, 9717913902।
0: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहती हैं आप?
1: मैं मानती हूँ कि अगर औरतें या लड़कियां ये करती है ना, तो वो बहुत और बेहतर कर लेती हैं, मुझे ऐसा लगता है। मेरे यहाँ करीबन 25-30 औरतें आती हैं हर दिन, सारे के सारे काम वही करती हैं, मोस्टली 3-4 आदमी रखे हमने बस, बाकी सारा फार्म औरतें चलाती हैं हमारा, है ना। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि वही है जो कर पा रही है, एंड वो जिस बारीकी से और जिस ध्यान से काम करती है, वो एक शायद पुरुष नहीं कर पाता है खेती में।

अनुष्का जायसवाल बहन आज आप कार्यक्रम में आई और 3.5 साल पहले खेती से जुड़ी और आज एक मुकाम पर हैं। आपके पास 6 एकड़ की खेती है जिसमें 2 एकड़ पाली हाउस है जिसमें आप बेमौसम सब्जियों का हाईटेक उत्पादन कर रही हैं और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: अपने खेती पाती में मौसम के जो जानकारी है वो बड़ी महत्वपूर्ण होता है, अगर वो समय पे मिल जाए तो बहुत जो नुकसान है वो बच जात है। भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार 20 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक कुछ स्थानन पर गरज चमक के साथ बौछार पड़े के संभावना है, साथ ही साथ कुछ स्थानन पर भारी बारिश के चेतावनी है।
7: तो भैया ये तो रहे मौसम के हाल, इससे जो है अपनी खेती पाती में यहाँ बहुत काम जो है सहज हो जाते है।
6: बिल्कुल।
7: और भैया अब हमार कार्यक्रम कस लागत है, इके खातिर हमारे पंच भैया बहनी हमका जो है पाती लिख सकते हैं, तो जल्दी से नोट करें हमार पता। कार्यक्रम किसान वाणी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ। पिन कोड है 226001।
6: यही के साथ है जे पंच हम पंचन का ईमेल करे चाहत है वही लिखे हमार ईमेल farmandhome@gmail.com।
7: तो भैया हमारे पता नोट कर लिए हैं सब पंच भैया बहनी, और हमका आशा है कि वे हमका ये कार्यक्रम के प्रति अपन सुझाव जरूर दे हैं।
6: बिल्कुल। और अब अपने बैठकी का समय हो चला है तो पंचन से लीन जाए आज्ञा। जय हिंद, जै हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। मिर्जापुर में मकान ढहने से 3 लोगों की मौत। प्रयागराज में रामबाग स्टेशन पर जलभराव के चलते ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग की कार्य योजना की समीक्षा। कहा, रोजगार के साथ वैश्विक अवसरों से भी जोड़ा जाए कौशल विकास। भारत दौरे पर आए जापानी प्रतिनिधि मंडल ने आज आगरा में किया ताजमहल का दीदार। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि दौरे से मिलेगी जापान और उत्तर प्रदेश के संबंधों को नई ऊंचाई। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा बैठक में हुए शामिल। कहा, 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का निर्माण कार्य। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। वहीं मिर्जापुर के मरिहान तहसील क्षेत्र में बारिश के बीच 2 कच्चे मकान ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। चित्रकूट में बारिश के चलते आज 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहे। प्रयागराज में बीते 2 दिनों में बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया। वहीं बारिश के चलते प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर पानी भर जाने के कारण ट्रेनों के परिचालन पर प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते एक पैसेंजर और 3 मेमो गाड़ी को झूसी स्टेशन से चलाया जा रहा है, जबकि प्रयागराज से हावड़ा के बीच चलने वाली विभूति एक्सप्रेस को प्रयागराज रामबाग के प्लेटफॉर्म 5 से चलाया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO सुमित कुमार ने बताया कि पानी निकालने का कार्य जारी है। स्थिति के सामान्य होते ही ट्रेनों का संचालन रामबाग से दोबारा शुरू हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग को तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं।
1: अभी बस कुछ लो लाइन एरियाज बचे हुए हैं, हमारी टीम पूरी लगी हुई है, पंप सारे क्रियाशील, और हमें लगता है कि अगले कुछ घंटे में ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी, और इसके जब पानी पूरा निकल जाएगा तो
0: मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और बलिया में गंगा नदी, बाराबंकी, अयोध्या और तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रदेश में बाढ़ और जलभराव की स्थिति के बीच सरकार ने प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है। अयोध्या में 283 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत किट वितरित की गई, साथ ही लोगों को नदियों और जलाशयों के आसपास सावधानी बरतने और प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग की कार्य योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि ITI को अधिक से अधिक उद्योगों से जोड़ा जाए। उन्होंने उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण विकसित करने के साथ ही अप्रेंटिसशिप और ऑन जॉब प्रशिक्षण को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास को रोजगार के साथ वैश्विक अवसरों से भी जोड़ा जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि ITI और उद्योगों के बीच निरंतर संवाद की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर नियमित रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री ने सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेशन, इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग केंद्रों की प्रगति की समीक्षा करते हुए गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली केंद्रों का संचालन शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को आधुनिक तकनीक और उद्योग आधारित प्रशिक्षण के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री ने अनुदेशकों की उपलब्धता को प्रशिक्षण की गुणवत्ता के

0: ये महत्वपूर्ण बताते हुए चयन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जीरो पॉवर्टी अभियान से जुड़े परिवारों के बच्चों और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में सुव्यवस्थित संचालन के लिए व्यापक बदलाव की जरूरत बताई है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विद्यालयों से जुड़ी सुस्पष्ट नियमावली तैयार करने, शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और एक सोसाइटी के गठन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए आवेदन पोर्टल तत्काल खोला जाए और 2 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति की धनराशि अंतरित कर दी जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
2: लखनऊ में आज समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की उपस्थिति में विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में शिक्षकों और अन्य आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता, विद्यार्थियों को मिल रही सुविधा और प्रबंधन व्यवस्था की जानकारी ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र वृद्धजनों के आवेदनों का सत्यापन कराते हुए यथाशीघ्र उन्हें पेंशन से लाभान्वित कराया जाए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराने, साथ ही योजना की पहुंच और प्रभावशीलता को और बढ़ाने पर जोर दिया। योजना प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 163 केंद्रों के माध्यम से संचालित है। समाचार कच्छ से ओम अवस्थी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भारत दौरे पर आए जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी सहित करीब 240 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज आगरा में ताजमहल का दीदार किया। इस मौके पर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी उपस्थित थे। प्रतिनिधिमंडल ने ताजमहल की स्थापत्य कला और खूबसूरती को करीब से देखा। ताज दीदार के दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने डायना बेंच पर फोटो सेशन भी कराया। श्री जयवीर सिंह ने कहा कि जापान और उत्तर प्रदेश के उद्योग, सांस्कृतिक धरोहरों, तकनीक सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के नजदीक आकर उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे।
3: आज हमारे जापान से महामहिम राज्यपाल जी, वहाँ के कमांडर साहब, उनका पूरा परिवार आज उत्तर प्रदेश की सार्थक यात्रा पे आया हुआ है। आज ताज के दीदार किए हैं, आपके सामने उन्होंने अभिव्यक्ति देकर के इसकी प्रशंसा करने का काम किया है। और हमारे गवर्नर साहब का मानना है कि उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश की जमीन उपजाऊ है, उर्वरक है और एक मित्रवत संबंधों को लेकर आगे बढ़ेगी।
1: उत्तर प्रदेश दौरे पर आया जापानी प्रतिनिधिमंडल कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रतिनिधिमंडल की भेंटवार्ता प्रस्तावित है। इन मुलाकातों के जरिए दोनों पक्षों के बीच आपसी संबंधों, निवेश और सहयोग की संभावनाओं को लेकर उच्च स्तरीय संवाद होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन मिश्रा आज अयोध्या में समिति की बैठक में शामिल हुए। इससे पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर के अंदर निर्माण कार्य 30 सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा संभाला जा रहा ऑडिटोरियम और म्यूजियम का निर्माण कार्य जारी रहेगा और इसके मार्च 2027 तक पूरा होने की योजना है।
4: इमर्सिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 7 नंबर गैलरी में मंदिर का दिव्य दर्शन वहां पर पूर्ण कराया जाएगा। इसी प्रकार गैलरी नंबर 17 है, जो अपने में चुनौती है, इसलिए है कि वहां भगवान राम जी जो नदियों से यात्रा की उन्होंने वन गमन में, तो उन नदियों को और उन नदियों पे उन्होंने किस प्रकार का संदेश दिया, इसको भी प्रयास किया जाएगा।
1: आकाशवाणी लखनऊ का FM केंद्र FM रेम्बो आज अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन वर्ष 2000 में FM रेम्बो का प्रसारण शुरू हुआ था। इस अवसर पर आज शाम को आकाशवाणी केंद्र पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में श्रोताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। इसके साथ ही विभिन्न मनोरंजन प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। मिर्जापुर में मकान ढहने से 3 लोगों

व्यापार समिति के अध्यक्ष नीपेन मिश्रा समिति की बैठक में हुए शामिल, कहा 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का निर्माण कार्य। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं साकिब अक्कासी और उनके साथी कलाकार।

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज हमारे कलाकार हैं साकिब अक्कासी और उनके साथी कलाकार। तो लीजिए सुनते हैं कि आवाज में ये कव्वाली।

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए सुनते हैं सागिब अक्कासी और साथियों की आवाज़ में ये कव्वाली।

पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बज रहे हैं। पेश है कार्यक्रम गीत संध्या। लीजिए सुनते हैं धड़कन फिल्म से ये गीत, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में। संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। गीतकार हैं समीर।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या। लीजिए सुनते हैं दिल है कि मानता नहीं फिल्म से ये गीत, जिसका संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और गीतकार है समीर। तो लीजिए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गीत।

ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या। लीजिए सुनते हैं पापा कहते हैं फिल्म से ये गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत दिया है राजेश रोशन ने। तो लीजिए सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में ये गीत।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या। लीजिए सुनते हैं अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में परदेश फिल्म से ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

मशहूर हिंदी फिल्म थी। इसे महान निर्देशक राज कपूर ने बनाया था। इस फिल्म में मुख्य कलाकारों में थे ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी। अगर इसके रिलीज की बात करें तो हुई थी 30 जुलाई 1982 को। मुख्य किरदारों में ऋषि कपूर का नाम था देवधर और पद्मिनी कोल्हापुरी का नाम था मनोरमा। तो लीजिए सुनते हैं सुरेश वाडेकर की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है प्रेम रोग। प्रेम रोग को 30वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सबसे ज़्यादा 12 नॉमिनेशन मिले, जिसमें से 4 मुख्य पुरस्कार भी उन्हें मिले, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला राज कपूर को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी पद्मिनी कोल्हापुरी, सर्वश्रेष्ठ गीतकार थे संतोष आनंद और सर्वश्रेष्ठ संपादक यानी कि बेस्ट एडिटर थे राज कपूर। तो लीजिए सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर

0: रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश की अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
2: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि 3री याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित थे। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल

0: पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आमतौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
2: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दो तरीके अपनाए गए हैं, मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
3: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
1: श्री कोइज़ुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
4: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड इसके लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निकलता है पानी, उसको फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने का टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
1: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

0: विश्व के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जातीय संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलबर्टो डे ला एस्प्रिला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुअर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष, महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी क्षेत्री, आकाशवाणी समाचार, कश्यप।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: एमिस्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet decides to set up a bench of Jammu and Kashmir High Court at Ladakh, announces Home Minister Amit Shah. Supreme Court forms 5-member panel to investigate violence during student protests across the country. Jharkhand High Court stays state government's decision to cancel 11th to 13th JPSC and food safety officer examinations. government

0: के फैसले पर रोक लगा दी है। हुकूमत ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन खाम शकर की ड्यूटी फ्री दरामद की मंजूरी दी है। मरकज ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी किया है ताकि कौमी राजधानी की सबकी शमूलियत वाले और आलमी दर्जे के एक शहर के तौर पर काया पलट की जा सके। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लीडर मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को मुल्क का 23वां सदर मुंतखब किया गया है। और हॉकी में भारतीय ख्वातीन की टीम ने नीदरलैंड में आलमी कप के पूल डी के एक मैच में इंग्लैंड के साथ बिना गोल के मैच ड्रा होने के बाद दूसरे राउंड में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच कायम करने की मंजूरी दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लद्दाख के दूर दराज इलाकों में रहने वाले शहरियों के लिए इंसाफ तक रसाई में नुमाया बेहतरी आएगी और उन्हें कानूनी खिदमात हासिल करने के लिए दरकार वक्त कम होगा। जनाब अमित शाह ने मजीद कहा कि हुकूमत लद्दाख की हमजहत तरक्की और वहां के शहरियों के लिए आईनी तहफ्फुज़ात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और मुल्क के दीगर मकामात पर तलबा के एहतिजाज के दौरान पेश आने वाले तशद्दुद के इल्जामात की आजादाना तौर पर जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की सरबराही में एक 5 रुकनी आला इख्तियाराती तहकीकाती कमेटी HPEC तश्कील दी है। पेश है एक रिपोर्ट। आला इख्तियाराती तहकीकाती कमेटी को खासतौर पर इन इल्जामात की जांच करने की हिदायत दी गई है कि पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने मुजाहरीन के खिलाफ जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ मुजाहरीन की जानिब से सिक्योरिटी अहलकारों के खिलाफ मुबैना तशद्दुद और इन अहलकारों को पहुंचने वाली चोटों की भी तहकीकात की जाएंगी। मजकूरा कमेटी के दिगर अरकान में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस रविशंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस शालेंद्र कौर, CBI के साबिक डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के रिटायर्ड DGP डॉक्टर LR बिश्नोई शामिल हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन्ना पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मुल्कगीर तलबा एहतजाज से मुतालिक कई अर्जदाश्त पर समाअत के दौरान यह हुक्म जारी किया। अदालत आलिया ने कमेटी को अपनी इब्तदाई तहकीकात और नतायज पर उबूरी रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट में तलबा के एहतजाज के दौरान होने वाले तशद्दुद से मुतालिक अर्जियों की समाअत हो रही थी। ये एहतजाज मुबैना पेपर लीक के खिलाफ किए गए थे। दिल्ली से स्वाति रखेजा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए महताब आलम।
1: झारखंड हाई कोर्ट ने आज अगले अहकामात तक रियासती सरकार के 11वें से 13वें JPSC सिविल सर्विस इम्तिहानात के जरिए की गई तकर्रियों और फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती को मंसूख करने के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस दीपक रोशन ने इम्तिहानात और तकर्रियों को मंसूख करने से मुतालिक रियासती सरकार के मंगल के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने वाली 3 अलग अलग अर्जदाश्तों की समाअत करते हुए ये हुक्म दिया। अदालत ने हिदायत दी है कि मुंतखब उम्मीदवार बहाल रहेंगे। उसने ये भी कहा कि उन्हें फितरी इंसाफ के उसूलों और बाजाबता तरीक़ाकार पर अमल किए बगैर नहीं हटाया जा सकता। अदालत ने रियासती हुकूमत और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC से जवाब तलब किया है और अगली समाअत के लिए 15 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। 2 अर्जदाश्तों में 11वीं से 13वीं JPSC सिविल सर्विस इम्तिहानात और तकर्रियों की मनसूखी को चैलेंज किया गया था, जबकि तीसरी अर्जदाश्त का ताल्लुक फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती से था। अर्जी गुजारों के मुताबिक 11वें से 13वें JPSC इम्तिहानात के जरिए 342 मुंतखब उम्मीदवार फिलवक्त सर्विस में हैं। रियासती हुकूमत ने इम्तिहानात के अमल में मुबैना बेजाब्तगियों और TSR डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL के सिलसिले में CID की तहकीकात की बिना पर इम्तिहानात और तकर्रियों को मनसूख कर दिया था। हुकूमत ने 22 इम्तिहानात को मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी किया था और 6 इम्तिहानात को होल्ड पर रखा था। 17 इम्तिहानात की तहकीकात करने को कहा था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स सदारत अवाम मरकूज आबोहवा से मुतालिक कार्रवाई के जरिए पायदार तरक्की में पेशरफ्त कर रही है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव के तहरीर करदा एक मजमून को शेयर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अखराजात की शिद्दत में कमी और गैर रिवायत

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में जल सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद डॉक्टर अरविंद कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: अरविंद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: अरविंद जी, भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण और कृषि क्षेत्र में

0: पर 80% कृषि में होता है, जिसका अधिकांश भाग परंपरागत बाढ़ सिंचाई में नष्ट हो जाता है। पंजाब हरियाणा राज्यों में धान जैसी जल गहन फसलें उगाना भूजल स्तर को खतरनाक स्थिति से गिरा रहा है। यह आपूर्ति की समस्या में कहीं अधिक रचनात्मक असंतुलन का मामला है। इसलिए ड्रिप इरिगेशन को प्रोत्साहन है, फसल विविधीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति में सुधार तथा भूजल दोहन का पर्व सख्त विनियमन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ ही शहरी औद्योगिक क्षेत्र में अवशिष्ट पुनर्चक्रण यानी कि जो दोबारा यूज करना होता पानी को, वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाना, अंतर राज्य नदी जल विवादों के लिए एक सशस्त्र कानूनी रूप से बाध्यकारी संस्थागत ढांचे की अवस्था, आपूर्ति को बढ़ाने के बजाय मांग को तर्क संगत बनाना ही दीर्घकालीन जल सुरक्षा की वास्तविक कुंजी है।
1: अरविंद जी, भारत के कई हिस्सों में देखा गया है कि भूजल का स्तर गिरा है और कृषि और जो घरेलू जरूरतों के लिए जल की आवश्यकता होती है, वो जाहिर सी बात है कि भूजल पर भी उसकी निर्भरता हमारी अधिकतर रहती है। तो क्या भूजल पुनर्भरण कार्यक्रम पर्याप्त है या फिर हमें भूजल के दोहन और खपत को नियंत्रित करने के लिए भी नीतिगत बदलाव करने आवश्यक है?
0: नहीं, केवल भूजल पुनर्भरण कार्यक्रम पर्याप्त नहीं है। पुनर्भरण आपूर्ति पक्ष का समाधान नहीं है, जबकि असली समस्या मांग पक्ष के अनियंत्रित दोहन में निहित है। जब तक निकासी की दर पुनर्भरण की दर से अधिक बनी रहेगी, कोई भी वाटरशेड कार्यक्रम दीर्घकालीन संतुलन नहीं ला सकता। इसलिए बड़े नीतिगत बदलाव अनिवार्य हैं। इसका केंद्र बिंदु होना चाहिए भौगोलिक परिस्थिति आधारित कृषि यानी जियोग्राफी बेस्ड एग्रीकल्चर। पंजाब हरियाणा आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में धान जैसी गहन फसल उगाना पारिस्थितिक दृष्टि से भूल है, जबकि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद नीति द्वारा कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित होती रहनी चाहिए। अतः आवश्यक तीन स्तर पर बदलाव होने चाहिए। पहला, फसल विविधीकरण, धान से मक्का बाजरा दलहन तिलहन जैसी कम जल गहन फसलों को बढ़ाना, विशेषकर मोटे अनाज मिलेट्स को बढ़ावा देना, जल दक्षता भी है और पोषण की दृष्टि से भी लाभकारी है। दूसरा, क्षेत्र विशिष्ट फसल योजना एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग यानी हर क्षेत्र की मिट्टी जल उपलब्धता के अनुसार फसल पैटर्न तय करना, न कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समान नीति थोपना। तीसरा, मूल्य और सब्सिडी नीति में सुधार, मुफ्त एवं अत्यंत सस्ती बिजली जैसी व्यवस्थाएं जो भूजल दोहन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करती है, उन्हें फसल विशिष्ट प्रोत्साहन ढांचे से बदलना चाहिए। पुनर्वरण आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं। असली समाधान यह कि हम प्रकृति के विरुद्ध नहीं बल्कि उसके अनुरूप खेती करें।
1: अरविंद जी, भारत की हम बात करें या फिर कहीं दुनिया भर के किसी भी हिस्से की बात करते हैं, तो पाइपलाइनों में रिसाव होना और नलों से जो पानी बर्बाद होता है, ये एक बड़ी समस्या है। इससे जल की बहुत हानि होती है। जल वितरण का जो हमारा एक ढांचा है, उसमें भी कहीं ना कहीं रिसाव होने के कारण बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारा अच्छा पानी बर्बाद होता है। तो किसी भी नए जल स्रोत को विकसित करना अधिक जरूरी हो जाता है या फिर जो हमारी पहले से ही मौजूदा वितरण दक्षता है उसे और हम बेहतर कर सकते हैं, किस की चीज को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए?
0: नए जल स्रोत विकसित करने से पहले मौजूदा वितरण दक्षता सुधारना कहीं अधिक तर्कसंगत और लागत प्रभावी प्राथमिकता है। तर्क सीधा है, जब घर पहुंचने से पहले आधा पानी बर्बाद हो रहा हो तो नए स्रोत जोड़ना केवल उसी टपकते बर्तन में पानी भरने जैसा है। नवीनतम आंकड़े इस समस्या की गंभीर समस्या को स्पष्ट करते हैं कि भारत की शहरी जल आपूर्ति कंपनियां औसतन करीब 38% पेयजल को गैर राजस्व जल के रूप में गंवा देती हैं, जो वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य 15-20% से लगभग दुना है। नीति आयोग के अनुसार जो स्थिति चिंताजनक है, शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का लगभग 40-50% हिस्सा बर्बाद हो जाता है, जबकि सिंचाई क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता मात्र 30-38% के बीच में है। ये आंकड़ा दो बड़े निहितार्थ रखता है। मतलब पहला तर्क है कि आप पानी यानी जिस पहले ऊर्जा और लागत को खो चुके होते हैं, जल का 40% अधिक रिसाव में नष्ट हो रहा हो, तो नए जलाशय नदी जोड़ो परियोजना में निवेश करने से पहले इस अदृश्य हानि को रोकना कहीं सस्ता पड़ता है। दूसरा, नए स्रोत विस्तृत करने का अर्थ है प्राय अधिक भूजल दोहन या नई नदी घाटी परियोजनाएं होता है, जो पहले से तनावग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र पर अतिरिक्त बोझ डालती है। इसके बजाय जिला मीटर्ड क्षेत्रों के माध्यम से नॉन रेवेन्यू वाटर बजट का प्रतिकरण करके राज्य वित्त आयोग की नीतियों को सत्यापन आयोग जल हानि की कमी से जोड़कर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि निवेश परिणाम आधारित हो।
1: अरविंद जी, अभी जो दिल्ली में सम्मेलन चल रहा है, इंटरनेशनल समिट ऑन स्मार्ट एंड सस्टेनेबल वाटर सिस्टम, तो इस सम्मेलन की विषय वस्तु रखी गई है तकनीकी और पहुंच के बीच से। तो हम स्मार्ट जल तकनीकों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन देश के जो छोटे शहर हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उन तक इन तकनीकों की कैसे पहुंच सुनिश्चित की जा सकती, ताकि जो भी हम योजनाएं बनाते हैं उनका लाभ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित ना रहे, उसका लाभ सभी तक पहुंचे?
0: जो टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं, एक्चुअली वो उन लोगों के लिए, हम दो तरह की योजनाओं पे बात करें, टॉप डाउन और बॉटम अप। यानी कि किसी भी प्रबंधन का मेन

0: तरीका है कि हम बायलॉज हैं और रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं उनका उपयोग किस तरह से जमीन स्तर पर पहुंच पाए। अब वो क्षेत्र तक किस तरह से पहुंच पाएगी उसके लिए हमें पहले दो स्तर पर काम करना पड़ेगा। पहले हमें ऊपर स्तर पर योजनाएं इस तरह की बनानी पड़ेंगी कि ताकि हर चीज को हम कवर कर पाए। दूसरा हमें इस तरह से करना पड़ेगा ताकि जो योजनाओं का लाभ है वो जिले स्तर से गांव स्तर से पहुंच पाए और वो भी उसमें शामिल हो।
1: अरविंद जी, जैसे भी देश में मॉनसून का समय चल रहा है, लगातार बारिश की स्थिति हम देख रहे हैं और ये भी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि बारिश का जो जल है उसे संचित करना आवश्यक है, इसके लिए तमाम कोशिशें की जानी चाहिए और तमाम इसके लिए प्रयास भी किए गए, अमृत सरोवर बनाए गए और भी सरकार की तरफ से प्रयास किए गए। ऐसे में जब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जल तो काफी उपलब्ध हो जाता है लेकिन उसका वास्तविक रूप से हम ना तो उसे इकट्ठा कर पाते हैं ना ही उसका ठीक से दोहन कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक आम नागरिक के तौर पर लोगों को किस तरह की चीजें करनी चाहिए, कैसे उनकी योजनाएं होनी चाहिए, किस तरह से वो काम करें कि जल की बर्बादी कम से कम हो।
0: अगर हम बात करें आज से 30-35 साल पहले तो एक प्रति व्यक्ति जो जरूरत थी वो 150 लीटर के करीब होती थी। अब जल तो उतना ही रहा लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती रही और डिपेंडेंस बढ़ती रही, जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारी टोटल जनसंख्या का जो है अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए 16% है, केवल हमें 4% पानी मिलता है। ज्यादातर पानी चूंकि इस पिछले 10-20 सालों में आपने देखा होगा कि शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ है, लोग ग्रामीण क्षेत्र से बहुत जल्दी विस्थापित होकर शहर की तरफ आए हैं, तो उनकी आवश्यकताएं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले थे उनसे अलग तरह की हो गई हैं। तो अब गांव में भी जल की आवश्यकता है, तो किसी तरह से हमें कहीं ना कहीं हमारे जो स्रोत थे, यानी कि आपने सुना होगा कि हमारी अमृत सरोवर योजना बनी, तो उसका पर्पस ये था कि हर गांव में शहर में कई तरह के तालाब हों ताकि वो आपकी रोज की जरूरतों को जो है, जो आपकी रोज की जरूरत है उनको पूरा करते रहे। अब रोज की जरूरतें आपकी खाद्यान्न से रिलेटेड भी हो सकती है, यानी कि फिशरीज है, जैसे पानी से पोर्टेबल नॉन पोर्टेबल भी है, तो वो भी पूरी होती रही, और इसके अलावा आप किसी तरह से अपनी जिंदगी को, मतलब आपका सबसे बड़ा गांव में रहने वाले को, जैसे पहले बताया था कि हम ज्यादा जरूरतें जो हमारी हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यानी कि 40-80% पानी एग्रीकल्चर में चला जाता, तो किस तरह से हम कौन से पानी को कहां इस्तेमाल करेंगे ये हमारे लिए ज्यादा विषय का रहेगा।
1: अरविंद जी, शून्य तरल अपशिष्ट उत्सर्जन जैसी तकनीकें उद्योगों में पानी की खपत और अपशिष्ट जल बहाव को कम करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन इन तकनीकों की लागत अधिक मानी जाती है, तो ऐसे में जो छोटे और मध्यम उद्यम है या एक बहुत ही छोटे स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति है वो किस तरह की गतिविधियों को अपनाएं जिससे कि उसको वित्तीय लागत भी उस पर कम आए और जो अपशिष्ट जल निकलता है उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा सके ताकि बर्बादी कम हो?
0: एक बेहद चिंता का विषय है, मतलब ये कि हम किस तरह से कर पाए। तो शून्य तरल अपशिष्ट उत्सर्जन के लिए, क्योंकि जल जैसी तकनीकों की ऊंची पूंजीगत लागत छोटे मध्यम उद्योग MSME के लिए स्वाभाविक रूप से बड़ी बाधा है। बड़े कॉर्पोरेट इसे वाहन कर सकते हैं पर MSME इसके लिए नीति का आकार बनाने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ना होगा। तो हमें एक तो आम आदमी के लिए और हमारे उद्योग धंधे किस तरह हम कर पाएंगे, मेरी राय में तीन स्तरों पर संरचित होनी चाहिए। पहला पूंजीगत सब्सिडी ब्याज सहायता, जैसे MSME मंत्रालय की मौजूदा ZLD इफेक्टिव जो योजना है वो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हम कहीं ना कहीं 30-40% सीधा अनुदान दे के इसको हम रियायती करके हम लोगों को उससे सीधा जोड़ सकते हैं।
1: अरविंद जी, आज के दौर की अगर हम बात करते तो हमने देखा कि हमारे पास जल की उपलब्धता तो आसानी से हो जाती है, शायद यही कारण है कि उसकी इम्पोर्टेंस को एक सामान्य व्यक्ति उतनी ज्यादा नहीं दे पाता है, कहीं ना कहीं गलतियां सभी से हो जाती हैं कि जल की बर्बादी बढ़ती जा रही है, इसे न्यूनतम करने के लिए हम किस तरह के उपाय कर सकते हैं?
0: पानी जो है वो पोर्टेबल, जिसे आप बोल रहे पोर्टेबल नीड के हिसाब से जो हमें करना है, तो हम अपने व्यक्तिगत जो हमारे यूज में पानी आता है उसको कम से कम हम उस पर लाए चीजों पे, तो उससे हम बर्बादी बचा पाएंगे। और जैसे आपने सुना होगा सिंगापुर में कई जगह पे रिसाइकल वाटर का यूज हो रहा है, अभी हमारे लिए वो चीजें उतनी उपयोगी नहीं बन पाई, लेकिन एक आम आदमी में केवल मतलब कुछ तकनीकी का सुधार करके हम या उनको समझा के किसी तरह से पानी के मामले में जागरूक बना सकते हैं।
1: अरविंद जी, कृषि का जो क्षेत्र है भारत में पानी का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता क्षेत्र, मतलब सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारे यहाँ पर जो शुद्ध जल है, पेयजल के रूप में भी हम पानी का काफी इस्तेमाल कृषि में करते हैं और सिंचाई की दक्षता बढ़ाने की भी हमारे देश में काफी संभावनाएं हैं, तो क्या सूक्ष्म सिंचाई, स्मार्ट सिंचाई और मिट्टी की नमी की वास्तविक समय निगरानी जैसी जो तकनीकें हैं वे व्यापक स्तर पर अपनाई जा सकती हैं और कृषि क्षेत्र में पानी की खपत को कम कर सकती हैं?
0: हाँ, संभावना बहुत बड़ी है पर व्यापक अपनाना अभी बाकी है। कृषि भारत में जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और दलवाई समिति के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई मतलब ड्रिप इरिगेशन से 40% तक जल बचत, 45% उत्पादन वृद्धि, 50% आय वृद्धि संभव है। वाड़ सिंचाई की तुलना में इससे औसतन 30-50% औसतन करीब करीब 32.3 जल की बचत होती है, साथ ही बिजली और उर्वरक की खपत भी घटती है।

0: अब इसमें क्या चैलेंज है, क्षमता बनाम वास्तविकता। तो भारत का माइक्रो इरिगेशन कवरेज 70 MHA की संभावना के मुकाबले केवल 17 MHA है, यानी कि क्षमता का 1/4 है। कारण है ऊंची शुरुआती लागत, जागरूकता की कमी और मुफ्त सस्ती बिजली जो ड्रिप अपनाने का आर्थिक तर्क कमजोर करती है। नीतिगत सहारा है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उद्यम योजनाएं हैं, सोलर पंप है, प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना है, पर ड्रॉप पर क्रॉप के तहत उपकरणों पर 55% तक अनुदान और नाबार्ड का 5,000 करोड़ का सूक्ष्म सिंचाई कोष विस्तार में मदद कर रहे हैं। स्मार्ट एग्री सिंचाई, मृदा नमी सेंसर इसे अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। रियल टाइम डेटा से पानी सिर्फ जरूरत पर दिया जाता है, ना कि निश्चित शेड्यूल पर, जिससे बचत संभावना है। निष्कर्ष ये सिद्ध करता है, फायदा स्पष्ट है कि एक चुनौती जिसके कारण सस्ती फाइनेंसिंग, बिजली मूल्य सुधार और किसान प्रशिक्षण जरूरी है।
1: अरविंद जी, आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो जल प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और वास्तविक समय का आंकड़ा विश्लेषण के इस्तेमाल की जो चर्चा है वो भी तेजी से बढ़ रही है, तो आपके अनुसार क्या लगता है कि आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल प्रबंधन की किस समस्या को सबसे प्रभावी ढंग से हल कर सकता है? यानी कि पानी की पाइपलाइन में रिसाव को, मांग के अनुमान को, भूजल प्रबंधन या फिर जल शोधन की जो दक्षता है उसमें।
0: मेरी विश्लेषणात्मक राय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकट भविष्य में सबसे प्रभावी ढंग से पाइपलाइन रिसाव, गैर राजस्व वाली नॉन रेवेन्यू वाटर जिसे बोलते हैं, की समस्या हल कर सकता है, क्योंकि यहाँ तकनीक और आवश्यकता के बीच तालमेल सबसे स्पष्ट है। इसका कारण यह है कि भारत में भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित पाइपलाइन मानचित्र यानी कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन मीटर क्षेत्र की अनुस्थिति सक्रिय जल प्रबंधन में सबसे बड़ी बाधा है। इसके कारण जल उपयोगिता संस्थाएं प्रायः रिसाव एवं पाइपलाइन विफलता के बाद भी प्रतिक्रिया देती हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसे AI आधारित प्रिडिक्टिव मॉडल द्वारा तुरंत हल कर सकते हैं। रिसाव होने के इंतजार के बजाय पैटर्न समझ के पहले से चेतावनी, व्यावहारिक उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। बेंगलुरु जल आपूर्ति जो मल निकासी बोर्ड ने पानी की चोरी, रिसाव, गैर राजस्व वाटर कम करने के उद्देश्य से स्मार्ट टेरा एम सोलिनियस जैसी स्टार्टअप के साथ AI व रोबोटिक तकनीक पर संयुक्त अध्ययन शुरू किया है। इसी तरह 2026 के राष्ट्रीय AI समिट ऑन वाटर में गैर राजस्व वाटर घटाने, डेटा संचालित नागरिक केंद्रित उपयोगिताओं के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। मांग पूर्ण मांग यानी कि कैसे पता लगा लें, भूजल प्रबंधन दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, परंतु रिसाव नियंत्रण में AI का तुरंत प्रभाव, मापन योग और आर्थिक रूप से स्वतः वित्तीय पोषण तक यानी कि जानकारी देना, क्योंकि बचाया गया हर लीटर पानी सीधे राजस्व में बदलता है, इससे निवेश जल्दी वसूल हो जाता है। यही कारण है कि पहला सबसे व्यावहारिक मोर्चा बनाना चाहिए।
1: अरविंद जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू वेरी मच।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में जल सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद डॉक्टर अरविंद कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड

0: माँ माँ, लेकिन माँ तुम्हें पुकारने से क्या होगा, वो प्यार से भरी दृष्टि, वो आवेगमय आलिंगन, सब कुछ तो मिटता जा रहा है।
1: ना बेटे ना, अपरिचय की दृष्टियों से मुझको मत देख, मत देख। टूटते विश्वास से छलनी मत बना, बहते हुए आंसुओं से यदि आस्था धुल गई तो किसी भी मूल्य पर लौट कर नहीं आएगी, नहीं आएगी।
0: माँ, लेकिन माँ तुम्हें पुकारने से क्या होगा, वो प्यार से भरी दृष्टि, वो आवेगमय आलिंगन, सब कुछ तो मिटता जा रहा है, और मिटने पर कोई पुकार कोई अर्थ नहीं रखती। सारे संवेदन जैसे पिघल कर बह रहे हो, और संबंध सूखे पत्तों के समान झरते कठोर आवाज में बदल रहे हो।
1: मेरे बेटे, निष्फल नहीं है कोई भी पुकार, तुम्हारे प्रश्न तुम्हारे संचयों की भाषा है, और तुम्हारा क्रोध उचित हो सकता है तुम्हारी दृष्टि में, लेकिन एक पक्ष है मन की अंतरंग वेदना का, जिसे अविश्वास से नहीं जाना जा सकता।
0: लेकिन मुझे नहीं जानना है कुछ भी, तुम्हारे मन के नीरव आकाश की मौन ध्वनियों का ज्ञान मेरे लिए बेमानी है। अब मैं क्या रह गया हूं, संबंध के स्तर पर एक उपेक्षा, एक अपरिचित दृष्टि का शून्य में खोया विस्तार।
1: बेटे,
0: वस्त्रों की तरह से उतार कर मैंने फेंक देने चाहे संदेह, धूल की तरह छिटक देना चाहा भ्रम, किंतु वो कौन सी बर्फीली हवा थी जो मेरे पैरों में प्यार की गर्मी खत्म कर गई, और रह गया सिसकता हुआ क्रोध, आवेग और आवेश के क्षणों में हड़बड़ा कर निकले कुछ शब्द।
1: जानती हूं तुम्हारे मन में एक अंधड़ है, उसमें उड़ रहा है मातृत्व, चरमरा कर गिर रहे हैं हर्ष के अतिरेक से खड़े किए गए प्यार के संबंध,
0: और मैं उनके बीच खड़ा अपने और तुम्हारे मध्य की दूरी नापती थकती हुई आंखों को आकाश में टिका देता हूं, जान नहीं पाता कि सत्य वो है जिसे मैं पा रहा हूं अपने भीतर जन्मे या परिचय में, या तुम मेरे और अपने बीच टूटते तंतुओं को जोड़ने में। लेकिन मां, अब मैं नहीं रुक पाऊंगा द्वंद से भरे इस हिलते धरातल पर, इससे पहले कि मेरा अपरिचय घृणा में बदल जाए मुझे जाना होगा। मैं जा रहा हूं मां।

चला गया, मेरे मातृत्व को ठोकर लगाकर, मेरा आत्मज, मेरी कुलीन शालीनता को दुत्कारता, मेरे नारी होने को अपनी मां में समाता न देख उपेक्षित कर चला गया। अब किसे कहूं बेटे, ये तुम ही तो थे जिसके कारण मैं नहीं कर पाई आत्महत्या। तुम सुनो तो, मैंने मृत्यु को बहुत निकट से देखा था। वह बलिष्ठ शरीर जिसके कंधों पर बैठकर तुमने बिताए थे 4 बसंत, असमय ही काल के नियंत्रण पर एक ही क्षण में ठंडा पड़ गया था। कैसे कहूं आज फिर, कैसे वर्णन करूं उस हृदय विदारक दृश्य का, कि मेरी प्रसन्नता का स्रोत, मेरी मुस्कानों का आधार, चुपचाप सब कुछ यहीं छोड़कर सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ लोगों के कंधों पर चढ़कर चला गया। मैं सब कुछ छूटे हुए को अपनी दृष्टियों से इकट्ठा करती असहाय खड़ी थी, और तुम बड़े कौतुक से देख रहे थे पिताश्री की अंतिम विदाई।

0: शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यहीं आकर सब नियति को मानते हैं, शांत हो जाओ। मृत्यु पर ही तो हमारा वश नहीं है।
1: शांत हो जाओ। रोने से मरने वाले की आत्मा कष्ट मानेगी। रो मत, इस बालक को संभालो, अब यही दायित्व है।
0: बहुत अच्छा मित्र था मेरा, सहायक था, मैं बहुत असहाय हो गया हूँ उसके बिना। धैर्य रखो और अपना शेष जो कर्तव्य है उसको निभाओ।
1: सुनो, समझो, मृत्यु हो या जन, हर्ष हो या दुख, हमें केवल स्वीकारना है। हम नहीं कोई जो होने को रोककर एक क्षण को भी कहीं निर्देश दे।
2: नहीं, नहीं, मैं इतनी साहसी नहीं हूं कि जीवित रह सकूंगी अकेली। स्वार्थ से अंधी सभ्यता के युग में मैं नहीं हूं आत्मनिर्भर। जानती हूं मृत्यु का कष्ट वैधव्य के कष्ट से कम होता है, कम होता। यह भी संभव है वे यंत्रणा भरे क्षण तुम्हें स्मरण ना हो, जब निकट संबंधियों ने और मित्रों ने सहानुभूति के टूटे छंदों में वासना के टंक मारे। एक तुम ही थे जिसे अपने हृदय से भींच कर मैं आंसुओं से भीग जाती थी, मुस्कुराती थी कि तुम भी रो ना पाओ साथ मेरे। याद है मुझको भयानक क्षण।
0: चला गया वह, लेकिन मैं हूं, मुझे उसकी मृत्यु का है दुख। तुम क्यों होती हो चिंतित, मैं सहायक हूं।
2: किंतु ये क्या, ये तुम्हारा हाथ मेरे कंधे पर, ये तुम्हारी दृष्टि का धुंधल का, तुम

0: आगे क्यों आ रहे हो? और आगे मत बढ़ो। मान विक्रय मैं नहीं करती, नहीं लेनी है मुझे कुछ भी मदद तुमसे। एक क्षण में निकल जाओ नराधम। भावना के खोल में तुम वासना हो, वासना के कीड़े हो। धर्म की ज्योति नहीं हो, पाप की अग्निशिखा हो। क्या बताओ मेरे पुत्र, मैं दिनों तक अपने ही हाथों से अपने को टटोलती रही, सहती रही चारों तरफ से आती आंधियां, और मुझको लगता रहा जैसे हजारों चींटियां मेरे शरीर पर दौड़ रही हैं। लेकिन लेकिन कुछ ऐसा भी तो था जो मेरे अंदर न दौड़ पाता था न थमता था। बस बस कुछ तरंगित सा होकर बार बार खुद को जानने की आवाजों से टकराता, स्वयं साक्षी होने को बेचैन। वे आवाजें कभी टकराती थी तुम्हारी पीठ से, कभी दृष्टियों से, कभी कभी बादलों की तरह गर्जन करने वाले भयावह मौन से। और फिर वह दिन, कौन? माँ, तुम? माँ?
1: हाँ बेटी, आना ही पड़ा। तुम्हारे जीवन का द्वंद्व, तुम्हारे माथे पर उभरती चिंता की रेखाएं माँ से नहीं देखी जाती।
0: माँ,
1: माँ के सामने ही बेटी प्रवाद का शिकार हो। छोटा है बच्चा, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है।
0: नहीं माँ, पहले भी किया था तुमने प्रस्ताव कि एक बार फिर किसी के साथ सात पैर साथ साथ चलूं और बन जाऊं वामांग। लेकिन अभी पालना है बेटे को, माँ का कर्तव्य निभाना है, और इसमें नहीं चाहती कि विभाजित संवेदना मेरे बेटे को मुझसे पराया बना दे।
1: लेकिन ये अर्थ सत्य है जीवन का, बेटे और पति के बीच कोई भी तो संघर्ष नहीं। अभी छोटा है वो, जो भी उसे प्यार देगा पिता बनकर पिता बन जाएगा।
0: माँ, शायद तुम ठीक कहती हो, किंतु मुझे भी तो देखना है अपना मन। मैं बार बार खंडित नहीं होना चाहती नियति के हाथों। क्या पता किसी पति को पाने की इच्छा में पुत्र भी गंवा दूं, फिर कहां खोजती रहूंगी संबल विश्वासमय। कितना चाहा था पुत्र, कितना चाहा था कि अपने को दूर रखूं स्वयं अपनी भावनाओं से। लेकिन एक दिन तुम्हारी और मेरी आवाजों के बीच एक और आवाज ठहर गई, बहुत तेज, अंदर तक दहला देने वाली, बहुत कोमल, अपनी ही दृष्टियों से खुद को स्पर्श करने जैसी।
2: मत रोको अपने कोमल आवेग को, इससे पहले कि अनेक भूखी दृष्टियां बेध दें भावनाओं के गहराते संबंध, अनेक हाथ दबा दें तुम्हारे धैर्य के स्तूप। अपना सत्य ढूंढो, सत्य ढूंढो।
0: पता नहीं वो प्रेम था, नहीं यह प्यार ही रहा होगा, नहीं तो नहीं बदलते भावों के संकेत और दृष्टि लिपियों में एक संगीत कैसे थिरक सकता था अनायास। और उस दिन मुझे अनुभव हुआ, मैं नहीं हूं फूल जो असार्थक जीवन में झर जाऊं व्यर्थ। पर एक द्वंद्व तो फिर भी था।

0: लगता है किसी ने मौलसिरी के पेड़ के नीचे उद्यान बीचों बीच खड़ी कर दिया हो। तुमने अब तक बहुत दूर रहकर मुझे जो संकेत किए थे उनकी इस परिणति पर मेरा मन उद्वेलित नहीं हो रहा, शांत स्निग्ध भाव का आस्वादन कर रहा है। क्या ये मेरा सत्य है?
1: सत्य असत्य का विश्लेषण बुद्धि करती है, मन केवल संवेग से दौड़ता है। जैसे आकाश अपने में समो लेता है असंख्य शब्द, मधुर और विस्फोटक, जैसे पानी अपने में समो लेता है आग, वैसे ही मन आत्मसात करता है अपना सत्य, अपना प्राप्त। मन के अंदर खड़े कर दिए जाते हैं स्वागत तोरण, कि कोई विरागी भी फिर से अपने नाम को दोबारा लिख सके जगत के स्वर्ण पत्रों पर। जगत वैराग्य नहीं है, जगत संपृक्ति है, और मनुष्य जगत में ही पाता है अपना सत्य, संबंधों में। संबंधहीन यात्रा निरर्थक होती, थकान को जन्म देती है।
0: शायद तुम ठीक कह रहे हो, बिना कुछ चुभाए नहीं देखी जा सकती अपने ही रक्त की लालिमा। बिना समर्पण के झुकती नहीं है प्रतिहिंसा, बिना आत्मदान के सर्जनात्मक नहीं हो पाता अहम। लेकिन मैं घबराती रही हूं वासना की तुरभि संधियों से जो मेरे चारों तरफ संयोजित की जाती रही थी, और अपने ही कोख के दायित्व से भयभीत होती रही हूं। एक परंपरागत नैतिकता का वहन करने की वांछा में।
1: छोड़ो ये व्यर्थ का ऊहापोह और समझो कि अंधड़ से बुझ जाता है दीपक, हर हरा कर टूट कर गिर पड़ते हैं कच्चे पक्के भवन, लेकिन सूरज को कुछ नहीं होता, आकाश यथावत रहता है। मुक्त कर दो अपने मन को विपरीत संयोजन के संगीत से, चक्रवत मत घूमो भाव के एक ही केंद्र पर। अपनी स्मृतियों को लौट डालो स्वीकृति और दर्द के वृंतों से, और वर्तमान की तरंग पर स्वयंभू नैतिकता को जन्म दो।
0: ठीक ही कहती हो, लेकिन इतना सरल नहीं है अपनी ही गुंजलकों से छूटना। तुम शायद नहीं सुन पाओगे मेरे आत्मज के द्वंद्वमय क्षणों की आंतरिक कथाओं की ध्वनियां, पर मैं सुनती हूं, अक्सर सुनती हूं, और अब फिर वे मेरी चेतना पर फैलती जा रहे हैं। मेरे इन आवेगमय क्षणों में अनायास उसकी स्मृति उभरना क्या परस्पर दो सत्यों की टकराहट नहीं है? क्या मैं विभाजित नहीं होती हूं किसी भी स्तर पर?
2: मुझको तुमने कुछ नहीं कहा, कभी उपेक्षा की हो ये भी तो याद नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है मेरे और तुम्हारे बीच एक रिक्त स्थान उभर रहा है। लेकिन मां, मैं मां और नारी को अलग करके क्यों नहीं देख पाता हूं? मेरी आस्था झूठी है क्या? मैं क्यों फिर वापस आता हूं कि सफेद कपड़े में लिपटे उस चुप पिता से पूछ सकूं वे उस अभंजित चुप्पी में क्या कह गए थे, और मैं क्यों नहीं सुन पाया था उनके शब्द? यदि मुझ पर भी डाला होता उन्होंने ये दायित्व, तो मैं भी नहीं तोड़ पाता तुम्हारी अलग बनती इकाई को। लेकिन मैं क्या करूं मां, मुझे तर्क और संवेदना का अंतर तब पता चला जब मेरी ही संवेदना तुम्हें अपराधी मान बैठी, और मेरी दृष्टियों ने खुरच कर रख दी परिचय की गंधवाही पगडंडी।

0: मैं कितनी भी कोशिश करता हूं कि अपरिचय के घावों को खुरच दूं, लेकिन एक तेज हवा का झोंका उन्हें छूकर बार बार हरा कर देता है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं?
1: सुना तुमने भी कुछ? सुना, सुनी तुमने मेरे आत्मज की वाणी? सुना तुमने उसका संकल्प रेशे रेशे बिखर कर विवशता में किस तरह छितरा गया है? उसके शब्दों का आग्रह, उसके शब्दों की तटस्थता मुझे तोड़ तोड़ जाती है। बाहर से समेट रही हूं अपना व्यक्तित्व, लेकिन अंदर से बार बार खंडित हो जाता है। ये नासिका को छूती तुम्हारी उत्तेजित सांसें, क्या मैं एक पगडंडी से हटकर किसी राजपथ पर हूं या किसी चौराहे के बिंदु पर? लेकिन मैं दुर्बल क्यों हो रही हूं इस नए अभियान में?
2: दुर्बलता प्राप्ति और अप्राप्ति के बीच, स्मृति और वर्तमान के बीच ये द्वंद्वमय आलोड़न व्यक्तित्व को दुर्बल नहीं बनाता, बल्कि दुर्बल क्षणों से निकालकर निर्णय की सबलता के छोर पर पहुंचाता है।
1: किंतु मेरा मातृत्व,
2: मैं नहीं जानता कब और कैसे नारीत्व विपरीत पड़ जाता है मातृत्व के, और व्यक्ति की विरागी वृत्ति कब उपेक्षित कर देती है अर्थवाही सांसारिकता को। इतना ही जानता हूं कि इनमें परस्पर विरोध नहीं, संयोजन है, और बीच में उभरते प्रश्न द्वंद्व और दुविधा में फिर से सही मानव की संधियों के स्थल है। ये कैसे चुप्पी है? क्या समय का भी ध्यान नहीं रहा? हमें जाना है आज दूर हरियाली से भरे क्षेत्रों में, वन वनांतरों में।
1: हाँ, जाना है, लगता है जाना ही होगा, लेकिन अपने से भागने की चेष्टा इतनी जल्दी सफल नहीं होती। समय की गति को लांघकर मन से यात्रा करने वाले हम सात कदम नहीं चल सकते, एक गांठ बांधकर परिक्रमा नहीं कर सकते अग्निशिखाओं की।
2: परिक्रमा अग्निशिखाओं की?
1: हाँ।
2: साथ साथ सात कदम?
1: हाँ।
2: लगता है तुम संबंधों में नहीं, संस्कारों में जीना चाहती हो, और संस्कार परंपरागत नैतिकता के आवरण है, जबकि अपना सत्य पाने के लिए स्वयंभू नैतिकता को जन्म देना होता है।
1: तुम डर गए सप्तपदी से? तुम भयभीत हो गए संस्कार से? और पुत्र डर गया था मेरे नारित्व से। इतने सारे भयभीत लोगों के साथ कितनी बेबस हो जाती है स्त्री। स्वयंभू नैतिकता और परंपरागत नैतिकता के बीच अपने व्यक्तित्व को अर्थ देती, लेकिन अर्थ तो देना ही है। अब तक जो अर्थ देती आई हूं अपनी भावनाओं को, फिर से एक टकराहट अनुभव करती हूं तुम्हारे स्तर पर, और पीछे पार्श्व में खोई आवाज उभर रही है मन में। लगता है कि सत्य की खोज अपने ही होती है, और इसके लिए भी किसी के भी साथ वन वनांतरों के बीच जाना उतना ही बेमानी है जितना शोर के बीच अपने को सुना पाने का दर्द।
0: माँ!
1: कौन? पुत्र, तुम आ गए बेटा?
0: हाँ माँ, मैं आ गया हूं कुछ कहने।

0: तुमने कहा था कि मैं अपरिचय की दृष्टि से न देखूं, और मैं अनुभव करता हूं बार बार हरा होता दंश। मैं जानता हूं इस पृथकता से खंडित नहीं हो जाएंगी संबंध की भाप भरी स्मृतियां, और अपना मूल्य नहीं खोएंगी प्रगाढ़ संवेदनाएं। लेकिन आज वर्तमान के चरमराते धरातल पर संबंधहीनता की स्थिति में जीता हुआ मैं एक दूसरी यात्रा पर हूं, एक तलाश के लिए, एक सार्थक मैं की उपलब्धि के लिए।
1: पुत्र, एक दूसरी यात्रा तुम्हारी, प्रिय, तुम्हारी यात्रा वन वनांतरों की, पर मैं इन दोनों यात्राओं के सत्य से परे अपनी ही यात्रा पर, अपनी ही गति पर विश्वास करती, मुक्त करती हूं, तुम्हें मुक्त करती हूं, तुम्हें मुक्त करती हूं सबको। सार्थक मैं तुम्हारा और सार्थक मैं मेरा, एक तलाश, एक उपलब्धि, इसे कौन बताएगा पुत्र, इसे कौन बताएगा? शायद कोई भी नहीं, क्योंकि इसकी पहचान बाहर नहीं अंदर होती है, और अपने अंदर के सत्य का साक्षी मनुष्य स्वयं होता है, स्वयं होता है। अपने अंदर के सत्य का साक्षी मनुष्य स्वयं होता है, स्वयं होता है।

0: स्वयं साक्षी। अभी आप डॉक्टर विनय का लिखा हुआ ये पद्य नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, सहायक सुदर्शन कुमार और कृष्ण कुमार नरूला। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री विष्णु नारायण शर्मा, नीरज शर्मा, नरेश कौशिक, राजकुमारी प्रसाद, वीणा गौड़ और अरुणा कपूर।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक स्वयं साक्षी। लेखक थे डॉक्टर विनय, निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित, प्रस्तुति सहायक थे सुदर्शन कुमार और कृष्ण कुमार नरूला। प्रतिभागी कलाकार थे अरुणा कपूर, विष्णु नारायण शर्मा, नीरज शर्मा, राजकुमारी प्रसाद, नरेश कौशिक और वीणा गौड़। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा यानी मनीषा का प्यार भरा नमस्कार। आप सब अपने व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9457078288, 9457078288। हमारे पास ये मैसेज आ रहे हैं, देखते हैं एक मैसेज किसका है। ये मैसेज हमें मिला है जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। मोहल्ला अफगान शेरकोट से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन और जन्नत का। भोपालगढ़ राजस्थान से हमें ये मैसेज भेजा धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार ने। मार्केट सहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, बेगम रिहाना अराफा।

सलीम अंसारी, जिला मुरादाबाद, दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून ने, इन सभी ने फरमाइश की है हमसे मिलन फिल्म के इस गीत की, जिसे आवाज़ दी है मुकेश और लता मंगेशकर ने। तो लीजिए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
2: अरे बाबा शोर नहीं।

अगला गीत है एक दूजे के लिए फिल्म से, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। इस गीत की फरमाइश की है गंज डुडवाड़ा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना, नवाजिश, दानिश, अमन आफरीदी, राधा नामदेव ने। ये हमें अगला मैसेज दिया है नाज पैलेस अजमेर शरीफ से, सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा हाशमी, असद अरमान हाशमी, मोहम्मद आलम हाशमी। कस्बा गुरनौर यूपी से फारुक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरान, फारिया ताहिरा। ग्राम पंडिया पोस्ट राजा की ताजपुर, जिला बिजनौर से रामदयाल सिंह, शशि देव, खुशबू, प्रतिभा, सत्यम, कार्तिक, विपिन, अजय, रोहित का। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरोज जहां ने मैसेज भेजा है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, सोएब खान। सिंधौली बरेली से जिशान वारसी, करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, सोएब खान। चुतपुर कुंद्रकी से मोहम्मद मुनाजिर खान, फिरासत, फारूकी मुअज्जम, मुस्तफ़ा, गौसिया बीने। सभी ने फरमाइश की है एक दूजे के लिए फिल्म के इस गीत की, जिसे आवाज़ी है लता मंगेशकर ने।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, नंबर है हमारा 9457078288। हमारा

0: நீ ரொம்ப அழகா இருக்க.
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश और ये है आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र. हमारा अगला गीत है देवर फिल्म से, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने. और इस गीत की फरमाइश आई है हमारे पास मोहल्ला हलवाई यान शेरकोट जिला बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजा रानी, हिना कौशर का. साथ ही इसी गीत की फरमाइश हमारे पास भेजी है चांद वाली मस्जिद मुरादाबाद से मिराज अंसारी ने. और आकाशवाणी नजीबाबाद पर ये रिक्वेस्ट भेजी है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से ने. मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से साद हुसैन अंसारी, सैयद सारिक अली, मेराज अंसारी, बाबू अंसारी ने. पश्चिम सिंहभूमि चायबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश, संगीता, लिपि गोप और दीपाली गोप ने. आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा और शेहाना शर्मा ने. वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ने. रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार ने. लक्सर रोड गांव सुहाड़ी कस्बा पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर से मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद उजैफा, मोहम्मद सहनवास, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद सोएब कहकशा और उनके पूरे परिवार ने इस गीत की फरमाइश की है, जो कि फिल्म है देवर से और आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने.

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट मनीषा। लीजिए ये गीत है हमारा खिलौना फिल्म से, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने और इस गीत की फरमाइश की है जलालाबाद वेस्ट से सुश्रेष गगरेजा, पूनम गगरेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा ने। इसी गीत की फरमाइश की है मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसीन अब्बासी, रसीद वारसी, नवेद हसन, सुहेल हसन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, अनम यशफ, किदवई नगर शिदपुरा टाउन से जुबेर अली खान और सबीहा अंजुमन खान, गोविंद गढ़ माझीवाला श्री करनपुर राजस्थान से राजू टुटेजा, खुशदिल उर्मिला, गुड्डू जीनू मनु शिव, करनपुरी इस्माइल टुटेजा ने। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से वीमा मुस्कान, तुलसी मस्कीन, आशीष रजा चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान और खुराना ने। जसपुर रोड दुलापुर जिला मुरादाबाद से महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा, मोहम्मद समीर, मोहम्मद बारिस अंसारी, बेटी अलसिफा और अलसिफा अंसारी। ग्राम पोस्ट बिजना से मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव और यूनिश खान ने। राही नगर गंजवाड़ा से गंज डुडवाड़ा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान, ताबिश खान ने। जेवरा हिसार से वीरेन भ्याण, सुरेंद्र शमशेर और मनोज भ्याण ने। लीजिए सुनते हैं खिलौना फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश और ये है आकाशवाणी नजीबाबाद। हमारा अगला गीत है नया दौर फिल्म से, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। इस गीत की फरमाइश की है अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक ने। शेरवानी स्कूल गंज डुडवाड़ा से आफ्तान अंसारी, रियाज अंसारी, लुमरा अंसारी, आलिया अंसारी ने। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह, अनामिका सिंह ने। जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर अरोड़ा, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर ने। मास्टर ब्रजेश कुमार विलेज मोहम्मदपुर रजौरी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। अस्तपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी ने। गोवर्धन बिहार कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीरा मस्कीन, आशीष रजा, चैतन्य मस्कीन ने। ये अगला मैसेज है गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से। भेजने वाले हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्यगण। इसरत खान, सायरा बेगम, रऊफ खान, साबरीन बेगम, सहनवाज, शाहबाज खान, सैफ खान, गंगोला, गनगोला, दातागंज जिला बदायूं से। भटिंडा रोड मंडी डडवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से साहिब खातून, नूरजहां खातून, साजिया परवीन, नाजिस जहां, फूल जहां, केफुल वरा। इन सभी ने इस प्यारे से गीत की फरमाइश की है जो है नया दौर फिल्म से, और मैंने अपनी कोशिश की है, मैंने सभी के मैसेज लिए हैं। ये हमारा अंतिम गीत है, फिर हम मिलेंगे, तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र का पता है हमारा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद 246763 कार्यक्रम है आपकी फरमाइश। और हमें मैसेज भी भेज सकते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। नंबर है 9457078288। इसी के साथ मनीषा का आपको प्यार भरा नमस्कार।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
2: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के लिए सीबीएम

0: ई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्यवागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नवीं कक्षा के छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में ये निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। एम्स्टर्डम में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड के मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। ग्रुप डी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, जबकि चीन और इंग्लैंड के साथ 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi chaired the 3rd high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence today and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security and external affairs, and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers, Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities and young people to bring fresh perspectives in policy making. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges and implementation issues. Cabinet Secretary, secretaries of key ministries and departments and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Minister of Defense, Shinjiro Koizumi, who is on an official visit to India, called on PM Modi today. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The PM outlined opportunities for Japan to partner with Indian companies and startups in the defense sector, particularly for co-development and co-production under the aegis of Make in India. Defense Minister Koizumi briefed Mr. Modi about the progress in bilateral defense cooperation and reaffirmed the government of Japan's continued commitment towards deepening ties with India. PM Modi also